उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे तो कहेंगे, काश हम अल्लाह की फरमा बरदारी करते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते, और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने सरदारों और बड़ों का कहा माना तो उन्होंने हमको रस्ते से भटका दिया। ऐ हमारे परवरदिगार, उनको दुगना अजाब दे और उन पर बड़ी लानत कर। मोमिनों, तुम उन लोगों जैसे न होना जिन्होंने मूसा को ऐब लगाकर रंज पहुंचाया तो अल्लाह ने उनको बेऐब साबित कर दिया और वो अल्लाह के नजदीक आबरू वाले थे। मोमिनों, अल्लाह से डरा करो और बात सीधी कहा करो, वो तुम्हारे सब काम संवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक बड़ी मुराद पाएगा।

तो उन्होंने शुक्रगुजारी से मुंह फेर लिया। बस हमने उन पर बंद तोड़ सैलाब छोड़ दिया और उन्हें उनके बागों के बदले दो ऐसे बाग दिए जिनके मेवे बदमजा थे और जिनमें कुछ तो झाऊ के पेड़ थे और थोड़ी सी बेरियां। ये हमने उनको नाशुक्री की सजा दी और हम सजा नाशुक्रे ही को दिया करते हैं। और हमने उनके और मुल्क शाम की उन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत दी थी एक दूसरे के मुत्तसिल देहात बनाए थे जो सामने नजर आते थे और उनमें आमद रफ्त का अंदाजा मुकर्रर कर दिया था कि रात दिन बेखौफ खतर चलते रहो। तो उन्होंने दुआ की कि ऐ परवरदिगार हमारी मुसाफतों में दूरी पैदा कर दे और उससे उन्होंने अपने हक में जुल्म किया। तो हमने उन्हें नाबूद करके दास्तान बना दिया और उन्हें बिल्कुल मुंतशिर कर दिया। इसमें हर साबिर और शाकिर के लिए निशानियां हैं।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-399-2836।
7: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
10: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وكذلك اور اسی طرح فتنا بعدهم ببعض ہم نے آزمائش میں ڈالا ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے یعنی معاشرے کے غریب پسے ہوئے مظلوم مفلس طبقات کو ایمان لانے میں سبقت عطا کر کے اس وقت کے دولت اور عزت اور بڑائی کا شکار لوگوں کو جو گھمنڈ میں مبتلا تھے ان کے لیے ذریعہ آزمائش بنا دیا۔ مکہ کے حالات کو سامنے رکھے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو جو معاشرے کا سب سے مظلوم پسا ہوا طبقہ تھا وہ سب سے پہلے آ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ لوگ آپ کے

क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100
3: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
4: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे
3: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
4: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
5: सामीन और नाज़रीन मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा औलाद के निगहबान वालिदैन हैं पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा
3: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं
4: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
6: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए
7: मां खाधो गरम करे थी वठा
8: पुद थकल थकल पे लगे घणी खरेता
7: तवा जो पुट सुमई न थो पूरी रात मां त खीर प्यारे प्यारे थकी थी पवा
9: मेरी थकन को भी तेरे
8: तू फल वे मां छा तू

0: हे वट एड़ियूं शयूं खांदी कर सेहत ठीक रहंदी
1: तव्हां खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खांदी त मां कंहिं खाईंदमि
2: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
3: खीर पीअण वारी माउ जी बेहतरीन ग़िज़ा माउ ऐं ॿार इन्हीं जो हक आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
4: न अदा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 03013992836
6: आई मोहम्मद उमर गोरी 03191515724
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को, जो के 5 साल से, इससे कोई खतरा नहीं है। दो कतरे हर
1: उम्मीद के दिए जलते हैं।
2: रोशनी का काजल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहराब, शानदार तालीमी इमारत, कुर्बान अलीम में एकेडमिक ब्लॉक का तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, फिजिक, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो के लिए, और इंजीनियरिंग खेलान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, कोर्स, अपनी आंखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की वो तरबियत के लिए मसलिए डॉक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300002 स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301386545 3

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Aashiq Honda Showroom Mehrapur. Atlas Honda Motorcycle Shop Pur Atmat. Aimba Akhtar 3S Dealer. Aashiq Honda Motors Mehrapur. Jite nayi motorcycle ji sale. कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे. सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर. सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे. होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद. आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो. कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर. फ्यूल एडजस्टमेंट आर

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460-1000
4: अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ मैं वालदान से दरख्वास्त करूँगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत-ए-मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके
1: सुनिए

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम, 5 डे ब्यूटी, एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब है जो एड बंद कराने ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 0301-380-8347।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अइंबा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
1: जड़े माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे तो सेहत नस्लन ताई हलंदी आहे ही पेगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: अमरीकी सदर ट्रम्प एक भेरो ॿीहर खबरदार कयो आहे त ईरान जल्द खां जल्द जंग बंदी करे वठे हुन जे हक़ में बहितर साबित थींदो। जेकॾहिं जल्द अमन मुआहिदो तय न थियो त ईरान खे तमामु ॾुखे वक़्त खे मुंहुं ॾियणो पवंदो, जेको हुन ते वेझो पहुची चुको आहे। अमरीकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कई आहे त अमरीका इसराइल जे ईंदड़ हफ़्ते ईरान ते हमले जी तयारी मुकमल करे वरिती आहे। हमला ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर शुरू थी सघनि था। अमरीकी अख़बार मौजूदु विचो भर जे ॿिनि आला उहिदेदारनि चयो आहे त इसराइल ऐं अमरीका मुख़्तलिफ़ अस्करी ऑप्शन ते गौर करे रहिया आहिनि, जिन में ईरान जी फ़ौजी ऐं बुनियादी ढांचे ते वरी बमबारी, नारफार्स में वाक़ई ईरान जे अहम तेल बरामदी मर्कज़, ख़ारिज आइलैंड ते कब्ज़े ऐं ईरानी सरज़मीन ते कमांडोज़ लाइ मलबे हेठां दबियल एटमी मवाद खे कब्ज़े में वठण जी शामिल आहे। वफ़ाक़ी करू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी तेहरान में ईरानी हमनसब सां मुलाक़ात, ॿतरफ़नि लाॻापनि खिते सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल। ईरानी घरू वज़ीर सिकंदर मोमनी पारां खिते में अमन जे क़याम लाइ पाकिस्तान जी तामीर किरदार जी वाखाण। सिकंदर मोमनी अमरीका ऐं ईरान विच में जारी छिकताण दौरान फील्ड मार्शल सदा समूरी जी कोशिशुनि खे बि साहरायो। ॿिन्ही घरू वज़ीरनि जे सहकार जारी रखण वारे अज़म जो वर्जाव कयो। तेहरान पहुचण ते सिकंदर मोमनी मोहसिन नक़वी जो आदर भाव कयो। तवनाई जी सप्लाई बाबति रुकावटनि सूरतहाल वकार रही, मुआशी तरक़ी मुतासिर थींदी। वॾे पैमाने ते तरक़ी मुदे लाइ मुआशियूं ॾुखियायूं पैदा थींदियूं। गॾियल क़ौमनि जी मुआशी ऐं समाजी काउंसिल जे इजलास दौरान पाकिस्तानी नुमाइंदे आसिम इफ़्तिख़ार चयो आहे त हाणोकी आलमी तवनाई ऐं सप्लाई में ईंदड़ रुकावटनि जा असर दुनिया जे हर खिते मैशत में महसूस कया पिया वञनि। माण्हुनि जूं क़ीमतूं 2025 जी सरासरी भेट में ॿिनि खां वधी पियूं आहिनि। वधीक 3,20,00,000 माण्हू गुरबत में वञण जो ख़तरो पैदा थी वियो आहे। ओलह एशिया जा मुल्क हिन बहरान में सिधी रीति शामिल न आहिनि पर असर बर्दाश्त करे रहिया आहिनि। तकरार सबबि सभ खां वधीक मुतासिर मुल्कनि में पाकिस्तान बि शामिल आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त माज जोगी राब्तेकारी मुआशी तरक़ी अवामी ख़िदमतुनि खे गति ॾियण लाइ अंतर आहे। डिजिटल राब्ता अॼु तालीम, सिहत, वापार ऐं अवामी ख़िदमत जी बुनियादी ज़रूरत बणी चुका आहिनि। पर्यावरण इलाक़नि में डिजिटल पहुच मुआशी मौक़नि ऐं ॼाण ताईं पहुच जो अहम ज़रियो आहे। टेली कम्यूनिकेशन ऐं इन्फॉर्मेशन सोसाइटी जे आलमी ॾियारे ते सदर ज़रदारी आईटी पीटीए मोबाइल ऑपरेटर जी ख़िदमतुनि जी वाखाण कंदो त हुकूमत समूरे मुल्क में डिजिटल पहुच ऐं राब्तनि खे ॾियण लाइ कोशिशूं वठी रही आहे। पाकिस्तान टेलीकॉम वापेदारनि जो अंग 205 मिलियन खां पार थी चुको आहे। मुल्क में ब्रॉडबैंड वापेदारनि जो अंग वधी 161 मिलियन खां वधीक आहे। सिंध जे 9 ज़िलनि में मकानी इदारनि जी नंढी चूंड लाइ पोलिंग जारी। पोलिंग जी अमल बिना कंहिं वक़्फ़े जे शाम 4 बजे ते जारी रहंदो। हैदराबाद, जामशोरो, चिजावल, सखन, सरफरोज, मीरपुर खास, जेकमबाद ऐं घोटके ज़िलनि में नंढे चूंड लाइ पोलिंग जारी। कैबनाथन शाह जे यूसी बुडा, मीरपुर बुडो जे यूसी राजापुर, ठारू शाह जे यूसी मोलण ऐं सेवण जे यूसी चना ते वोटिंग जो अमल जारी। सिक्योरिटी जा सख़्त इंतज़ाम। दादो जे कोडीजी में मीरबाग कैनाल मां ॿिनि ॼणनि जी हथियल तशद थियल लाश सुञाणप न थी सघी। पुलिस बि लाश खैरपुर सिविल अस्पताल जे सदर खाने हवाले करे छॾिया। पुलिस मौजूदु लाश जी हालत ख़राब हुजण सबबि बायोमेट्रिक ज़रिए बि सुञाणप मुमकिन न आहे। सुञाणप न थियण सबबि जांच में ॾुखियाई पेश अची रहियूं आहिनि।
1: आप सुन रहे थे, आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000002724। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: सिंध डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर रफीक अहमद, कंसल्टेंट डेंटल सर्जन, BDS, RDS, CNO, CRTHO, HSA इस्लामाबाद। असां वट बगैर तकलीफ़ जे दंद कढ़िया ऐं नवां दंद लगाया वेंदा आहिनि। हर कम जदीद टेक्नोलॉजी सां कयो वेंदो आहे। जरासीम खां पाक औज़ार, वक़्त सुबुह 8 वॻे खां मंझंदि 1 वॻे ताईं। पतो नज़्द गुल होटल हालाणी, राब्ते जे लाइ 03015630868।

0: ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0330385569
1: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो जारियों जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव 12 इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ खुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ
4: 0302018003। अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
4: न अदा
6: यार, अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेहरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
6: ऑफिस जी मेहरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेहरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूम

पोस्ट को लाइक और शेयर करो। अच्छा दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद, ये थी घर जाके शो सुनूंगी, आप कहीं शायद बाहर हैं, वेलकम करते हैं स्वीटी को। और हमारे साथ जी अच्छा कुछ कमेंट्स ना आप लोगों के ऊपर चले गए हैं, तो जिनकी कमेंट नहीं मैं पढ़ सकी हूँ तो जरा काइंडली दोबारा शेयर कीजिए हमारे साथ। ये गाना किसी भाई ने मुझे फरमाइश कर दिया था तो उनको डेडिकेट करते हैं। अली अकबर बरोही भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम प्यारे भाई। गुलाम हुसैन हमारे साथ हैं, हेलो। इखलाक बलोच कहते नाइस यो आंसर, बिना वजह रेडी असान जूं कुराड़ियों थींदियूं आहिनि, इन लाइ असां तयार ही नाहियूं थींदा। वाह वाह क्या बात है। अच्छा किशोर भाई कहते अदी बचपन का हमेशा दोस्त आस पास वारा पड़ोसी कदें भी सामू इंदा हुआ ये चवंदा हुआ दे खबर तैयार लगो पयो आही किथे वनी पयो छा जो साग्यो हाल अन्या ताई आहे, यानी तवा की आदत आ हमेशा का तैयार रहने जी। या वैसे सुठी गाल हुंदी थव हमेशा ये चिकना रहो। जेको मानो डसे दे छे दियो खबर नाडी वनी पे छा बिला।

अच्छा राजा खान भाई हमारे साथ मौजूद है। हेलो इमरान अली उजन भाई, मुमताज मलाई बिल्कुल आपको सुनाएंगे। अच्छा तो ना मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे। सनोला बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद जमान वालेकुम अस्सलाम। वरियाम अली जतोई हमारे साथ मौजूद है। वरियाम कैसे हैं, ठीक ठाक। और ये फिरोज अली बिरोही हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा अनवर भाई कहते हैं जे क्रीम में एतरा वाइटामिन हूंदा उहा क्रीम त लाजवाब हूंदी नी। बिल्कुल बाबा बिल्कुल, तव्हां इस्तेमालु ज़रूर कजो वाइट एसी लवली क्रीम। जेके चवंदा आहिनि त बाबा असां फेयरनेस क्रीम लॻाईंदा आहियूं, असां नाइट क्रीम नथा लॻाए सघूं, तव्हांजे लाइ फेयरनेस क्रीम आहे वाइट एसी लवली क्रीम। हाणे ॾिसो मां हर कंहिंजे लाइ हर हिकु प्रोडक्ट खणी आई आहियां। कोई चवंदो आहे असां साबुण नाहे लॻंदा, असां फेस वॉश लॻाईंदा त हुनजे लाइ फेस वॉश आहे। कोई चवंदो आहे असां नाइट क्रीम नाहे लॻंदा, तव्हांजे लाइ फेयरनेस क्रीम आहे। कोई चवंदो आहे असां एक्नी वारी ट्यूब लॻाइणु चवंदा, तव्हांजे लाइ एक्नी वारी ट्यूब आहे। त हर प्रोडक्ट तव्हांजे लाइ आहे बाबा। हाणे तव्हांखे भॼण कोन ॾींदासीं, तव्हांखे इस्तेमालु कराईंदासीं जीअं तव्हांखे ख़बर पए त वाइट एज जा प्रोडक्ट मार्केट में आहिनि केतिरा ज़बरदस्त आहिनि। अच्छा हिदायत लगे थे टॉपिक, वैसे आजकल वजह बनी हुई है इतनी शादियां हैं कि बंदा तैयार ना भी हो तो रिश्तेदार तैयार कर ही देते हैं इतनी गर्मी में भी। ये तो वैसे सही बात है। अनवर भाई कहते हैं शादी वाले दिन तैयार हुए थे, सही किया था या गलत आप बताएं। सही किया था भाई। ओके जी महर इरफान सियाल साहब कहते हैं नाइस होस्टिंग मैम आरजे सिद्रा मुस्कान, बहुत शुक्रिया जी आपकी नवाजिशें हैं। और आपको भी वेलकम करते हैं महर इरफान सियाल साहब। और टाइम आ चुका है यहाँ पर जरा न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में। आप हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए, टॉपिक को फॉलो करते रहिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आते हैं। सो आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए।

0: इट्स 2 PM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
3: तस्लीम थियल एटमी ताकत आहे. अहिड़ी धमकी ज़हनी निवालपणी जनून ऐं जंग पसंदीअ जी अकासी करे थी. ज़िमेवार एटमी रियासतूं

0: पाकिस्तान के खिते में इस्तेकाम लाइ कोशिशन की अहमियत वधी पई। अमरीका दहशतगर्द खिलाफ कोशिशन में पाकिस्तान के अहम ए मरकजी हिस्सेदार करार दई छो। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेड कोपर है तो पाकिस्तान दहशतगर्द के खात्मे लाइ एतमाद जो को हिस्सेदार है जो खिते में कालदम दाइश खरासा खिलाफ जंग में मरकजी हैसियत रखे तो। अमरीका के सेनेट कमेटी के ब्रीफिंग सेंटकॉम सरगरा पाकिस्तान से मजबूत फौजी हिस्सेदारी सबब दहशतगर्दन खिलाफ वही कामयाबी मिली। गडियल कामयाबी पाकिस्तान ए अमरीका के पुरानी दोस्ती गडियल अजम की सुधीरी तकासी कन थी। दहशतगर्दी वाले सरगर्मियों इलाके सिक्योरिटी खतरन सबब अफगानिस्तान वाशिंगटन जो ध्यान जो मरूर है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601100।
6: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हज़रात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय,
8: जदे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नस्लन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
9: खुशखबरी खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 03005569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुजे दुकान जी बे डरंदी
3: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836
0: भाई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5-724
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो बिल्कुल जी, आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं, खूबसूरती में और ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बता भी इतने ज्यादा प्यारे प्रोडक्ट्स के बारे में रही हूँ ताकि आप इस्तेमाल कर सके और अपने इस्तेमाल करने के बाद जो है ना हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को रिजल्ट्स किस तरह मिले हैं और किस तरह आप लोगों का फीडबैक है जनाब इन प्रोडक्ट्स को लेकर। तो यहाँ पर पहले मैंने आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया ना, तो अभी आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोग जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए सिर्फ दो प्रोडक्ट है, जैसे कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन का फेस वॉश है। ये दो प्रोडक्ट्स अभी तैयार किए गए हैं। अगर आप मजीद जो है ना अच्छा वाला इन्हें प्यार दिखाते हैं, अच्छे वाले प्रोडक्ट का जो है ना वो रिव्यू देते हैं, अच्छी अच्छी आप प्रोडक्ट जो है ना वो इस्तेमाल करके उन्हें बताते हैं, तो ये मजीद प्रोडक्ट्स में जो है ना वो इजाफा करते जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट में आप लोगों के लिए चाहे आप फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो डी स्किन का फेस वॉश मौजूद है, अगर आप डी स्किन की ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी ब्यूटी क्रीम भी मौजूद है, अगर दोनों लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी दोनों लगाते जाइए। और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपके लिए नंबर है जनाब 03-15-799-0595। ये नंबर आप लाजमी डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए और आप इजीली वहां से जाकर परचेज कर सके। तो जाइए परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरत हो जाइए, खूबसूरत रहिए, क्योंकि ये आपका हक है, आप डिजर्व करते हैं। तो अच्छे वाले प्रोडक्ट्स आप लोगों को पता होने चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट हैं जिनमें डी स्किन की ब्यूटी क्रीम है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये विटामिन ई बीट से तैयार शुदा है, दो रातों में आप लोगों को रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है जनाब, क्या बात है, समझ रहे हैं। दो रातें बस आप इस्तेमाल करेंगे आप लोगों को ना बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और उसके अलावा माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन से तैयारशुदा है, आपके चेहरे के डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाएंगे, आपके चेहरे पर जो निशानात होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग हो जाएगी, ब्यूटीफुल हो जाएगी और आप ग्लो करते रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं, तो जाइए परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए। साथ में अगर आप डी स्किन का फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो वो भी लगाइए जनाब, वो भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का फेस वॉश है। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हमें बताइए कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते जा रहे हैं। ओके, सो मैंने आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं कि क्या आप भी क्या कभी बिला वजह जो है ना वो तैयार हो जाते हैं, या फिर आप ऐसा है कि तैयार होने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है कि नहीं भाई हाँ तैयार छो थे बुला चढ़ो जरूर। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैंने देखे शादी ब्याह हो, कोई इवेंट हो, तब भी वो जो है ना वो कम तैयार होते हैं, और कुछ लोग बड़ी ऐसे होते हैं ना कि बस कुछ भी हो, कुछ हो ना हो, बस वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये अच्छी बात होती है, वैसे तैयार रहा करें, हमेशा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रहा करें। और ये एक और पर्सनल मेरी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद शेयर करूंगी। यहाँ पर जो है ना आज हम कॉल्स लेने वाले हैं, ठीक है, प्रोग्राम में। ओके, सो कॉलिंग वाला सेगमेंट हम जरा स्टार्ट कर लेते हैं। कॉलिंग नंबर हमारे प्रोग्राम का होने वाला है 03221322N88। सो 03221322N88 के ऊपर आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, कॉल करेंगे और बताएंगे कि आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं और आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये बताने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है ना हम बातें करेंगे, और अगर आप भी कॉल कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी कॉल हम पिक करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कॉल हमारे प्रोग्राम में आ रही है तो हम जरा पिक करेंगे और देखेंगे फर्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है। जनाब हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम,
0: के रसे सगर मौजूद आप? दुआ तव बुधी छो सब दुआ मुझी तव ये चवंदा ना मानू केंजी दुआ लगी थे दा मुजी दुआ लगी थे बिल्कुल हुआ सो मुजी दुआ थे अरे दुआ दे हालवाल केड़ो प्रोडक्ट लगाई थी कोन लगाई थी छा कयो थे
1: लवली लवली थे
0: लवली वरती थे
1: हां वठो थी आया हूं
0: थोड़ा ये पार पता दे जे मुके खबर पे त तू वाकई लवली वठी आई हां
1: मां दिन से त देखे वो दन का हुए और मुजी गाल कर मई
0: हेलो ये न कर बाबा ये न कर दुआ दिस अच्छा टॉपिक ते दुआ छा चवंदी
1: आ मु ये रे जाऊं सब
0: टॉपिक यो आहे त छा तव्हां कॾहिं ईअं बिना वजह तयार थींदा आहियो? कुझु माण्हुनि जो शौक़ु हूंदो आहे न बिना वजह ई बसि तयार थियण जो, वञू घर त बसि हू तयार लॻा वेठा हूंदा आहिनि ईअं। अच्छा पहिरियां थींदी हाणे न, ईअं छो? हाणे छो वॾा थी विया आहियूं, ईअं चओ हाणे वॾा थी विया आहियूं, अकुल अची वियो आहे। चलो दुआ कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदा आहियो? दुश्मननि खे अॼु बि सलाम आहिनि बसि। चलो दुश्मननि खे सलाम दुआ जे तरफ़ां। सो थैंक यू सो मच दुआ, तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल कई ऐं तव्हां वाइट एज जी लवली क्रीम लॻायो था। नेक्स्ट टाइम तव्हां कॉल कई त तव्हांखां लाज़मी पुछंदमि बाबा निशानी ॿुधायो, ईअं असां यकीन कोन कंदा आहियूं, सम्झो था। सो कॉलिंग नंबर आहे 0332132128। नेक्स्ट कॉल वठूं था, ॾिसूं था नेक्स्ट कॉलर कहिड़े सां सघनि मौजूदु आहे। हैलो अस्सलाम वालेकुम। नालो ॿुधाए पंहिंजो, माई सुणी अला, नालो त ॿुधाए पंहिंजो। लेला लेला लेला ख़ुशा सदको वञाए, काॾां ज़ाहिर थी आ ख़ुशि लॻी पई आहे। अदी बि ख़ुशि
1: आहे,
0: ॿुधाए प्रोग्राम ॿुधो पिया लीला। चलो मूंखे ॿुधायो टॉपिक ते लीला छा चवंदी। टॉपिक आहे बिला वजह तयार थियण जो शौक़ु अथई या बसि ईअं?
1: अच्छा हा ॿुधो न, हथे असांखे तयार लॻी पई हूंदी आहे, सिर्फ़ असां न हूंदा, इन करे थी सघे असांखे न वठी वञनि त वरी मेणा मिलंदा न।
0: हा पोइ दिलि टुटी पवंदी,
1: दाना खाई खाई माना
0: ॿुध ॿुध लीला, घर जा ताना खाई खाई पोइ सिदराए शो में गाना ॿुधंदा आहियूं ईअं न? अच्छा लीला मूंखे ॿुधायो त तव्हां वाइट एज जा कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कया या डी स्किन जा कोई लॻाइण जो इरादो आहे या माना? चलो चलो तव्हांखे वापसी ते वेलकम चऊं था। कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदी लीला? सलाम ॾे मिड़े कंहिंखे या बसि बाए बाए कयूं हाणे? चलो थैंक यू सो मच लीला, असांजे प्रोग्राम में शामिल। लीला परी ॾाढी माशाला सुहिणी ऐं सुठी सबाजड़ी छोकिरी आहे। उन खां अलावा तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया जना, प्रोग्राम में तव्हां कॉल कयो पिया, कॉलिंग नंबर आहे 0332132128। कॾहिं कॾहिं मूंखे लॻंदो आहे शायदि मां नंबर ग़लति न ॿुधाए वञा, पर सदाई सही हूंदो आहे।
1: टॉपिक
0: ते तव्हां छा चवंदव?
2: हा टॉपिक त इहो ई असां चवंदो की असांखां अञा क्रीम ख़रीद कोन कई आहे ऐं तयारु थी वेंदा आहियूं केॾीमहिल।
0: चलो इहो बि ज़बरदस्त आहे, कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदे? ॿियो ॿुधायो तव्हांजे घोट में मिले थी वाइट एज जी क्रीम या डी स्किन जी क्रीम?
2: न असां वटि मिले कोन थी हिते, असां वटि शहर असांजा काफ़ी परे आहे।
0: जी त पोइ तव्हां कहिड़ो जेको नंबर प्रोग्राम ॿुधायो हुन नंबर ते तव्हां राबितो कयो न त तव्हांजे घोट में अवेलेबल कराए छॾनि, ॻाल्हि ई सवली। चलो चलो ठीकु आहे, दोस्तनि खे यादि करे वठो। जी जी फ़ाइज़ा त वैसे बि हलाईंदा
2: आहियूं
0: रोज़ सो मच, तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई प्यारा भाउ। बिल्कुल जी कॉलिंग नंबर 0332132128। बिल्कुल जी कॉल कीजिए, आपकी कॉल हम अटेंड कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप वो इंसान है जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, बताएं जरा मुझे जल्दी जल्दी से। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों की कॉल्स हम पिक करते जा रहे हैं। ओके सो ये वाली कॉल हम पिक करते हैं, देखते हैं कौन कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, क्या बात है।
0: वाह सफा मजे में। फारूक भाई छाला खुश आयो। माशाल्लाह माशाल्लाह मामी सफा मजे में आए। प्रोग्राम बुधो पा
2: भलो
0: कंदा चलो जबरदस्त। मुझे तबियत वगैरह सही अव ठीक आयो। चलो जबरदस्त माशाल्लाह सुठी गाना है। लवली वाली जका क्रीम है ना वाइट एजी वो भी ट्राई करे दिसजो।
2: ठीक है पुत्र
0: वो तो तमा डियां जो लगाईंदा डियां जो लगाए करे काडे भी घुमण वणो बस उन सा भी ताई लगदो तो ता बस रेडी आ गारे वणण जे लाए। चलो जबरदस्त। केड़न दोस्तन के याद कंदो प्यारो भाव। चलो ठीक है थैंक यू सो मच फारूक भाई प्रोग्राम में कॉल कई मोहब्बत प्रोग्राम बुधा एतरी चाह मोहब्बत से असानी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल भी कह सो बिल्कुल जी कॉलिंग नंबर 0332132288 ही वाली कॉल दिसूँ तो खेड़ असर मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम जी कैसे हो। ठीक हो
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कौन भाई हमारे साथ मौजूद है।
2: दिलीप कुमार मेघवाड़ बात कर रहा हूँ बाबूपुर डिस्ट्रिक्ट थरथर करते हैं।
0: ओके प्यारे भाई कैसे हैं ठीक ठाक।
2: आपकी नजरिया तो कट कट के आ रही है मीरपुर खास की।
0: हाँ बस नेटवर्क का थोड़ा इशू होगा ना नेटवर्क हाँ सही कितने भी न तो हले। टॉपिक सुठी लगे मूड़ी सिंधी में ट्राई कर प्रोग्राम के बारे में।
2: प्रोग्राम तो तमाम तमाम तमाम भलवा तकरीबन कुछ सालन का बुधो पिया पर शामिल ही है साथी
0: जी पेरों दफो तो आज कॉल लगी है जी जी जी जी केड़न दोसन के याद करो प्यारो भाई
2: जी रुस्तम अली पवारा मलक मोहन बलोचा मोहम्मद साले लगारिया जॉन कुमार कोहली रामचंद मकान वे जेके बुदन जा सुपनी के कोठर हला प्रथम जे कलाम बताए जो मास्टर मंजूर जो पानी की गोंद गुलाब शरबत।
0: ओके ओके ओके प्यारा बात आज बिल्कुल फरमाइश पूरी कनासी तवा सा गाला हो पर हां टाइम जो का ना वो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो थी वयो है सो तवा का इजाजत डटू था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ हलूँ था। उनका अलावा तुम मोहब्बत हूँ तारी चाह मोहब्बत से प्रोग्राम बुधन आयो उनका अलावा वरी ओही वनी ओही मोटा थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88 नेटवर्क और सुंदरी प्रोग्राम वाइटिश एंड स्किन ब्यूटी शो।

0: पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-00-3-8-5-6-9।
2: This program is brought to you by
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां
4: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते। खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾींहं कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
5: न अदा।
7: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहराबपुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहराबपुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-399-2836।
9: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94।

0: ओके जनाब, आप सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद थी जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एंडी स्किन ब्यूटी शो। हाँ जी जनाब, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो ये शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खूबसूरतियाँ हासिल करते जा रहे हैं और अपनी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो बढ़ाते जाइए जनाब खूबसूरती, कंखे ना वणंदी बाबा हर कोई चाहिंदो त असांजी खूबसूरती जेका न वधंदी रहे। तो तव्हां वधाए सघो था जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो। ओके जी, अगरि तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइण चाहियो था, तव्हांजे ॻोठ में नथी मिले, तव्हांजे शहर में नथी मिले, तव्हांजी पाड़े में नथी मिले, त हुन जे लाइ तव्हांखे नंबर आहे जेको डायल करिणो पवंदो। नंबर आहे 03-15-799-0595 03-15-799-0595। ही नंबर तव्हां डायल कयो, जेको बाबा तव्हां डायल कंदा त तव्हांखे रिस्पॉन्स मिली वेंदो। नंबर ते तव्हां ॿुधायो त तव्हां प्रोग्राम ॿुधी करे आया आहियो, तव्हां पंहिंजे ॻोठ में अवेलेबल कराइण चाहियो था, तव्हांजे शहर में नथी मिले, वाइट एज जी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन जी प्रोडक्ट्स, तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट लॻाइण चाहियो था उहो तव्हां हुननि खे ॿुधायो, जी तव्हांजी आसानी थी वञे, तव्हांजे लाइ अवेलेबल कराए वञनि। ठीकु आहे, सभ खां सवली ॻाल्हि हुन खां अलावा अगरि तव्हां इस्तेमालु कयो पिया त मूंखे ॿुधाईंदा हलो कहिड़ो प्रोडक्ट तव्हां लॻायो पिया। अगरि तव्हां अञा इरादो कयो आहे त बाबा एतिरो एतिरी देरि इरादा न आहिनि कबा, बसि करे ॾेखारियो तॾहिं ज़िंदगीअ में अॻिते वधंदा। ओके जी, सो लुबना हमारे साथ मौजूद थी, वालेकुम अस्सलाम मेरी जान लुबी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक ठाक कहती हूँ, आपके साथ साथ हूँ। आज कोई अच्छा सा सॉन्ग मेरे नाम करो और सलाम टू माय बेस्टी जी आलिया बासी निदड़ी और सब क्यूट लड़कियों को। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम। और निदड़ी बस कल्ला आई वरी सागो गुम थी वही, अलाए कड़ो मसलो आ छोकरी सा। और फजीला भी हमारे साथ मौजूद है, फजीला मेरी जान आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है। और ये है जी, हाय बाजी, कल गाने जी फरमाइश मुनवर मोलाई जी आवाज में याद करो, नहीं चलाया था लाड़काना से आप हमारे साथ हैं। सोनारो बाजार खां इमरान अली बिरोही भा, इमरान भा बिल्कुल तव्हांजी गानो मतलब याद अचे थो, त तव्हां मुनवर मोलाई जो गानो चयो पर कहिड़ो गानो चयो इहो यादि नथो अचे, सो बिल्कुलु ॿुधी वठंदासीं। और फा देरी सऊद देरी फ्रॉम नवाबशाह सलामती अदी सफ़ा भलिया, तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो। अरीबा की थी आप ये गाना तो लगाए, बिल्कुल जी आप ही गाना लगाते हैं आपके लिए, बस तां थोड़ो सबर करना कयो। और इरम भी हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू। बेवस जेड ए बलोच हमारे साथ है, कहती दरगाह साईं जमाल शाह बांदी रोड मोरो खां। अच्छा कहते हैं गुलन भी घाव डना त कंडन खे छा चवां, मां पंहिंजा पंहिंजा न थिया त धारन खे छा चवां मां। इहा हक़ीक़त अथव अला, बसि कंहिंखे बि कुझु बि न चओ, बसि मुंहिंजो प्रोग्राम ॿुधो। वाइट एज जा प्रोडक्ट लॻायो, डी स्किन जा प्रोडक्ट लॻायो, बसि सुहिणा सुहिणा थी वञो, ॻाल्हि ई ख़तमु। और ॻोठु मोहम्मद तैयब थेबू खां बि भला थेबू, तव्हांजो शो वेरी नाइस आहे। वालेकुम अस्सलाम प्यारा भाउ, मोहबतूं आहिनि तव्हांजो, कुझु कॉल्स वठी वठूं था न त बाबा, इहो ॿुधण में ईंदो त सिदरा गालियूं नथी वठेव, ॾिसो सिदरा गालियूं वठे थी वठे थी वठे, अदो तव्हां बि ॾाढो सही। ओके जी, सो कॉलिंग नंबर 03-32-13-22-188, तव्हां बि बिल्कुलु कॉल करे सघो था। ही वारी कॉल वठूं था, ॾिसूं केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: केरु अदो असां सां गॾु मौजूदु आहे? जमालदीन भाउ, ख़ुशि आहियो, कहिड़ा
1: मज़ा?
0: अलहमदिल्ला, प्रोग्राम ॿुधो पिया?
1: हा जी जी बिल्कुलु भाॼी ॿुधो पिया।
0: टॉपिक ते छा चवंदा? चलो ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ॿुधायो त कहिड़ो प्रोडक्ट लॻायो पिया?
1: हा माशाल्लाह भाजी अचो सभु सुठी आहियां, इहो
0: साबुण वठी आया, ज़बरदस्त। ऐं मूंखे ॿुधायो त इस्तेमालु कयो अथव या अञा पोइ कंदो?
1: हा बस इस्तेमालु शुरू
0: कंदासीं। जी जी ॿुधायो।
1: खुशबूदारो वा।

0: छा ॻाल्हि कजे, कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा? ओके, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में कॉल कई, प्यारा भाउ तव्हांजो मोहबतू। लास्ट में थोरो तव्हांजो आवाज़ कटिजी वियो। वाह साईं, इहो भाउ जो टैलेंट ॾाढो भलो आहे। ॾाढो VIP गाना ॿुधाईंदा आहिनि असांजे प्रोडक्ट ते। सो तव्हां बि कॉल करे सघो था, कॉलिंग नंबर आहे 0332132322 and 88। नेक्स्ट कॉलर, हैलो, अस्सलाम वालेकुम। केरु असां सां गॾु
1: आहे?
0: नालो ॿुधाइजो। सीमा, सीमा छा हाल, ख़ुशि आहियो? मां बि मज़े में। प्रोग्राम ॿुधो पिया सीमा? टॉपिक ते छा चवंदव सीमा? टॉपिक ते छा चवंदव? कुझु बि न माना, बसि ॿाहिरि बने ते। अच्छा, मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हां प्रोडक्ट कोई इस्तेमालु कयो आहे जेके ॿुधायां पई? चलो, लाड़काने में त मिलनि था, रेशम गली वञे न वठी अचो वञे। ईदई शॉपिंग न कई अथई छा अञा? हा, वञे शॉपिंग करण त वठी अचां वाइट एज जी क्रीम या डी स्किन जी वाइट एज जी लवली क्रीम वठी अचां। चलो सीमा, ॿियो छा चवंदव? जी जी, शामिल कयो। चलो चलो, सुठी ॻाल्हि आहे, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सीमा, तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई। जी जी, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। भई सिदरा मुस्कान बि असांजो प्रोग्राम ॿुधेव पई। कॉलिंग नंबर आहे 0332132322 and 88। नेक्स्ट कॉलर, हैलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहिड़ो भाउ सां गॾु
2: आहे?
0: नवाब शाह खां कॉल कई आहे। ख़ुशि आहियो भाउ प्यारा? माशाल्लाह जी, अलहमदुलिल्लाह ठीकु आहियां। प्रोग्राम ॿुधो पिया प्यारा भाउ?
2: इहो
0: तव्हांजे ॻोठ मां नथो मिले त नंबर प्रोग्राम ॿुधायां थी, नंबर वठो। जी बिल्कुल बिल्कुल, तव्हां कॉल त करे ॾिसो न। चलो ठीकु आहे, तव्हांजे ॻोठ में अवेलेबल कराईंदा, पर जेको नंबर तव्हांखे ॿुधायो, नंबर ते तव्हां राबितो ज़रूरु कजो हिकिड़ो दफ़ा।
2: भाउ मुंहिंजो सजादुल्ला जमाली,
0: जी जी,
2: अली अदर जमाली, अली दोस्त जमाली, अॼु असां प्रोग्राम गॾिजी ॿुधूं था।
0: थैंक यू, तव्हां भाइरनि जूं मोहबतूं आहिनि, इहे मोहबत चाह सां प्रोग्राम ॿुधंदा रहो ऐं तव्हां लॻाइजो। थैंक यू प्यारा भाउ, ख़ुशि रहो। हीउ सुकून बाबा सदाई खपे। प्रोग्राम तव्हां ॿुधो पिया ऐं नेक्स्ट कॉल वठूं था, ॾिसूं था नेक्स्ट कॉलर कहिड़े सां गॾु मौजूदु आहे। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। अलहमदुलिल्लाह ठीकु, कहिड़े सां गॾु मौजूदु
1: आहे?
0: इरम, बस इरम शो। बस इरम, खेल लॻो पिया तूं, ख़ुशि लॻी पई आहे? अच्छा इरम, ॿुधाए, विया आहियो मार्केट को चकर बकर आयो अथव? ईदई शॉपिंग कई अथव, वठी आया आहियो प्रोडक्ट जेके ॿुधायां थी? ओॾे वञो न, ओॾां मिलंदी थी शिकायत खणी आया त सर पवन कुमार वटि न मिलियो आहे प्रोडक्ट। चलो तव्हांजी शिकायत ते गौर कयो वेंदो। चलो ठीक है चवंदा सर पवन कुमार के बाबा रखो क्रीमियूं वठण वारा जके न उता वटा वठी वेनव ओरे
1: चंदन मेरा खंदार पवन कुमार बेरे करे पंदा ने केरो
0: वन्नु न जे जी सिक्का हुंदी तो वेंदा दिस तू पंद करे थी न सागोई चलो एडम थैंक यू सो मच ना प्रोग्राम में कॉल चलो थैंक यू सो मच बियो छा बस मिनसा भी खुश है हाँ सुबह हलाया भला हाँ तो टाइम खत्म थी चलो ठीक है थैंक यू सो मच मुझे प्यारी बस एडम तेजबानी प्रोग्राम में बिल्कुल जी प्रोग्राम में हाँ अस कॉलिन के थोड़ो स्टॉप लगायूं था छो तो बाकी वही पंज मिनट बचा है असान प्रोग्राम में सो ये असानी प्यारी एडम हुई वेचारी जो ना पंध कंदी है जे प्रोडक्ट लगाना हूं अस वही वी आए जिता किता गोल्हे सो बिल्कुल तमाम भी मोहब्बत कर बाबा पांजे चेहरे स्किन जो ख्याल रखो वाइट एस्ट जहा ब्यूटी प्रोडक्ट्स जी इस्तेमाल कर सो डी स्किन जहा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सो खूबसूरती के बधाईंदा तुम्हें प्यारो सोनो बढ़ाई सफा चिमकंदा बदला तो कॉलिंग नंबर है जनाब कॉलिंग नंबर के जिनती तुम राबतो कंदा वो नंबर है 03-15-799-0595 ही नंबर डायल कर जी तुम्हारे करीबी जन स्टोर से भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी अच्छा किशोर भाई कहते कि दुआ खान धागो कराए दे बाकी के दुआ का वाके धागो कराए देनो पंदो तवाके तवाजी कॉल छो नदी लगे

और दारावन से डॉक्टर राम फकीर हमारे साथ हैं, जे एम जोगी फकीर। हाय सिद्रा डियर, आप कैसी हैं? प्लीज प्ले आबिता परवीन जी। ओके, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी फरमाइश भी लगाएंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। और उसके अलावा नेमतुल्ला जतोई हैं, नवाब जतोई हैं, बहुत शुक्रिया जी बोथ ऑफ यू।

हिदायत अल्लाह कहते हैं सदरा तो खा सवा किसी और का प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता। ऐसा मत बोले, बहुत से लोग ऑफेंड हो जाते हैं। और ये आदिल हुसैन कहते हैं प्रोग्राम सफा भल्लो आए। बिल्कुल जी, प्रोग्राम तो भल्लो आए, पर जड़ी तवा ही प्रोडक्ट जगह बुधाएं दी प्रोग्राम में वो इस्तेमाल करना तो पोए तवा भी दाडा भल्ला थी वेना। सो ही प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो जी, सुना सुना सफा सुना थी वेनो। आई उन खां अलावा असानी पोस्ट के लाइक शेयर कयो जिन अन्या तई कोन कयो आहे। अनवर भा बिल्कुल हाने मोकलाणी जो वक्त सफा करीब अची चुको आहे। ओ हिते सामू अजे बीठो आहे। सो हाने बिल्कुल तवा खां इजाजत वठनासी, वरी इंशाल्लाह तवा सां मुलाकात मुझी सुभाणे वारी प्रोग्राम में थियण वारी आहे। 1 बजे खां 3 बजे तई तवा जो सन्यो साथ हूंदो। जॉइन कंदा ॿुधो न विसारींदा। ऐं किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां भई सया। सो मोकलाणी नाहे बाबू सिन, सलामत सां सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल।

0: It's 3 PM. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: बी इनिंग में बैटिंग जारी. पाकिस्तान ॾखण एशिया जी तारीख़

0: It's 3 PM. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्याल रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन आनी इरशाद हालानी रोड मेहरा पर राबते जे लाए 03201800003।

तू लेबार ड्यू ऑडियो ए विजुअल लेक्चर सिस्टम जी सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी ए इंग्लिश ते खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट जरिए मेडिकल ए इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतीजा रांदन जो मैदान ए उते मुनक्कद तहरीर तकरीर ए ज़हनी आज़माइश जा मुकाबला पंजे अखिन जे नूर न्याणन ए प्यारन पुटन जे मुनासिब तालीम ए तरबियत लाए अजुई मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर जी विजिट करियो वधिक राबते लाए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मज़हर स्कूल सिस्टम कॉन्टैक्ट नंबर 0300 निसार अहमद नंबर 03013860

0: पीडियाट्रिशियन हूँ, 5 साल से कम उम्र है लाना और इससे कोई खतरा नहीं है। हर बार
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-003-8556-9।
2: क्या देख रहे हो? ये हर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री, नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेहरापुर। असा वट जगह जो डारियों, जगह जा पावा आई पाइप, डेढ़ ब चार छह नव आई 12 इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 आई तौकीर अहमद 0306-1623-793।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आमद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर, डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-399-2836।
7: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
9: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

सिंध जे सुर जो एहसास हूँ। सिंध धरती जा सुर जड़े गूंजन था तो दिलिन जा सब दर्द भी मुरकन था। प्यारा दोस्तों, सुगर कचहरी सिर्फ शायरी जो नाल ही तो दिलिन के जोड़न जो मोहब्बत के वधायन आई सिंधी सकाफत के जिंदा रखन जो सुनो जरियो है। हाने बिना देर जे अचो तो प्रोग्राम जो बाकायदा सा आगाज कयो। आही प्रोग्राम जी मटियारी हैदराबाद एफएम 91.6, जी मात्री एफएम 90.4, जी मेरापुर एफएम 94, जी मिरपुर खास एफएम 88, जी लाड़काना एफएम 88।

जी सखर एफएम 88 आई जी सखर नवाबशाह एफएम 90.8 जे लाइव स्टूडियोज में पेश कयो पियो वञे। असां गड लाइव स्टूडियो में मौजूद आहिनि सिंध जा मञल ऐं एवार्ड याफ्ता सुगर फकीर, जंहिंमें असां सां गॾु सुगर फकीर उस्ताद मंठार अली बुगियो साहब, सुगर फकीर उस्ताद गुलबेग जमाली साहब, सुगर फकीर उस्ताद मोहम्मद कासिम डायरी साहब, सुगर फकीर उस्ताद हाजी नवाब संजरानी साहब, ऐं सुगर फकीर अलगोज़े नवाज अब्दुल मजीद चांडियो साहब। जी असां अॼु के असांजे लाइव स्टूडियो में ई असांजा सिंध जा सूंह, सिंध जा सुगर असां सां गॾु, सिंध जा जेके सफ़ीर आहिनि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। असां प्रोग्राम जो आगाज़ कयूं था अलगोज़े नवाज अब्दुल मजीद चांडियो साहब जिन खां जेके असांखे लोक धुन ॿुधाईंदा। अजी साईं बिस्मिल्लाह।

0: વાહ સહી વાહ. આજે સમય આવા બધી લોક લોક ધૂન જેમે અસાંખે બધાણ વાયા હવા સુગર ફકીર અલગોઝ નવાઝ અબ્દુલ મજીદ ચાંડો સાહેબ. અજે સમય હી એક તમામ ખૂબસૂરત લોક ધૂન હુઈ જેકા અસાંખે અબ્દુલ મજીદ ચાંડો સાહેબ બુધાયું. સમય હી પ્રોગ્રામ જી એફ એમ નેટવર્ક જે તસલસલ સા અસાંજે 8 એફ એમ ચેનલ્સ તે કનેક્ટ આહે. માં જો પેંજો મેઝબાન સલીમ અહેમદ સરગાણી. સમય અસા સા ગડ સિંધ જા મશહૂર મારૂફ ભલોડ સુગર મોજૂદ અન બિના કે દેર જે અસા પેંજન સુગરન તરફ હલો થા. હાણે અસા હલંદાસી અસા જો મશહૂર મારૂફ સુગર સાઈ ઉસ્તાદ મંઠાર અલી બુગ્યો સાહેબ તરફ જે કે અસા કે ખુદા જ દિને માં કુછ ઉધાઈંદા. અસલામ અલૈકુમ સાઈ.
1: બિસ્મિલ્લાહ રહેમાન રહીમ. આઉં નિહાયત છોરાયતો આહ્યા એફ એમ વારનિ જો જને હી પ્રોગ્રામ શરૂ કયો આહે તસલસલ આહે હિકડો સિંધ જે કલ્ચર જો લોક અદબ જો ઓલીએ જો જંહિં ઇન્હનિ વડા કુર્બ કયા વર કયા આહિનિ. આડો અસાંજે ઈદ ઉલ ઉઝા બિ અચે પઈ દિલ કડે પઈ ત આઉં કુછ ચંદ સિટું उन तरफ वञा. एफ एम ते अलाह कया इलाही आहिनि अहसान जो सॼी सिंध में पंहिंजे ॿोलीअ जी प्रचार थो करे. सलीम सरगाणी सकरन में विझोधो आहे जवान जंहिं सुगड़नि खे सिंध में आहे मर्ज़ ॾिनो मान. सुगड़ भला सिंध जा सभु ख़ाशा आहिनि खान के आया के ईंदा के विया के वेंदा आहे फाइक जो फरमान. अॻियां ईद अचे पई उज़ा जी ॾिस थियो पए कामिल नबी क़ुर्बान. उन ई अलाए आका ऐं आगे आहे फरमायो मज फुरकान. जीअं जंहिं सुनत कई हज़रत इब्राहिम जी अला पाक थियो इंसान. जेको पासे रहे पंतन पाक जे उन ते राज़ी रब रहमान. सुगड़ सोड़ा सिंध जा ऐं सकरनि जा कनि था बारीअ जो बयान. अॼु एफ एम जो अदा आहे ॿुधियो मंठार थियो महिमान. तंहिंखे दाता ॾींदो दान हूंदो मशर में गॾु महबूब सां.
0: आऊं
1: निहायत ई थोरायतो आहियां शुक्रगुज़ार आहियां साईं सलीम सरगाणीअ जो जेको पंहिंजे हिन बाक़ाइदे प्रोग्राम खे तरतीबवार हलाए पियो. अॼु जॾहिं मूंखे बि सॾु थियो त मूं बहादुरी ॾिनी छो त मुंहिंजी नौकिरी आहे पंजनि ॿारनि जी तारीफ़ ऐं तौहीद करण जी ऐं सुगड़नि जी नौकिरी जेके सिंध जा सभा जा सुगड़ आहिनि. ऐं हमेशह चवंदो आहियां उहे सभु मूंखां भला आहिनि. ऐं कंहिं जहिड़ो न कंहिं जहिड़ो छो त मूंसां जेके बाह बेली अॼु हिन प्रोग्राम में सुगड़ आहिनि उहे बि अजीब सुगड़ आहिनि. ऐं उन्हनि खे बि मां सम्झां थो मूंसां खोड़ सारो टाइम थियो आहे. ऐं एफ एम खे बि उन्हनि तमामु घणो वक़्तु ॾिनो आहे जीअं उस्ताद गुलबेग जमाली मोहम्मद इदरीस जमाली हाजी नवाब संजराणी ग़ुलाम अहमद संजराणी साईं मोहम्मद कासिम ॾाहिरी हिदायत अली रिंद ग़ुलाम सेन लुंड अब्दुल मजीद चांडियो नजन खोसो केतिरनि जा नाला वठां. सभु माण्हू भला आहिनि पर आहे सॼी ॻाल्हि सम्झ जी. छो त कंहिं फ़क़ीर जी सिट आहे त सूर आहे सम्झ खे बेसम्झ सां बात करणु आहे अजाई. घुमी लठ में घिटियूं त कान्हे यारनि में वफ़ाई. पंहिंजनि मां परूं कर वेही सुहिणा आहे सचाई. मोहबत वेही मामनि मां ऐं चाचा कनि चङाई. प्रीत वेही पाड़े वारनि मां वेही राजनि मां राजाई. ज़मींदारी वेही ज़मींदारनि मां वेही कमदारनि मां काराई. फसल पिटा बननि कया वेही ज़मीनुनि मां ज़ोराई. राहुनि ते रही न का घुरल आहे बटाई. तोर वेही दुकानदारनि खां जेके सोना ॾींदा सवाई. बरकत वेही बस थी जॾहिं थ्रेशर आहे आई. बरकत जॾहिं थ्रेशर आहे आई. प्यार न कर पुलिस वारनि सां कंदा.

भाग्यन सा भलाई चमा दौर के विराटी पाई त अछरा बनकर अधरात जो चढ़ी कंदा चढ़ाई इंसाफ हुयो अदालत मां बंद थी वकीलन जी वाई जजनाणी जुग कया बिदसो किलर कंजी कमाई बिनई साल में बंगलो बन्यो इजा कार बाए आई त मेहनत वही मजदूरन मां वही अफसरन मां अफसर आई साइडन कंदा साल में कंदा कागजन कूड़ी कार्रवाई साइडन कंदा साल में कंदा कागजन कूड़ी कार्रवाई सच चवण सब कहीं के आहे गाल अजाई होटल ते हर को थो करे दिस ट्रिपी यार टेड़ाई होटल ते हर को थो करे दिस ट्रिपी यार टेड़ाई तो जलाल मंजूर खान को न वणे तू जलाल दिजाए सजाई जे बेसुरी वजंदी बेसुरी तब चवंदा वाह जी हथ तो भजाई ओ पान चवंदा पप्पू के तू चाह चंगी हथ चाई मनठार माड़न जी मुख कल पवे न थिकाई तू बुग्या कट दई तो समझे कंजे सूर के सिंध ते जेका शइ खुशी थींदी आहे त सुगड़ वीचारा ख़ुशीअ खे चिटींदा आहिनि जे ग़म थींदो आहे त उन ग़म खे चिटींदा आहिनि असां वटि अलाह जो महिरबानियूं आहिनि चारि मौसमूं हूंदियूं आहिनि सिरो बहार उन्हारो सियारो पोइ उन चइनी मौसमनि में जेको रंग थींदो आहे अलाह जे पाक ज़ात जे तरफ़ां सुगड़ उन चइनी रंगनि खे चिटींदा आहिनि जॾहिं राति थींदी आहे त राति जे सितारनि खे चिटींदा आहिनि जॾहिं ॾींहुं थींदो आहे त सूरज जे ताप खे चिटींदा आहिनि पर ख़ासि करे जॾहिं बननि ते वेही हिक ॿिए सां पंहिंजे सिंध जे गुज जो ॻाल्हियूं कंदा आहिनि त उन्हनि खे वरी गुजार त चइबो आहे मुंहिंजे साम्हूं हिकिड़ी गुजार त अचे पई दिलि कढे पई त आऊं सुगड़नि जे सथ में वेठो आहियां त उहा गुजार त पढ़ां त ॾिसूं पाण उहे सुगड़ उन गुजार त खे कीअं था ॻोल्हनि गुजार त में अर्ज़ु थियो त जॾहिं मारवी क़ैद में आई त उमिरि खे चयो पियो अदा मूंखे छॾ त मां पंहिंजे वतन वञा उमिरि जो जवाबु आहे त मारी तुंहिंजो वतन हींअर ततल आहे तुंहिंजो वतन भिणभांग आहे सुनियूं आहे हिते तोखे महलनि माड़ियूं आहिनि नौकर आहिनि चाकर आहिनि खाधा आहिनि पीता आहिनि तूं वतन जी आ छो थी करी साईं सलीम जेॾी महिल मारीअ खां इहा ॻाल्हि हुन पुछी त मारी चयो अदाड़े उमिरि जेकर तूं मूंखे छॾी त आऊं ज़ातियूं विझी ज़ातनि में वञी ज़ातनि खे ॾींदा अलाह जंहिंखे बख़्शे पर सुगड़नि जे साम्हूं आऊं उमेद थो करियां जेकॾहिं अखर सुठा हूंदा ऐं सोयल भली ॻाल्हि हूंदी त सुगड़ जे साम्हूं उहा गुज़ार त बीह न ज़रूर पंहिंजो मान माणींदी गुजार त में अर्ज़ु थियो त अदाड़े उमिरि जेकर तूं मूंखे छॾी त आऊं ज़ातियूं विझी ज़ातनि में वञी ज़ातनि खे ॾींदा

0: वाह सही वाह जी असमें ही होया असुगढ़ फकीर मंठार अली बुखियो साहब जनन गुजारत दिनी है अजे के ऐसा जा ब्या असुगढ़ दोस्त गोलींदा अजी साईं बिस्मिल्लाह
1: हां उस्ताद मंठार गुजारत अमी पढ़ो
2: अर्ज पे कयम
1: जी
2: त अदाड़े उमर जे कर तू छडी ताऊं जातियूं विझी जातन में वनी जातन के दींदा
1: जातियूं विझी जातन में
2: जी जी
1: वनी जातन के दींदा
2: वनी जातन के दींदा
1: वाह रे वाह तू इ तो चवें त मारू पी चवे त अदा उमर से हड़ रात जा नसीहड़
2: भले
1: के तो से हड़ इन गंढन में विझी मां वनी फुल अख्तियारन के दी।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजे गए रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी आन कन जो सूर घट बुधण में अचान शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वदन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन नहन एलर्जी कॉस्मेटिक वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0383-5769।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: मंठार फकीर बुगे गुजारत पड़ी सुर उमर मारी में। हाँ वरी सुर लीला चनेसर में मुझा अखर थींदा
1: बिस्मिल्लाह
0: त उस्ताद जा फकीर जेके गुफ्ता पंजा ठाया उन्हें गुजारत जा अखर आहन त उज़बे ते उज़बे जी या औरत मानू जा दिसो सुर लीला चने सर
1: जी बाबा
0: लाइव प्रोग्राम पियो हले सलीम साहब हाणे उन जे हिसाब सां असां सुर रखी था पढ़ूं जो टाइम थोरो हूंदो आहे उस्ताद उस्ताद मंठार उस्ताद मोहम्मद कासम
1: जी जी
0: बेहतरीन सुगड़ वेठा इंशाल्लाह ताला त गुजारत जा अखर आहिनि त उज़बे ते उज़बे जी या औरत माण्हू जा ॾिसो
1: उज़बे ते
0: उज़बे ते उज़बे जी या
1: उज़बे जी या
0: हा औरत माण्हू जा ॾिसो
2: हिन सिर ते नज़र आहे
0: बचे उस्ताद
1: उज़बे ते
0: हा उज़बे ते
1: टिकणे ते
0: बचे
1: चौंक ते
2: हिन
0: औरत माण्हू जा ॾिसो
1: औरत माण्हू जा ॾिसो
0: हा
1: माण्हू जा चालाक ॾिसो
0: भई बचे
1: होशियार ॾिसो अकाबर ॾिसो
0: बच
1: वकील ॾिसो
0: बच
1: आलम ॾिसो
0: बच
1: सियाणा ॾिसो
0: बचे
1: ॾिसो
0: बच
1: भला जमाल
0: हा साईं परावा अखर आहिनि उस्ताद
2: बिल्कुल बिल्कुल हिन में कोई शक
0: को शक न आहे मोहम्मद कासिम डारी
1: जी
0: हाजी नवाब खान ऐं अब्दुल मजीद बि पाण सां गॾु बहितरीन सुगड़ वेठल आहिनि पर हाणे गुजारत जा अखर आहिनि त उज़बे ते उज़बे जी आहे औरत माण्हू जा ॾिसो
2: हुन जा लक्षण त ॾिसो
0: बचे उस्ताद
2: अरकान त ॾिसो
0: बच
1: उज़बे ते
2: उज़बे ते हिन छातीअ ते
0: बचे
2: त्रिया
0: बचे
2: पर हिन दिलि ते
0: बच
2: हथा
1: ॾिसो माण्हू जा ही कम त ॾिसो
0: बच
1: माण्हू
0: उज़बे ते उज़बे जी या औरत माण्हू जा ॾिसो
2: पर ईअं चवे त हीअ मुंहिंजे ज़बान जेका आहे उहा मुठ में
3: गुजारत खे माना ॿिनि टिनि मिंटनि में ॻोल्हे उते ई उनखे मारे छॾनि सामिन हाणे असां गुज़ारिश कंदासीं साईं गुलबेग जमाली साहिब जन खे जेके सॼो कनि गुजारत खे साईं मंठार साहिब जन जी महिनत हिननि मिंट में जेका आहे गुजारत खे ॻोल्हे वरितो जी साईं सॼो कयो
0: हा साईं गुजारत सलीम उस्ताद मंठार गुजारत मुंहिंजी मारे वियो उस्ताद मंठार अखर आहिनि
1: हा जी
0: अर्थ जा अखर

0: चरे सर बाचा तड़े बहर कड़े लेहोर जे बालारन में मोहम्मद कासम उस्ताद मंटार लीला बादशाह ला दिया पर ही रुगो रोए पई रड़े पई अचे पई वने पई बाजार में
1: लीलाए पई
0: वाह हाँ अचे पई वने पई अचे पई वने पई तो पो ओड़े पाड़े जो मायू बाजार में बीठी वन अकुल वारियो ओए एक बे के पियो चवन ही तो बादशाह ला दी लीला आया जिज ने के छाती आ जो लेहोर जे बालारन में रुले पई रोए रड़े पई दाऊ पई करे
1: वाह
0: उतां जे औरत हिकड़ी बेन के का सियाणी औरत के ने गाल जी खबर हुई उन जो तो तोखे अधी खबर ना है तिन माई केड़ो किरदार कम कयो आ के मुखे खबर ना है के मुखे खबर ना है पो हन लीला सा हाने ओहा औरत पई गाल आयो हन बेन माई ने सा त ही हन माई केड़ो कम कयो ची उजबे ते उजबे जी आ औरत मानू जा दिसो साईं उजबो आहे मणको उजबो आहे मणको उजबे जी आहे मुठ अमा मुठ जी आ उजबे जी आहे मुठ
1: जी
0: औरत आहे कमीनी मानू जो आ किरदार
1: वाह वाह वाह वा।
0: उने में सलीम साहब अखर आहे न तो उजबे ते उजबे जी आ औरत मानू जा दिसो इए न अखर आहे न त वो या मणके ते मुठिया हाने इने कमीनी जा किरदार दिसो
2: वाह सही वाह वाह सही वाह वाह सही वाह तमाम जबरदस्त सामने वक्त जो हिसाब 3:45 मिनट थी वक्त है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो अवाके केडन आए वणो बुधंदा रहो जी सकर नवाब शाह एफएम 90.8 जे लाइव स्टूडियो में आई असा जी अठनी चैनलन ता ही जी एफएम नेटवर्क जे तसलसल सा प्रोग्राम पेश कयो पे वने असा चौ ता शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का पो असा जो अवा जो साथ रंदो पूरे 5 वगे ताणी केडन आए वणो अचौ ता नडड़े शॉर्ट ब्रेक का पो

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हौसल मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।
5: अजय समिन असा जो प्रोग्राम आ जारियो सारी असा हाँ हलंदासी पेंजे भलोर सुगढ़ उस्ताद सुगढ़ फकीर मोहम्मद कासिम डायरी साहब तरफ। साईं अस्सलाम वालेकुम।
6: साईं वालेकुम सलाम। सलीम साहब कड़ा हालन साईं?
5: साईं दुआओं अल्लाह जा एहसान। अमा बुधायो कीअं ठीक आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह
6: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
5: साईं तव्हां खे भलीकार चऊं था। GFM नेटवर्क ते ही प्रोग्राम लाइव हली रहियो आहे। तव्हां असां खे खुदा जे ॾिने मां छा ॿुधाईंदा साईं?
6: साईं गुजार त पढ़ंदासीं, छो त गुजार त जी सनफ हले पई।
5: वाह वाह बिस्मिल्लाह।
6: उस्ताद गुलबेग गुजार त चवे थी, जर जो नालो कई तोखे रांदि जी हुई कान, तॾहिं त इल्म जी कई।
7: जर जो नालो कई हा
6: तोखे रांदि जी हुई कान,
7: हा
6: तॾहिं त इल्म जी कई।
7: वाड़े वाह।
6: जर जो नालो कई,
7: जर जो नालो कई,
6: जर जो नालो कई,
7: हा
6: तोखे रांदि जी हुई कान,
7: हा
6: तॾहिं त इल्म जो कई।
7: तूं ईअं थो चवें?
6: जी वाह।
7: तूं थो चवें त इहो इश्क पंहिंजो पूरो न कई तॾहिं त बस कई,
6: तॾहिं त इल्म जी कई।
7: वाड़े वाह।
6: जर जो नालो कई
7: हा
6: तोखे रांदि जी हुई कान,
7: हा
6: तॾहिं त इल्म जो कई।
7: तूं ईअं थो चवें?
6: जी वाह।
7: चवें त इहो इश्क पंहिंजो कई तॾहिं त बस कई,
8: इहो जर जो फुल तार त कई,
7: ही दिलो मट त कई।
6: वाड़े वाह।
7: अञा पढ़ पढ़।
6: जर जो नालो कई तोखे रांदि जी हुई कान,
7: तू ईअं थो चवीं त ही वेढ़ो वैरान कई तोखे तो सुध समा हुई कान,
6: बचो
7: कल हुई कान,
6: बचे
9: खराब सॼो ख़्वाजा कई,
8: सफ़ा हुई कान,
6: बचो
9: खराब सॼो ख़्वाजा कई,
6: बचे जर जो नालो कई तोखे रांदि जी हुई कान, तॾहिं त इल्म जी कई।
7: भला ईअं थो चवे त दिल ही तमना पूरो कई,
6: जी
7: शुद्ध समात हुई तो के कान
6: बच
7: तो के कल हुई कान
6: बच
7: तो के इश्क हो ही कौन
6: बच
7: पढ़ पढ़
6: जर जो नालो कई तो खेरांद जी हुई कान
7: हाने मुझे
9: भी मणियो मिठो कई
7: मुझे समझ में हाने जड़ो मरे पई
6: हां
7: तू ही तो चमे ते ही वकार पंजो खराब कई

0: बच
1: ही कानू खराब कई
0: बच
2: एतबार यकीन विनाई एतबार यकीन
3: आसत हुई
0: अरे भाई
1: अरे
0: वाह वाह मारी भाई वाह संजरानी
1: वाह नवाब वाह
0: हाजी नवाब
4: वाह सही वाह वाह सही यो हाजी नवाब संजरानी साहब
0: जी जी जी
4: जी जी सही हाने सडियो कयो सो
0: सही हाने सुरा है उमर मारवी गुलबेग
1: जी
0: जदे उमर बाथिया मारुए के भालवा जे खुओ ता खणी जे उमर कोट में कैद कयो
1: हेड़े हाय
0: हाणी जमल कोट में पोतिया त मारवी उमर सा गाल हाय पई
1: वाह वाह
0: मारवी जो गाल हा
1: वाह
0: चवे पी जर जो नालो कई तो खेरांत जी हुई कान तदे त इल्म जी कई
1: वाह
0: सही जर जो आ वाह
1: जर जो आ वाह
0: वाह
1: वाह
0: नालो आ नो रंग
1: वाह
0: रांत जी आ तास
1: जी
0: से पत्ते जी तास थी
1: जी
0: इल्म जी आ मंजल
1: हल
0: हाँ चवे भी मारवी तो वाह जो नौ रंग कई
1: वाह
0: वाह जो नौ रंग कई तो खे तास हुई कान रुगो मंजल कई
1: रुगो मंजल कई वाडारी वाह ताड़ी लगे थे वाह वाह वाडारी वाह
4: वाह सही वाह वाडारी
1: वाह
4: वाडारी वाह वाह मोहम्मद कासिम
1: वाह बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन
4: जैसा मैं हाने हलंदा सी सुगर फकीर उस्ताद हाजी नवाब असंजरानी साहब तरफ साईं अस्सलाम वालेकुम
5: वालेकुम सलाम साईं
4: साईं केड़ा रे नवाजा
5: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जा साईं तवा खुश आयो खैर आ
4: साईं दुआ अल्लाह जा एहसान साईं अमा छा बुधाईंदा सके खुदा ज दिने मा
5: नड़ पे त थींदा
4: वाह वाह जबरदस्त
5: के बैत याद कियान हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के भाईरन खूह में उछलायो
4: वा
5: हकीकत करे दा बुधायो इंशाल्लाह तवा के पसंद इंदी ए बुधण वारन के पसंद इंदी आयो साथ सौदागर जो काहे अज कतार खूह दिसी औ खुश थी औ लाथौ पोतन तौ पार चांगा छजाउ चरण ले कढौ मयन मा महार लगी उन्य उदास दी कयो पानी जी पचार बाकन मुको पुशरा जो हो खास खिदमतदार पुरत हल्यो पानी अंदे हली सोहे कार वठी सिकाई वाझ के अजब डिठई इसरार पार डिठाई मौके में आदम एड़े पार जड़ी सूहस जदी

0: वाह वाह वाह साईं वाह वाह हाजी वाह वाह हाजी वाह अज लै किथे हाजी साहब पहुंचाए छजो नड़ बैत सा जबरदस्त हाजी साहब सामिन हाणे लदासी असा जो सुगर फकीर गुलबेग जमाली साहब तरफ छो जो टाइम तमाम शॉर्ट है उनका पो न्यूज़ ब्रेक तरफ हलणो है कमर्शियल ब्रेक तरफ जी साईं गुलबेग साहब 2 मिंट तमाम जी साईं
1: मुंडरी संभरी हल्याऊं से नथा रात रहन मादर मुझे महबूब के हु वठो था बवन मच्छर कई मगरब पार जूं अज सलाहू प्या सोचन इन जो रायो आए रूम दे हूं के चीन दे था चढ़न के हल्दी बिठा बुखाराम में के मके मज मरकन के ओरे लथा ईरान में के अगते व्या अदन बाकी जेकी जाई व्या जहाज में आऊ घोरी आया तन बिठी निहारिया बंदर ते मुजा मुसाफिर चल बोटन यली अथम दमन दस्तगीर जी मां पूजा वेठी पीरन से कदई दम कायम दीन चे मुख्यु अखड़ियों वरी ईदू कन मुखे वरी मुबारकू मिलना सजन दिसी सुरे

0: के मुबारकों वरी मिलन।
1: वाह सही वाह, वाह सही वाह, वाह सही वाह, माशाल्लाह जबरदस्त। असा में टाइम ही गुजरे पे हो, खबर ही न पई पे, जान सेकंड गुजरन पे। असा में असा सा गड असा जे सिंध जा भलोड सुघड़ मशहूर मारूफ आए, असा जा जेके इनाम याफ्ता सुघड़न जेके टीवी चैनल्स ते भी इंदा असा जे सकरन जी सूह हैं, असा जे सकरन जे आसपास जा सुघड़न मा तमाम थोराई तो आया असा जे सुगड़न जो जेके पेंजो कीमती टाइम कड़ी असा वट इंदा इन सामें। वक्त जो एहसास चार थन पिया, वक्त है न्यूज ए कमर्शियल ब्रेक जो, तो पहली असा हलंदासी न्यूज ए कमर्शियल ब्रेक तरफ। तमाके केनन आए वणो बुधंदा रहो जीए एफएम नेटवर्क। असा जे अठी चैनलन ते ही प्रोग्राम यक मुझ कनेक्ट आहे, असा जो अमा जो साथ रहंदो पूरे 5 वगे ताणी। अचूं था नंढड़े शॉर्ट कमर्शियल ऐं न्यूज ब्रेक खां पोइ।
2: It's 4 p.m. This time check is brought to you by...

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर
1: बयान ते रदेमल जाहिर कंदे आईएसपीआर चयो आहे त हक जी जंग दौरान भारत जी मायूसी समूरी दुनिया में वायखी थी। पाकिस्तान पहिरें आलमी सतह ते अहम मुल्क ऐं हिकु तस्लीम थियल एटमी ताक़त आहे। अहिड़ी धमकीअ ज़हनी निवालपणी जनून ऐं जंग पसंदीअ जी अकासी करे थी। ज़िमेवार एटमी रियासतूं सहप स्ट्रेटेजिक संजीदगी जो मुज़ाहिरो कनि थियूं। भारतीय क़यादत ॾखिण एशियाई हिकु ॿिए बहरानी जंग तरफ़ धिकण खां पासो करे

पाकिस्तान जे खिते में इस्तेहकाम लाइ कोशिशनि जी अहमियत वधी पई। अमरीका दहशतगर्दी ख़िलाफ़ कोशिशनि में पाकिस्तान खे अहम ऐं मर्कज़ी हिसेदार करार ॾेई छॾियो। अमरीकी सेंट्रल कमांड जे सरबराह एडमिरल चयो आहे त पाकिस्तान दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ इतमाद जो हिसेदार आहे जेको खिते में कालदम दाइश ख़िरासां ख़िलाफ़ जंग में मर्कज़ी हैसियत रखे थो। अमरीका जे सेनेट कमेटी खे ब्रीफिंग ॾींदे सेनेट काम सरबराह चयो त पाकिस्तान सां मज़बूत फ़ौजी हिसेदारी सबबि दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ वॾी कामयाबी मिली आहे। गॾियल कामयाबियूं पाकिस्तान ऐं अमरीका जी पुराणी दोस्ती ऐं गॾियल अज़म जी सिधी रीत अकासी कनि थियूं। दहशतगर्दीअ वारनि सरगर्मन इलाइक़े सिक्योरिटी ख़तरनि सबबि अफ़गानिस्तान वाशिंगटन जे ध्यान जो महूर आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक भेरो ॿीहर खबरदार कंदे चयो आहे ईरान जल्द खां जल्द जंगबंदी करे वठे त उन जे हक़ में बहितर थींदो। जेकॾहिं जल्द अमन वाइदो तय न थियो त ईरान

तमामु डुखे वक़्त खे मुंहुं ॾियणो पवंदो जेको हुन जे वेझे पहुची चुको आहे। अमरीकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कई आहे त अमरीका इसराइल जे ईंदड़ हफ़्ते ईरान ते हमले जी तयारी मुकमल करे वरिती। हमला ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर शुरू थी सघनि था। अमरीकी अख़बार मूजिबि विच ओवर जे ॿिनि आला अहुदेदारनि चयो आहे त इसराइल ऐं अमरीका मुख़्तलिफ़ असबी ऑप्शन ते गौर करे रहिया आहिनि, जिन में ईरान जी फ़ौजी ऐं बुनियादी ढांचे ते वॾी बीमारी, नार पार्ट्स में वाक़िए ईरान जे अहम तेल बरामदी मर्कज़, खारिज आइलैंड ते कब्ज़े ऐं ईरानी सरज़मीन ते कमांडोज़ लाहे मलबे हेठां दॿियल एटमी मवाद खे कब्ज़े में वठणु शामिल आहे। तवनाई जी सप्लाई बाबति रुकावटनि सूरतहाल बरक़रार रहे त मुआशी तरक़ी मुतासिर थींदी, वॾे पैमाने ते ड्रिघे मुदे लाइ मुआशी ॾुखियाऊं पैदा थींदियूं। गॾियल क़ौमनि जे मुआशी ऐं समाजी काउंसिल जे इजलास दौरान पाकिस्तानी नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद चयो आहे त हाणोकी आलमी तवनाई ऐं सप्लाई में ईंदड़ रुकावटनि जा असर दुनिया जे हर खिते ऐं मैशियत में महसूस कया पिया वञनि। ॿारनि जूं क़ीमतूं 2025 जी सरासरी भेट में भेण खां पीण खां वधी वियूं आहिनि। वधीक 3.20 करोड़ माण्हू गुरबत में वञण जो ख़तरो पैदा थी वियो आहे। ओलह एशिया जा मुल्क हिन बहरान में सिधी रीति शामिल न आहिनि पर असर बर्दाश्त करे रहिया आहिनि। तकरार सबबि सभ खां वधीक मुतासिर मुल्कनि में पाकिस्तान बि शामिल आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त इतमाद जोगी राब्तकारी मुआशी तरक़ी ऐं अवामी ख़िदमतनि खे हथ ॾियण लाइ अंतर आहे। डिजिटल राब्ता अॼु तालीम, सिहत, वापार ऐं अवामी ख़िदमतनि जी बुनियादी ज़रूरत बणिजी चुका आहिनि। पर्यावरण इलाक़नि में डिजिटल पहुच मुआशी मौक़नि ऐं ॼाण ताईं पहुच जो अहम ज़रियो आहे। टेली कम्यूनिकेशन ऐं इन्फॉर्मेशन सोसाइटी जे आलमी ॾिहाड़े ते सदर ज़रदारी IT वज़ारत ऐं PTA मोबाइल ऑपरेटर जी ख़िदमतनि जी वाखाण करे चयो त हुकूमत समूरे मुल्क में डिजिटल पहुच ऐं राब्तनि खे हथ ॾियण लाइ कोशिशूं वठी रही आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त नेशनल AI पॉलिसी 2025 हिकु इनकलाबी क़दम आहे जेका पाकिस्तान में एतिरा ज़हनत जे माहौलियाती निज़ाम जे तरक़ी जी ज़ामिन आहे। पाकिस्तान जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ीअ सां तरक़ी करे रहियो आहे। 5G स्पेक्ट्रम जे कामयाब ऐं शफ़ाफ़ नीलाम डिजिटल पाकिस्तान तरफ़ अहम क़दम आहे। कोकीन डीलिंग जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार अनमोल पिंकी सुञाणप कार्ड ऐं पासपोर्ट जी कापी साम्हूं अची वई। दस्तावेज़नि मूजिबि जवाबदार पिंकी 17 अप्रैल 2018 ते कराची मां पासपोर्ट हासिल कयो जेको अप्रैल 2023 में एक्सपायर थियो। जवाबदार पिंकी सुञाणप कार्ड पे कराचीअ मां 6 डिसंबर 2016 में हासिल कयो ऐं पतो गुलशन इक़बाल जे अबुल हसन रोड जो लिखियलु आहे। ज़रियनि मूजिबि पिंकी जे कुटुंब जी पासपोर्ट ऐं सुञाणप कार्डनि जा तफ़सील बि हासिल कया विया आहिनि। पिंकी जा सफ़री दस्तावेज़ हासिल करण जी बि कोशिश कई पई वञे। जांच अख़्तियारनि मूजिबि पिंकी नालो तब्दील करण, हिकु ॿियो सुञाणप कार्ड ठाराइण जी बि कोशिश कई। मामले जे मुख़्तलिफ़ रुखनि खां जांच कई पई वञे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जीलिना में मुड़ ईंदड़ महीने पिंक टैक्सीज़ आणण जो ऐलान कंदे चयो आहे त पाकिस्तान जी पहिरीं टैक्सी सर्विस चिन में शुरू थींदी। असांजी कोशिश आहे त जल्द खां जल्द BRT शुरू थिए, जिन खे सियासत ऐं तनक़ीद करणी आहे उहे भली कनि, असीं पंहिंजो कमु करे रहिया आहियूं, ज़रूरत पई त जवाब ॾींदासीं। कराची में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे शर्जील मेमण चयो त मंशियात समूरी दुनिया जो मसइलो आहे, बदकिस्मती सां असां मंशियात खे संजीदगी सां न वरितो। जवाबदार पिंकी हिकु ज़हर वेकिरो कंदड़ औरत हुई। ऐं कंहिंजो नालो नथो खणणु चाहियां पर हीउ पूरो नेटवर्क आहे। ऐं कंहिंजो नालो वठंदुसि सोशल मीडिया ते मीम्स ठहंदियूं।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा।
4: खुशखबरी खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर रखा इशा जे निमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे का रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर, राबते जे लाइ 0320-1800-003।
6: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर, 0301-3865453।

0: पर खड में अड़ो खटियो पे तंगा पिंडी खाए जे कोशिश करे औलाद के इल्म पढ़ाए जे
1: बेशक बिल्कुल
0: कोशिश करे औलाद के इल्म पढ़ाए जे बाकी क्यारी कूड़े न तके नाचू बनाए जे फजीलत सां वेही राग गाइजे बाकी खदड़न वांगुर खुआर असीं त दादन फकीर जी दिलि सां लाइजे पराई औरत

0: जे पुठियां छो दा पांजी हड़ फुराए जे छो पांजी हड़
1: फुराए वाह डहरी वाह वाह डहरी वाह वाह सही बात
2: के आया के इंदा के व्या के वींदा मागे ने मोटी तो सठ वरिया विनाई।

सूरन में भबे रुगो रोटी गदला भरी गप में का चिकन भरी चोटी मीम रख मन में का अल पसंदी ओटी तह दिल ताजली छाचे हिकड़न छोड़ी तबियन जोटी यार।

ओडी महिल इजाज़त वाह वॾे रावा तुंहिंजे करे कई आहे मुंहिंजा सूबेदार बि सहूलियत बाक़ी कोन्हे ॾो ग़रीब जो जेके पोरियो कनि पोरियत पर मोर न सुञाणनि मर्ज़ खे वई आहे हकीमनि मां बि हिकमत मोर

0: रसो छिलाए पोइ महबूब साईं जे दरबार में उते वञी पहुतो। पोइ महबूब साईं वटि वञी चयईं त साईं मां अमां वटि आयो आहियां, मूंखे मुझे हिन धणी रुगो लॾे थो, ॿार खणे थो, पर मूंखे ही पाणी जो उन जे वेघे बि मां मरी वियो।
1: सुभान अल्लाह, ॾाढी भली ॻाल्हि
2: भली,
1: पर अञा का ॿी ॻाल्हि।
3: गुज़रण थींदो पोइ तुंहिंजो उहो खंभ जेको पर आहे उहो मथां ठाहे।
1: सुभान अल्लाह, ॾाढी भली ॻाल्हि, मौज़े जी ॻाल्हि आहे, ॾाढी भली ॻाल्हि। वाह वाह,
0: अञा उस्ताद पढ़ो।
1: जेको तोपे सजण सॼो सो हकम अथई हीअ, ॾियण वठण खां दर न कजांइ, तूं वॾो कजांइ वीह, पोइ सोड़ीअ में सीह कोन थींदे कुंभार ते।
0: उस्ताद मां ईअं बि चओ पिया त जेको नाबीन वेठो हो सरवर, सरवर नाबीन वेठो चओ त अॼु बुख जे वेगे मूंखे ॾाढी तकलीफ़ आहे, पर ऐं हू अलाह जे आसिरे ते वेठो हो, पर चिते को न को सखी गुज़र थींदो। पोइ असांजो मौला अली अची पंहिंजे कतार सां, उठण जी कतार सां अची लश्कर सां अची घस लंघियो। पोइ चयूं कंबर बाने खे चयईं त हिन खे मानी ॾे, हिन खे मानी जी सख़्त ज़रूरत
1: आहे। हुन
0: खे चए पोइ तो जेको उहो सॼो पियो
1: अची वियो आहे, भली ॻाल्हि कयव, पर अञा बचे, अञा का ॿी ॻाल्हि थींदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त।
2: तो पे सॼो सो
1: हकम अथई हीअ,
2: हकम अथई हीअ,
1: ॾियण वठण खां दर न कर, ॾे बि वठ बि पर खौफ़ न कजांइ, ॾियण वठण खां दर न कजांइ, तूं वॾो कजांइ बीह, पोइ सोड़ीअ में सीउ कोन थींदे कुबार ते।
0: ईअं बि ॻाल्हि कयो पिया त महबूब

0: उन खे अलाह जे नाले ते खैर खैराते ॾिनो. उन औरत जी ॻाल्हि वञी उन काफ़र ते पहुती त हीअ औरत कहिड़ी सखी आहे जेको अलाह जे नाले ते हर शइ ॾिनई. पोइ उन औरत ते आख़िरकार काफ़र पंहिंजा माण्हू मोकिलिया उनखे वठी अची उन जा ॿई हथ कपे छॾे. पोइ हुन जो नंढड़ो बचड़ो हो उहो बि वञी दरिया में पाणी जे उन
1: जेके ॻाल्हि हलंदी आहे उहे हयातू हूंदा आहिनि. मोतू क़िबल अंत मोतू मरण खां अॻे ई मर. जेके ओशाक शायर अदीब ॾाह सुगड़ जंहिंजे का अलाह ऐं अलाह जे रसूल ॾे आहे उहे मरणा न आहिनि.
0: जी साईं जी जी.
1: उहे उस्तामो जुमन ॾाढी भली ॻाल्हि कई. थोर न करण में वॾी ॻाल्हि करे वियो. जॾहिं माईअ खैर ॾिनो हुन जो बाज़ू कटिजी वियूं ऐं हुन जो बचड़ो जॾहिं वादीअ में किरी पियो त उन टाइम माईअ सोचियो त मूं इन जे सहारे पे जीअणु घुरियो त हीउ वॾो थींदो जवान थींदो ऐं कुफारनि खां हिसाब वठंदो. अॼु उहो बि वञे पियो उन खां पोइ सॾु थी करे पंहिंजे पाकल पाक हुसैन खे मुंहिंजा मुर्शद हुसैन मुंहिंजी मदद कर. मौला पाक अचे तूं मिटाई जी शायदि आहे त उहो टाइम इमाम जे आख़िरी सते जो आहे. जिस्म लहू लहान आहे, माई परेशान आहे त हीउ केरु आहे जेको आयो आहे पंहिंजो पाण लहू लहान करे मूं वटि पहुतो आहे. मूं त हुसैन खे पियो सॾियो. मौला पाक चयसि थो माई तूं गम न कर, जेको तो हुसैन पे सॼो उहो ई मां आहियां.
0: सुभान अल्लाह.
1: ऐं तोखे अॼु इहो बचड़ो बि ॾियां थो, बाज़ू बि ॾियां थो. क़यामत ताईं न ॾियण खां डिॼजांइ, न वरी वठण खां डिॼजांइ. तूं ॾींदी रहजांइ, मां हुसैन वरी तोखे ॾींदो
0: रहां.
1: कॾहिं तोखे तकलीफ़ न ईंदी. हाणे उस्ताद जा अखर आहिनि त जेको तो पे सजण सॼो सो हकम अथई हीउ ॾियण वठण खां दर न कजांइ. तूं वॾो कजांइ वीह पोइ सोड़ीअ में सीह कोन थींदे कुंभार.
2: वाह उस्ताद, वाह वाह उस्ताद, वाह. तमामु ज़बरदस्त मौला हुसैन जी कहाणी. हू त शहनशाह ऐं शहनशाह हुआ. शहनशाह इब्ने शहनशाह नवासाए रसूल मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम. अॼु समय हाणे हलंदासीं सुगड़ फ़क़ीर गुलबेग जमाली साहिब तरफ़, जेके असांखे कुझु ॿुधाईंदा. अजी साईं बिस्मिल्लाह.
3: जी बाबा जी.
0: सलीम
2: साहिबु,
0: तमामु बहितरीन ॻाल्हियूं आहिनि
2: जी
0: उस्ताद वारनि, तमामु बहितरीन ॻाल्हियूं कयूं. पर अवां बि बैत अहिड़ा पढ़िया, सिराकी सुर
2: बिस्मिल्लाह,
0: सिराकी जा बैत अहिड़ा उस्ताद जा पढ़िया, उस्ताद बुखारी जा, जो दिलि मुंहिंजी चयो त हिकु गुफ़्तो आऊं बि ॿुधायां.
2: वाह वाह बिस्मिल्लाह.
0: उस्ताद बुखारी जा अख़र आहिनि त

0: बैंक गलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रामेश
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार
2: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
3: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: ॾेढी कोहण जाइज़ आहे ऐं हिकिड़ा त वचंदा मतारहनि मिलाए कुझु पर मिलाइण पर शरीयत ज़ाहिर ते आहे लिक ते न आहे। हाणे शरीयत हज़रत इब्राहिम अलाम सही हक़ीक़त आहे त पहिरियों महीनो बि क़ुर्बानी जो आख़िरी महीनो बि क़ुर्बानी जो पहिरियों महीनो इमाम हुसैन जो ॾहीं तारीख़ इहो महीनो आहे क़ुर्बानी आहे वरी आख़िरी महीनो असांजो त बि क़ुर्बानी जो ॾहीं तारीख़ आहे।
1: बिल्कुलु
0: हक़ीक़त में जॾहिं हज़रत इब्राहिम खे हुकुम थियो त छॾे आहे जबल में पहाड़ में जॾहिं हज़रत इस्माइल खे छॾे बीबी पंहिंजी खे जॾहिं रवानो थियो त बीबी पोयां पुछो त कंहिंजे आसिरे मूंखे छॾियो थो वञे ऐं हक़ीक़त पुछियो त हुकुम कोन हो ॻाल्हाइण जो पोइ बीबी पुछियोसि त तूं पंहिंजे आसिरे छॾियो थो वञे या अलाह जे आसिरे अलाह हज़रत इब्राहिम अलाम मथे अंगड़ियूं कयूं त अलाह जे आसिरे चई पोइ भले हलियो वञे वापसी हलियो वियो वरी हुकुम थियुसि कहिड़ो त क़ुर्बानी कर भली शइ जी उठ क़ुर्बान कयईं कोन थियो ॿी राति खां पियो वरी उठ क़ुर्बान कयईं टी राति क़ुर्बान कयईं पर तपी चवंदो भलियो पोइ आख़िरी पुट जी क़ुर्बानी लाइ पुट खां पुछईं बाबा आऊं तोखे क़ुर्बान करे रहियो आहियां चई बाबा जी बिस्मिल्ला क़ुर्बानी करीं थो त इहो जल्दी करे वठि अॼोका पुट ॾिसो ऐं वरी तॾहिं जा पुट ॾिसो
1: सुभान अल्लाह
0: हक़ीक़त हाणे उहो हज़रत इस्माइल ऐं हज़रत इब्राहिम अलाम वञनि पिया मीना जे तरफ़ मीना जे तरफ़ जंहिंमहिल वञी रहिया आहिनि हक़ीक़त जंहिंमहिल अॻिते विया त शैतान हुनखे ॿुधायो त तोखे बाबा कोहण पियो वञे
1: सुभान अल्लाह
0: हज़रत इस्माइल पथरी खणी शैतान खे हई त अलाह अकबर उते बीह रहिया हू अॻिते हलिया विया जंहिंमहिल क़ुर्बानी वारी जाइ ते पहुता हक़ीक़त जंहिंमहिल कहिड़ी कयूं त उते पहुचण सां हज़रत इस्माइल पंहिंजे वालिद साहिब खे ॿुधाए पियो त बाबा मुंहिंजा हथ ऐं पेर ॿध मता ऐं कुझु चुरा तोखे रत जा छंडा लॻनि
1: हज़रत इस्माइल
0: हज़रत इस्माइल खे हज़रत इब्राहिम खे ॿुधाई हज़रत इब्राहिम खे ॿुधाई
1: सुभान अल्लाह
0: जंहिंमहिल काती खे कहिड़ी मज़ाल आहे जो काती कंध ते वहे
1: सुभान अल्लाह
0: जंहिंमहिल काती न पई वहे त पोइ वरी हज़रत इस्माइल इस्लाम पंहिंजे वालिद खे ॿुधायो त बाबा अखियुनि ते पटी ॿध पोइ मूंखे क़ुर्बान कर मतां तोखे दिलि रहम खाए त पाण गाफ़िल थी वञूं हक़ीक़त जे हिसाब सां जॾहिं मुंहं ते पटी ॿधई दुंबो जन्नत मां अची वियो जंहिंमहिल घरड़ाट कई त जंहिंमहिल उथे खणी जंहिंमहिल पटी खणी खोली जी क़ुर्बानी थी वई हज़रत इस्माइल पासे सां बीठो आहे घेटो क़ुर्बान थियो पियो आहे
2: सलीम साहब वञी मकड़ खे काती लॻी मकड़ खे हज़ाब उते वरी सीर पइजी वियो उस्ताद मंठार फ़कीर वरी जो काती हेठि वञी किरी त वरी वञी मच्छी ते पई त मच्छी खे बि उन ॾींहं खां वठी
0: तकबीर
2: पोइ इहो कुदरत जा रंग आहिनि जेको हुयो इहो वरी सत अड़ थींदो आहे वॾनि ढोरनि में जीअं पाॾो आहे या अॻो गाबो आहे या वहड़ी आहे उठा उठा त इन्हनि में सत अड़ थींदा आहिनि या वरी डुंबो आहे या बकर आहे त उन में
1: नंढे में वरी पोइ टे पतियूं कबियूं उन में हिकिड़ी पती जेका आहे असां पाण खाइबी हिकिड़ी पती दोस्तनि खे पाड़े वारनि खे माइटनि खे ॾिबी बाक़ी हिकिड़ी पती जेका आहे न उहा वरी ग़रीबनि मिस्कीन में
0: विराए ॾिबी
2: हा उहे त सही मुंहिंजे सम्झ में इहो चम या खल आहे इहो बि मुंहिंजे सम्झ में अलाह जे नाले ते ख़ैरात
1: ग़रीब यतीम खे बेवा खे ॾेई छॾे त बहितर उहो
3: असुल में नंढो वॾो ढोर जेको बि आहे हिकिड़े में सत पतियूं आहिनि ऐं हिकिड़े में हिकिड़ी पती आहे यानी हिकिड़ो छेलो घेटो इहे जेको माल आहे इहो हिकिड़े जी क़ुर्बानी आहे ऐं वॾो ढोर जेको आहे पोइ इहो वरी शरई हिसाब सां सतनि माण्हुनि जो हुन में हिसो थिए थो इहा साईं चयो टे हिसा पर टे नंढे में बि थींदा ऐं टे वॾे में छो त भले सतनि जो हिसो आहे पर उन में बि पहिरीं टे थींदा उन टिन मां हिकिड़ो कढी जुदा कबो, हिकिड़ो ॿियो कढी जुदा कबो, हिकिड़ो टियों कढी जुदा कबो, पोइ उन टे मां जेको आहे उन मां सत हिसा कबा, हर को पंहिंजो पंहिंजो हिसो खणंदो, बाक़ी जेके ॿ हिसा आहिनि उहे यारनि दोस्तनि लाइ गरीब
2: गरीब
1: उस्ताद अॼुकल्ह उस्ताद मंठार अॼुकल्ह ॾिठो वञे थो त ग़रीबनि मिसकिननि खे घटि मिले थो वीचारनि खे, असुल में ॻाल्हि आहे त असांजी इल्तिजा इहा ई आहे सभिनी खे त ख़ुदारा ग़रीबनि खे ॾियो, ग़रीब जेके बेपहुच माण्हू नथा करे सघनि उन्हनि जी मदद कयो, उन्हनि खे ॾियो।
3: ऐं असांखे बि चवण जो हक़ आहे, ऐं साईं सलीम साहब खे बि इहो अर्ज़ु कंदुसि त उन्हनि खे ज़रूर चइबो जेके फिरजुनि जे हवाले कनि था क़ुर्बानीूं, उहे अॻिते कम न ईंदियूं, जेके उन टाइम ग़रीबनि गुरबनि में विराए ॾेई छॾियूं। खाकी आहियूं गुनहगार, ज़मीनदार कोन आहियूं, ग़रीब आहियूं, पर जॾहिं खां मूं क़ुर्बानीअ जो अड़ शुरू कयो आहे त विराइण खां पोइ जेतिरो जंहिं मिसकिन जे हिसे में ईंदो आहे त आउं पंहिंजे घर में बि ओतिरो ई रधींदो पचाईंदो आहियां, छो त अलाह ॾिनो ई इन जे लाइ, ॾियण लाइ, अलाह इन लाइ कोन ॾिनो आहे त तव्हां हुनखे गॾु कयो मेड़ियूं, ऐं छो त उहो मेड़े मरवान विया, कारून वियो, फिरौन वियो, निमरूद वियो, शदाद वियो, उहे मेड़े विया, अव्हांखे विरहाइण लाइ ॾिनो अथसि, अव्हांखे अलाह ऐं अलाह जे रसूल जो इहो फरमान आहे जेको मूं अव्हांखे ॾिनो आहे उहो ॿियनि लाइ ॾिनो आहे, उन्हनि खे ॾियो, त महिरबानी थींदी उन्हनि
2: दोस्तनि ग़रीबनि जी त भाजड़ी थिए,
3: न न बिल्कुलु बिल्कुलु
2: हक़ बि आहे,
3: बिल्कुलु
2: उस्ताद मंटार हक़ उन्हनि जो आहे,
3: बिल्कुलु
2: त उन्हनि जी बि भाॼी थिए, उन जा ॿ बचड़ा माना गोश्त खाइनि,
3: न न बिल्कुलु
2: के अहिड़ा बि आहिनि जो वीचारा ॿारहें महीने वीचारा माना ॿारहें महीने गोश्त था खाइनि,
3: छो त सरंदीअ वारा
2: रोज़
3: खाईंदा,
2: रोज़ खाईंदा,
3: ऐं मिसकिन मां माण्हू माण्हू जेके आहिनि उहे अलाह जो आसिरो ऐं दुनिया ते इन ईद जो आसिरो हूंदो आहे त जॾहिं ज़ुल्हज जी ईद थींदी ऐं मोमिन क़ुर्बानीूं कंदा
2: सुभान
3: असांजा बचड़ा बि गोश्त खाईंदा,
2: इंतज़ार में हूंदा,
3: इंतज़ार में हूंदा आहिनि, अलाह हुननि जा इंतज़ार पूरा कंदो, अलाह मोमिननि खे तौफ़ीक़ ॾींदो त हू पंहिंजो जेको किरदारु आहे जीअं अलाह ऐं अलाह जे रसूल ॾसियो आहे उन ते हलंदा, संदन महिरबानी थींदी।
2: इहे बि उस्ताद मंठार इहे बि ॻाल्हियूं शरीयत मुताबिक़ आहिनि त पाॾो या गाबो इहे उठ इहे बिणादा या चौगा, पर जेको घटो आहे उहो ॿारहं महीननि जो आहे, पर इहो शरीयत में आहे त उहो घटो भले बिणादो न थिए पर उन्हनि वॾनि रिढनि में वॾनि रिढनि में या वॾनि घटनि सां गॾु वञी माण्हू बीहारे त कद में उन्हनि जेतिरो आहे त उहो शरीयत उनखे कयो आहे त उहो क़ुर्बान थी सघे थो, पर अक्सर करे इहा ॻाल्हि कनि था त माना त जंहिं ॾींहुं तूं उनखे क़ुर्बान करी थो त उन ॾींहुं उनखे खाधो बि खारा ऐं पाणी पीआरे पोइ भले वञी क़ुर्बान कयो, तमामु बहितरीन।
4: जी हा साहिबु, तमामु ज़बरदस्त ॻाल्हियूं असांजे छोकिरनि जूं, जी हा हमेशह ईअं ई करणु खपे छो जो हीअ क़ुर्बानी जी ईद आहे त हिन में ईअं न आहे त फिरजूं भरणु खपनि, क़ुर्बानी वांगुरु ई असांखे उन वक़्त जो वेलो खाइणो आहे, उन खां पोइ जेको ॾिसो अलाह पाक हर कंहिंखे ॾिए थो, हीअ ईद ग़रीबनि जी बि आहे अमीरनि जी बि आहे, अलाह असांखे ॾेई असांखे आज़माए थो त असां पंहिंजनि पाड़े वारनि जो पंहिंजनि प्यारनि जो पंहिंजनि ग़रीबनि जो केतिरो ख़्यालु रखूं था, सभिनि इन्हनि शयुनि जो ख़्यालु रखंदा कयो। ऐं असांजे सिंध जा सफ़ीर असांजा असुगर सां गॾु मौजूदु आहिनि, टाइम तमामु घटि आहे, आख़िरी चंद लफ़्ज़ असांजे लाइ मां छा ॿुधणु चाहींदा अजी साईं, आख़िरी चंद लफ़्ज़ असांजे लाइ असांजे सामाईन जे लाइ, हीउ पूरे नेटवर्क ते प्रोग्राम हली रहियो आहे,
2: उस्ताद जा अख़र आहिनि त सामी सफ़र हली आहे जोगी मंझां जूद, नांगन पंहिंजे नफ़्स खे निहोड़े कयो नाबूद, अलहमदुलिल्लाह रबिल आलमीन मञाऊं माबूद, सदक सां सादक थिया माणियो तन मक़सूद, विञाए वजूद पो गुर खे गॾिया कापड़ी, पर सामी सफ़र हलिया कन ॿुधी का परूड़ियाऊं पूर्ब

0: ॾे हमें साधक को समर पो वठी वठ वखर मता बाज़ार वञे बंदि थी।
1: वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, तमामु ज़बरदस्त। जीअं समिन असां सां गॾु हुया असांजा सिंध जा असांजे सकरनि जा भलोड़ सुगड़ सामिन, अॼु जे हिन सुहिणी कचहरी मां मोकिलाईंदे अवां सभिनी ॿुधंदड़नि जा दिलि जे गहराइनि सां थोराईंदा आहियूं, जिन पंहिंजनि प्यार ऐं साथ सां महफ़िल खे चार चंड लॻायो। अलाह पाक अव्हां जी ज़िंदगीनि में ख़ुशियूं, मोहबत ऐं सुकून हमेशह क़ाइमु रखे। वरी नई कचहरी सां ऐं नवनि रंगनि ऐं नवनि अहसासनि सां मुलाक़ात थींदी। जेसी ताईं जे लाइ इजाज़त ॾियो, पंहिंजे दुआनि में यादि रखिजो, छो त अव्हांजो प्यार ई असांजे लाइ हिमत आहे। खिलंदे रहिजो, भुरकंदे रहिजो ऐं सिंध जी सुगंध खे पंहिंजे दिलनि में हमेशह ज़िंदा रखिजो। सामिन, वक़्त जो अहसासु सुगड़ कचहरी जो वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। जॾहिं बि दुआलायत खणो, पंहिंजे मेज़बान सलीम अहमद सरगाणी खे दुआउनि में ज़रूरु यादि रखिजो। ज़िंदगी अगरि साथ ॾिनो, ॿिए प्रोग्राम में हूंदसि अव्हां सां गॾु। तेसी मूंखे ॾींदा इजाज़त सदाई गॾु, अला वाही अला निगहबान, जेॾां पेर तेॾां ख़ैरु ख़ैरु।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: तस्लीम थियल एटमी ताक़त आहे. अहिड़ी धमकी ज़हनी ॾेवलपणे जुनून ऐं जंग पसंदीअ जी अकासी करे थी. ज़िमेवार एटमी रियासतू सहब ऐं स्ट्रेटजिक संजीदगीअ जो मुज़ाहिरो कनि थियूं. भारती क़यादत ॾखिण एशियाई हिकु ॿिए बुहरान या जंग तरफ़ धिकण खां पासो करे.

पाकिस्तान जी खिते में इस्तेहकाम लाइ कोशिशुनि जी अहमियत वधी वई। अमरीका दहशतगर्दी खिलाफ़ कोशिशुनि में पाकिस्तान खे अहम ऐं मर्कज़ी हिसेदार करार ॾेई छॾियो। अमरीकी सेंट्रल कमांड जे सरबराह एडमिरल ब्रेड कोपर चयो आहे त पाकिस्तान दहशतगर्दीअ जी ख़ात्मे लाइ एतमाद जोगो हिसेदार आहे, जेको खिते में कालादम दाइश खरासान ख़िलाफ़ जंग में मर्कज़ी हैसियत रखे थो। अमरीका जी सेनेट कमेटीअ खे ब्रीफिंग ॾींदे सेंटकॉम सरबराह चयो त पाकिस्तान सां मज़बूत फ़ौजी हिसेदारी सबबि दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ वधीक

ॼाण ताईं पहुच जो अहम ज़रियो आहे। टेली कम्युनिकेशन ऐं इंफॉर्मेशन सोसाइटी जे आलमी ॾिहाड़े ते सदर ज़रदारी आई टी वज़ारत पी टी ए ऐं मोबाइल ऑपरेटर्स जी ख़िदमतुनि जी वाखाण कंदे चयो आहे त हुकूमत मुल्क में डिजिटल पहुच ऐं राब्तनि खे हथी ॾियण लाइ कोशिशूं वठी रही आहे। वज़ीर आज़म पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त नेशनल ए आई पॉलिसी 2025 हिकु इनकलाबी क़दम आहे जेका पाकिस्तान में हथरादू ज़हानत जी माहौलियाती निज़ाम जी तरक़ीअ जो ज़ामिन आहे।

डीलिंग जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार अनमोल पिनकीअ जी सुञाणप कार्ड ऐं पासपोर्ट जी कापी साम्हूं अची वई। दस्तावेज़नि मूजिबि जवाबदार पिनकी 17 अप्रैल 2018 ते कराचीअ मां पासपोर्ट हासिल कयो, जेको अप्रैल 2023 में एक्सपायर थियो। जवाबदार पिनकी सुञाणप कार्ड बि कराचीअ मां 6 डिसंबर 2016 में हासिल कयो। पतो गुलशन इक़बाल जे अबुल हसन असफानी रोड जो लिखियलु आहे। ज़रियनि मूजिबि पिनकी जे कुटुंब जी पासपोर्ट ऐं सुञाणप कार्डनि जा तफ़सील बि हासिल कया विया आहिनि। पिनकी जा सफ़री दस्तावेज़ हासिल करण जी कोशिश कई पई वञे। जांच अख़्तियारनि मूजिबि पिनकी नालो तब्दील करे हिकु ॿियो सुञाणप कार्ड ठाहिराइण जी बि कोशिश कई। मामले जी मुख़्तलिफ़ रुखनि खां जांच कई पई वञे।

सिंध जे नव ज़िलनि में मकानी इदारनि जी नंढी चूंड लाइ वोटिंग जो अमल मुकमल थियण बाद नतीजनि जे गणप जो सिलसिलो जारी। हैदराबाद, जामशोरो, सिजावल, सखर, नौशरो फिरोज, मीरपुर खास, जैकबाबाद ऐं घोटकी ज़िलनि में खाली थियल सीटनि ते नंढी चूंड लाइ वोटिंग सुबुह 8 वॻे शुरू थी, जेको शाम 4 वॻे ताईं बिना कंहिं वक़फ़े जे जारी रही। दादू जे ॿिनि यूसीज़ सावड़ो ऐं छंडड़ ते पीपुल्स पार्टी जा उमेदवार बिना मुक़ाबले कामयाब थी विया।

0: सकरन में मामे के कतल कंदड़ जवाबदार जो हथ आयल लाश केतरनी कलाकन का अस्पताल में पहल को भी माइट वसूल करण लाए न पहुतो। गुजल रात कुंभ लीमा भरसा मिस्री जमालिया जो तशद थियल गोली लगल लाश हथाय हो। पुलिस लाश तवील में वठी हल्के अस्पताल में।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320 180 00003

0: टैलेंटेड साथी जिनका ताल्लुक और उनका नाम है मोहम्मद वकास, वो भी कमेंट्री कर रहे हैं इस इवेंट में, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इन दोनों की गुफ्तगू पाकिस्तान बांग्लादेश के टेस्ट मैच के हवाले से भी और पहले टेस्ट मैच में जो कुछ हुआ उसके हवाले से भी मैं आपको सुनाऊंगा और साथ साथ इस टूर्नामेंट के हवाले से भी। लेकिन दोनों से थोड़ी सी हम बात करेंगे उनकी अपनी प्रोफाइल्स के बारे में कि किस तरह से ये दोनों कमेंट्री की दुनिया में आए। तो एफ एस मलिक से सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, एफ एस मलिक आपको कमेंट्री का शौक कब हुआ, कैसे हुआ और किसको सुन के हुआ और किस तरह से आपने अपना कमेंट्री डेब्यू किया, जरा अपनी जर्नी के बारे में हमारे जो सामईन है जी एफएम के उनको बताइए।
1: अस्सलामु अलैकुम सामईन, अस्सलामु अलैकुम राना अशफाक साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस शो में मुझे मदद किया। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो कमेंट्री का आगाज जो है वो राना अशफाक साहब मैंने 2007 से शुरू किया, जब मैं स्टूडेंट था। आई वॉज कीनली इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, खेलने के साथ साथ सुनने का शौक भी था और मोस्टली जो है वो टीवी पे और रेडियो पे सुन के दिल में एक ऐसी जिबिलत सी उठती थी कि मे बी आई कैन डू इट एज वेल। तो वहाँ से स्टार्ट किया, आगाज में बहुत दुश्वारियाँ भी थी और उसके बाद मैं कंसिस्टेंट रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, माँ बाप की दुआएं थी, आप जैसे उस्ताद मिले, आप जैसे दोस्त भाई मिले जिनकी रहनुमाई थी और उस वजह से जो है मैंने अपना सफ़र जारी रखा। जाके मैंने 10 साल के एफर्ट के बाद 2017 में PSL 2 के फाइनल में मुझे कमेंट्री का मौका मिला FM 89 लैया ही से मैं बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे मुझे जो है अपना प्रोफेशनल डेब्यू करने का मौका मिला, उसके बाद 2019 जो है वो स्पोर्ट्स पे काम करने का चांस मिला। इसी तरह बतदरीज आस्ता आस्ता मैं टीवी पे काम किया, 2022 में

0: हैं 2023 में जियो सुपर पे डेब्यू हो गया, फिर आप जैसे उस्तादों के साथ मिलकर काम करने का बहुत मजा आया और ये सफर जो है इसको जारी रखे हुए हैं, मजीद एफर्ट्स भी कर रहे हैं। टेप बॉल तो प्रेडोमिनेंटली कवर करते हैं बहुत ज्यादा, पंजाब में भी और कराची में भी टेप बॉल के जितने मेन इवेंट्स होते हैं उनको कवर करने के लिए आते हैं, कमेंट्री करते हैं और उसके साथ साथ जो है वो अपनी एफर्ट जो है वो क्रिकेट बॉल में कमेंट्री की उसको भी जारी रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ भी मैंने ओवर 40 ग्लोबल कप भी कवर किया 2023 में, फिर 2025 में वर्ल्ड कप ओवर 40 जो है वो भी जियो सुपर पे कवर किया। तो इस तरह जो है इट हैज़ बीन वेरी गुड, आई एम पैशनेट, पैशनेट होने के साथ साथ जो है वो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं खुद को जो है मनवा सकूँ इस फील्ड में और अपनी एफर्ट को जारी रखे हुए हूँ। आप जैसे सीनियर की दोस्तों की दुआएं साथ हैं तो इंशाल्लाह आई एम क्वाइट हैप्पी व्हाट आई हैव अचीव्ड और फ्यूचर में भी यही कोशिश है कि जितना कुछ हिस्से में आए उसको हासिल करें।
1: बिल्कुल, मैं अपने सुनने वालों को बताना चलूँ कि तो मेरा ये दावा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ये स्टेटमेंट रहा है हमेशा कि एफएस हमारे साथी कमेंटेटर हैं जो डिजर्व करते हैं कि उन्हें पीएसएल की अंग्रेजी कमेंट्री में भी होना चाहिए, उर्दू कमेंट्री में भी होना चाहिए। ही गॉट अ वंडरफुल एंड सूदिंग वॉइस, ही गॉट अ ग्रेट फ्लुएंसी और जबरदस्त अंदाज के कमेंटेटर हैं। और सबसे जो इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मेरी पर्सनल फीलिंग हैज अ ग्रेट नॉलेज ऑफ आउट एंड आउट क्रिकेट, क्रिकेट की तमाम हिस्ट्री है जो हर दौर के ग्रेट्स रहे हैं। आप 2025 से लेकर 50s में 40s में चले जाइए, हर ईरा के ग्रेट्स के बारे में इनको नॉलेज है और ये ज़बरदस्त अंदाज में उन पे बात कर सकते हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो बात करते हैं। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है GFM रेडियो नेटवर्क, इस पर हम हमेशा खुलकर बात करते हैं। तो FS, आपने जब कॉमेंट्री जाहिर है सुनना शुरू की, देखना शुरू की, बड़े बड़े ग्रेट्स को आपने सुना, टॉनी ग्रेग, रवि शास्त्री, एन चैपल, नासिर हुसैन से लेकर एवरीवन और पाकिस्तान कमेंटेटर्स की बात फिर से लेकर चिश्ती मुजाहिद, क्या फर्क देखते हैं उस दौर की कमेंट्री में जब हम लोग ग्रो अप हो रहे थे, हम लोग ने कमेंट्री शुरू किया सुननी शुरू, और इस वक्त की जो कमेंट्री और जो यंगस्टर्स आ रहे हैं मैं देखता हूँ उनकी वोकैबुलरी में भी वो बात नहीं है, उनके अल्फाज का चुनाव भी उस तरह का नहीं है और उनके अंदाज भी उस तरह के नहीं है कि एक अंदाज से मुतासिर कर सकेंगे। जैसे रीस भाई जो थे वो अपने अंदाज की वजह से छाए रहे, ठीक है, इकबाल बेग का अपना एक स्टेट्स का एक जरिया था, हसन साहब की आवाज और फ्लुएंसी, चिश्ती साहब का अपना स्टाइल था जिसमें एट टाइम्स मजा भी होता था और बड़ी सिंपल और शानदार अंग्रेजी को बोलते थे इफ्तिखार साहब, कुरैशी साहब। तो क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आप अब मैं आपको जहां तक जानता हूँ आप मिडिल एज के बन गए हैं हमारे हिसाब से, कि आपने अनों को भी सुना, नयों के साथ भी काम कर रहे हैं और आप दरमियानी जनरेशन जो कमेंट्री में उसमें है, तो क्या फर्क पाते हैं उस जनरेशन में हमारी जनरेशन?
0: बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने रमेश पाल साहब, और मैं ये समझता हूँ कि जो पहले दौर के कमेंटेटर्स की ग्रेट्स का आपने जिक्र किया है, चाहे वो इंटरनेशनल अरीना से हों या पाकिस्तान से, स्पेशली पाकिस्तान के कमेंटेटर्स जिनमें हसन जलील साहब, इदरीस साहब उर्दू में, और उनके साथ साथ इंग्लिश की बात करें तो इफ्तिखार अहमद साहब, मुजाहिद साहब, ये जो ग्रेट्स थे, इवन तारिक रहीम साहब, तो राजा असद अली खान साहब, ये पढ़े लिखे लोग थे, ये क्वालिफाइड थे। आप देखें कोई कैम्ब्रिज से क्वालिफाइड है, कोई ऑक्सफोर्ड से, तो कोई एचिसन कॉलेज का पढ़ा हुआ है, तो इनकी तालीम थी, ये ग्रेट थे और ये जो है टिपिकल ब्रॉडकास्टर्स थे और इनकी वॉइस क्वालिटी जो थी वो ब्रॉडकास्टिंग की जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैच करती थी, उन पर पूरी उतरती थी। और ये चीज आजकल की जो जनरेशन है उसमें देखने को कम इसलिए मिल रही है कि आजकल के जो नए कमेंटेटर्स हैं तालीमी लिहाज से भी क्वालिटी इनकी कम है और इनके पास कम है बनिस्बत उन ग्रेट्स के। वो एक औरा था, एक लेगेसी थी, चाहिए तो ये था कि उसको कंटिन्यू किया जाए, लेकिन अब यहाँ पे अलमिया ये है कि जिसको भी दो चार बातें करना आती है वो समझता है कि मैं कमेंटेटर हूँ। हालांकि ये एक बहुत डिफिकल्ट आर्ट है, सिर्फ बोलना या बात, योर वॉइस क्वालिटी मैटर्स अ लॉट, और लिसनर्स को आपने एक ऐसी चीज देनी होती है, ऐसी वोकैबुलरी यूज करनी होती है जिससे लिसनर आपको सुनने के बाद रेडियो या टीवी से हटने की जिसारत ना करे। ये चीज हमने उन ग्रेट्स जिनके हमने नाम लिए हैं थी, बट अनफॉर्चुनेटली नई जो जनरेशन है, नया जो स्लॉट है, इसमें ये चीज देखने को कम नजर आती है, तो इस पे भी अगर काम करें, बाकायदा से खुद को ट्रेन करके आए, बुक्स रीड करें, रेडियो पे ग्रेट्स को सुने, उसी लेगेसी को अगर कंटिन्यू करना है तो इवन इंटरनेशनली इंडिया के भी ग्रेट कमेंटेटर हुए हैं, संजय बैनर्जी की बात कर ले, विनीत की बात कर ले, सुरेश रैया, बहुत अच्छे अच्छे आवाजें, बड़े अच्छे अच्छे नॉलेजेबल कमेंटेटर्स रेडियो पे हुए, और खासतौर पर जब आप रेडियो को सुनकर आते हैं तो आपके पास ऐसा नॉलेज होता है, ऐसी फ्लुएंसी होती है जो यकीनन सुनने वालों के लिए एक ऐसा मंजर पेश करती है जो कि देख तो नहीं रहे होते लेकिन खुद को ग्राउंड में फील करते हैं। ये खूबसूरती है रेडियो की, और इवन टीवी पे भी अगर आप देखें कि जिस तरह के ग्रेट कमेंटेटर्स हुए हैं, टोनी ग्रेग की बात आप कर रहे थे, इयान चैपल ग्रेट, वो रेडियो भी करते हैं, टीवी भी करते हैं, तो टीवी पे इन ग्रेट्स की जब आप आवाज सुनते हैं, मार्क निकोलस हों और बिल लॉरी हों, रवि शास्त्री हों, संजय मांजरेकर हों, जब आप इन लोगों को सुनते हैं तो यकीनन आपको फील होता है कि क्रिकेट गेम जो है इट्स नॉट ओनली अ गेम, ये सिर्फ गेंद और बैट का खेल नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा वसत है, डेप्थ है, और इसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन भी है, और वो अट्रैक्शन अल्फाज से आती है, और जब इस खेल को अल्फाज में बयान करके डिफरेंट सिचुएशंस को अपने खास अंदाज में ये ग्रेट्स जब बयान करते हैं तो यकीनन वो शायकीने क्रिकेट के लिए एक क्राउड पुलिंग जिसको आप कह सकते हैं कि सिचुएशन बन जाती है। और एक वक्त तो ये था नाना साहब कि जो कमेंटेटर्स थे, जिस तरह चिश्ती मुजाहिद साहब और इफ्तिखार अहमद का दौर था, वो कमेंटेटर्स एक ऐसा वक्त था कि प्लेयर्स से भी ज्यादा मकबूल हो गया, तो अनफॉर्चुनेटली आजकल वो चीज बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन होप्स हो, हर दौर को खत्म होना होता है तो हर दौर का एंड भी होना होता है, तो वी आर होपिंग अगेंस्ट होप कि पॉजिटिव नोट पे जो लोग कर रहे हैं वो भी खुद को बेहतर करेंगे, अपनी इन चीजों पे काम करेंगे, अपनी बेसिक्स जो हैं उनको बेहतर करेंगे, और वॉइस क्वालिटी जो है उस पे भी आई होप के प्रोड्यूसर हजरात या प्रोडक्शन वाले जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और डिजर्विंग वॉइसेस जो हैं उनको, और कमेंट्री का जो स्टैंडर्ड अगर उन ग्रेट्स के एरा को मैच ना भी कर सका तो कम से कम बेहतरी की तरफ जरूर आएंगे।
1: जी हाँ, बड़े अच्छे अंदाज में आपने बात की, बिल्कुल कमेंट्री का स्टैंडर्ड जो है बढ़ना ही चाहिए। पांच चीज पे हम ब्रेक की जाने पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी बातचीत जारी रखेंगे, अभी दो तीन मिनट मेरे पास हैं कि मैं एफएस से कुछ जो और की शख्सियत से मैं वाकफ हूँ वो चीज़ें ले सकूँ। अभी तो हम बात करेंगे ग्रेट टोनी कोजियर का भी हम जिक्र करेंगे, जॉन आर्नॉल्ड का भी, ब्रायन जॉनसन का भी, हेनरी ब्लूफील्ड, जोनाथन एग्न्यू, और साथ साथ क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस। और पैसों की बात आपने की थी, मुझे याद है मुझे एक दफ़ा चिश्ती साहब ने बताया था कि 65 में जब उन्होंने अपना पहला मैच किया 66 में, जो कि एक 3 डेज मैच था, उसमें उनका जो पर डे था वो गालबन 65 रुपीज था, और हैदराबाद के लिए कराची से उन्हें ट्रेन का टिकट दिया था रेड पाकिस्तान ने, और उस वक्त जो प्लेयर्स की शायद पर डे की फीस थी वो 30 रुपए थी, यानी कमेंटेटर की फीस उससे डबल थी, और मकबूलियत का भी आपने जिक्र किया। हमारे पास अभी 2 मिनट हैं ब्रेक पे जाने से पहले, मैं चाहता हूं कि एफएस जो है वो जो ग्रेट माइकल होल्डिंग है वेस्ट इंडीज के, उनका इंप्रेशन बहुत अच्छा देते हैं, और हमारे जो लिसनर्स कमेंट्री को जानते हैं समझते हैं वो माइकल होल्डिंग की क्रिकेट से भी वाकफ हैं, जिन्हें विस्परिंग डेथ कहा जाता था, सडन डेथ भी उन्हें कहा जाता था, और उनकी जो कॉमेंट्री को एक नए अयाम उन्होंने दिए, और स्काई स्पोर्ट्स ने 98 से लेकर 2020-21 तक 23 साल मुसलसल उनसे कमेंट्री करवाई। तो एफएस हमारे लिसनर्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़े से कुछ चंद जुमले जो हैं वो माइकल होल्डिंग के इंप्रेशन में हो।
0: Well, Rana, you're in a way putting me in a kind of a hot water because I've retired from the international commentary as people knew. But yeah, nowadays I'm covering A-ball here in Pakistan, and what I'm sensing, the people like to go big, they shift this, and the boundary is the batsman, and on the other hand, the bowlers have different varieties, but at the moment, the game has become battles game, as you used to say, that Shoaib Akhtar, one of the lethal bowlers and one of the greats, though he has pace, but at times the accuracy lacks, so he can be one of the greatest ones. But, and not as much as I can assume. People might think, but me, good, not that great.
1: वंडरफुल वंडरफुल, हम तालियां बजा रहे हैं फैज मलिक के लिए जिन्होंने इंतहाई शानदार अंदाज में और माइकल होल्डिंग की कमेंट्री की झलक जो है बिल्कुल

0: कानों को बहुत भली लगती है और वो सुनाई भी दी। इस वक्त प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप में जीए एफएम रेडियो नेटवर्क पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है के तो एफएस से मजीद बात करेंगे कमेंट्री के हवाले से भी एंड ऑब्वियसली वी विल टॉक अबाउट पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच एज वेल। लेट्स टेक ए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ऑन जीए एफएम रेडियो नेटवर्क।
1: आप सुन रहे थे जीए
2: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
4: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।
6: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनीया जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
7: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
8: अम्मा, हे ॾिसो मूंखे छा मिलियो।
9: छा मिलियो पुटु?

0: महसूस
1: असाया पानी साफ ना है तेंजे करी तो सब बीमार था चाहो असा के पानी ए सफाई बिनन जो ख्याल रखन गुरजे
2: केडो सयानो पुत्रा मुंजो
1: बाबा इयो ही जासूस तांगे बचाइंदो
3: साफ पानी महफूज जिंदगी दस्तन खां बचा ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश
4: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ए फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर ते सुबह 10 खां शाम 5 बजे ताईं मरीज

पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हन सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राब्ते लाइ 0301-2196-8051।

0: बताना इस बात का, इनकी कमेंट्री में रेड तो आ रहा
1: मास्टर
0: के बाद जितनी बनता वहाँ पर कमेंटेटर आए थे तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप कमेंट्री करें। मैंने कहा मैं काटती नहीं तो लेकिन कोशिश करता हूँ, लेकिन मैंने कुछ अल्फाज किए थे लंबा ऊंचा और फलक शगाब छक्का, कुछ इस तरह के अल्फाज जो मेरे जुबान पर पहले से थे, या ये कि जैसे ही गेंद बल्ले से टकराई उसी वक्त अंदाजा लग चुका था सर गेंद बाउंड्री लाइन के पास जाकर गिरेगी और अंपायर के खिलाफ, ये अल्फाज मैंने रेडियो से स्टार्ट से सीखे हुए।
1: अच्छा गेट,
0: तो जब उन्होंने मुझे माइक दी मैं छक्का लगा, मैंने यही अल्फाज वगैरह इस्तेमाल किए तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया था आपको, बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं। हालांकि वो मेरा पहले एक्सपीरियंस था, पहली दफ़ा मुझे मौका मिला था, वहाँ से जो है मजीद मुझे फिर मौके मिलते गए और शौक मजीद बढ़ता गया। क्रिकेट तो हम खेलते थे और क्रिकेट की समझ बूझ भी थी कि मुझे फील्डर्स के हवाले से भी मुझे मालूम थी, पिच के हवाले से हर चीज़ के बारे में, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है पूरे के पी गेम में मैंने कमेंट्री की, MPL लाहौर में मुझे मौका मिला एज ए कमेंटेटर, मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, कि पीके के लिए फ़ख्र की बात है। और उसके बाद अब कराची में अल्हम्दुलिल्लाह जो कि नेपाल का सबसे बड़ा इवेंट है उसमें मुझे कमेंट्री करने का मौका मिला, तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है।
1: बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हम सब लोग जो हैं वो गॉड ब्लेस्ड हैं, क्योंकि ये बहुत कम लोग हैं जिन्हें मौके मिलते हैं, वरना यकीनन बहुत सारे टैलेंटेड लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मौके नहीं मिल सकते। बहरहाल रेडियो कमेंट्री का एक अपना हुस्न है, जिस तरह हमारे दोनों सुनने वालों ने बताया। बहरहाल अब एक ये जो टेस्ट मैच जारी है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, उसके हवाले से बात करते हैं, जहां पर बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम में मध्य मुकाबले है। पहला टेस्ट मैच हार चुकी है पाकिस्तान की टीम, और बांग्लादेश की टीम ने जो है वो इस मैच में पहले बैटिंग की थी, 278 रन ने अपने लॉटेड ओवर में स्कोर किए, जिसमें महमदुल हसन जॉय ने कोई रन नहीं बनाया, 26 रन तंजीर हसन ने बनाए, मोमिन हक ने 22 और नजमुल हसन ने 29 रन स्कोर किए, और फिकुर रहमान ने 23 और 126 4 रन बनाए, मेहंदी मेराज ने, और ताजुल इस्लाम ने 16 रन स्कोर किए, 7 तस्कीन अहमद ने।

0: 12 रन शरीफुल ने किए। ये अलग बात है कि सातवें विकेट पे बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप हो गई और 6 विकेट जो 116 पे गिर गई थी, उसके बाद सातवें विकेट 176 पे गिरी और आठवीं 214 पे जो है वो गिरी और दसवें विकेट जो है स्कोर को 278 तक ले गई। नवी और दसवीं विकेट एक साथ ही 278 पे गिर गई। बॉलर में पाकिस्तान के लिए अब्बास ने 3 आउट किए, 4 आउट किए फरम शहजाद ने, 2 खिलाड़ी आउट किए हसन अली ने। पहले ये ताल्लुक है पाकिस्तान की दूसरी इनिंग में सिवाय बाबर आजम के कोई बैटर खास कर नहीं दिखा सका। बाबर आजम ने 68 बनाए, 38 रन नीचे साजिद खान ने स्कोर किया और 13 एकड़ बनाए। पाकिस्तान ने इस तरह 46 रन की लीड कंसीड कर दी। 3 खिलाड़ी नहीं पिलाना और ताजो इस्लाम ने आउट किए, 2 खिलाड़ी मेहदी हसन मिराज और तस्कीन अहमद ने आउट किए। जबकि दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश के लिए 52 रन बनाए हैं महमूद हसन जॉय ने, 4 पे आउट हुए, जबकि मोमिनुल हक ने 30 रन बनाए और नजमुल हसन शांतो जो है वो 13 रन पर नॉट आउट है 110 पे। 3 खिलाड़ी आउट हैं, तरफ मजमूनी बर्तरी उनकी 156 की हो गई है और इस टेस्ट मैच में भी उनकी पोजिशन मजबूत नजर आ रही है। वकास, इस टेस्ट मैच को किस तरह से देखते हैं और पाकिस्तान की जो ओवरऑल कारकर्दगी रही है इस पूरी सीरीज में, पहला टेस्ट मैच हार गए उसको किस तरह से देखते हैं?
1: नाना साहब, हमने देखा है पाकिस्तान के से पहले भी जो भी है उसमें भी कि अभी ये विकेट हासिल कर लेते हैं लेकिन जो दबाव इन्होंने बनाया होता है उसको बरकरार नहीं रख पाती। इससे पहले भी बांग्लादेश के साथ जो सीरीज हुई थी यही हमने देखा था, स्टार्ट की 6 विकेट वो बहुत जल्दी हासिल कर ली थी और इस टेस्ट मैच में भी हमने यही देखा कि पहली इनिंग में 6 विकेट काफी जल्दी हासिल कर ली थी, तकरीबन 120 पे 6 उठते बांग्लादेश के लिए। उसके बाद रतन दास जिस तरह परफॉर्म किया, उन्होंने सेंचुरी बनाई और 278 तक बांग्लादेश गई, तो पाकिस्तान जो प्रेशर बनाता है उसको मजीद बिल्ड नहीं कर सकता। यही वो वजह है कि पाकिस्तान फिर शिकस्त की तरफ जाता है और फिर बैटिंग में भी कोलैप्स करता है। 232 पाकिस्तान ने बनाए पहली इनिंग्स में, बाबर बॉलर नजर आए, साजिद की जो इनिंग्स थी उन्होंने कहीं ना कहीं हमें मैच में एक दफा फिर लेकर आई है। उन्होंने जो 38 रन बनाए हैं वो टीम के लिए जरूरत थी उस मौके पर और तेज बैटिंग भी उन्होंने की थी। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बांग्लादेश की बैटिंग की बात करें, उनकी सिर्फ 3 खिलाड़ी इस टाइम आउट है, 110 रन उन्होंने बनाए हैं और 156 रन की लीड है। तो अगर कल अर्ली पाकिस्तान विकेट हासिल करता है, कहीं ना कहीं 250 तक अगर पाकिस्तान को टारगेट मिलता है तो फिर 6 टारगेट, लेकिन अगर ये 260 से ऊपर जाता है, 250 से ऊपर जाता है तो फिर बांग्लादेश के विकेटों पर आखिरी इनिंग में रन करना काफी मुश्किल होते हैं। स्पिनर्स के लिए बहुत साजगार हो जाती है और उनके पास बहुत ही शानदार स्पिनर है ताजुल इस्लाम, उनके पास है मेहदी हसन मिराज है और पाकिस्तान के पास लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज भी काफी ज्यादा है जो मेहदी हसन मिराज उनको परेशान कर सकते हैं। और अगर राइट हैंडर की बात करें तो फिर बाबर है, बाबर के अलावा सलमान आगा है, रिजवान है, लेकिन ताजुल इस्लाम उनके साथ लेफ्ट आर्म गेंदबाज उनके पास है जो वो परेशान है राइट हैंडर्स को। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर एज दूंगा थोड़ा सा बांग्लादेश को उनकी अपनी होम ग्राउंड पर, उनके होम विकेटों पर। इस टाइम वो थोड़ी फेवरेट है इस मुकाबले में।
0: FS बांग्लादेश यकीनन फेवरेट है और लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन जरा करना चाहूंगा डीप कि क्या हालत हो गई हमारी टेस्ट क्रिकेट की। हमसे पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका या शारजा में खेलते हो बड़ी बड़ी टीमें घबराती थी, लेकिन अब हम बांग्लादेश में भी हार रहे हैं, श्रीलंका में भी एक तरह से हार रहे हैं, UAE में भी कारगर कुछ खास नहीं है, तो व्हाट हैज हैपेंड विद पाकिस्तान टीम?
2: तो बहुत ही अच्छा सवाल है आपका राना इस्पात, और इस पे मैं हूं कि पिछले 2 या 3 साल की अगर आप पाकिस्तान की कारकर्दगी देख लें तो वो बिल्कुल मुतासर को नहीं रही। उसकी वजह ये हो सकती है कि लैक ऑफ टेस्ट और फ्रेंचाइज क्रिकेट में प्लेयर्स की ज्यादा दिलचस्पी लेना और गेम अवेयरनेस का कम होना और कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। पिछले 2-3 सालों से आप देखें कि कितने प्लेयर्स ने टेस्ट डेब्यू किए हैं। देयर वाज अ टाइम व्हेन टेस्ट कैप्स ऑलमोस्ट वर फॉर सेल, टेस्ट कैप एक वक्त होता था कि खिलाड़ियों का ख्वाब हुआ करता था, लेकिन आजकल टेस्ट कैप जो है वो इतनी मुश्किल नहीं, और टेस्ट कैप ही मिलती है उसके बाद पहली सीरीज के बाद प्लेयर्स गायब होते हैं और फिर साल साल जो है वो गेम से आउट हो जाते हैं। सो दिस हैज बीन द प्रॉब्लम। और दूसरी बात ये है कि मोमेंटम जो है वो नहीं बन पा रहा है, उसकी वजह यह है कि प्लेयर्स का जो माइंड सेट है, प्लेयराना क्रिकेट जो खेला करते थे इंजमामुल हक, मिस बाउल हक, उनके दौर में टेस्ट क्रिकेट जो हुआ करती थी, पाकिस्तान के ग्रेट्स यूनुस खान जिस तरह या मोहम्मद यूसुफ की आप बैटिंग के हवाले से बात कर लें, तो उस एरा में जो दलेराना क्रिकेट पाकिस्तान खेला करता था इवन अगेंस्ट बेस्ट साइड्स, और आजकल आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश और इवन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी उस किस्म की कारकर्दगी जो है वो दिखाने से कासिर हैं। उसकी वजह यही है कि दलेराना क्रिकेट जो है उसका फुकदान देखने को मिल रहा है और प्लेयर्स जो है वो श्योर ही नहीं होते अपनी प्लेस पे। दे आर नॉट इवन श्योर कि हम ये सीरीज खेल रहे हैं तो नेक्स्ट हम होंगे भी या नहीं, तो दे आर इनसिक्योर, दे आर इनश्योर। दिस हैज बीन द प्रॉब्लम. और दूसरी बात यह है कि आप देखें हमारी पीसीबी पता नहीं क्या कर रही है, वनडे T20 में शामिल कर देते और टेस्ट क्रिकेट तो दूर दूर नजर ही नहीं आती. 14-15 टेस्ट मैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया खेल रही है साल के, और उसके मुकाबले में आपके टेस्ट मैचेस डबल फिगर में भी नहीं है. तो जब आप इतनी कम क्रिकेट खेलेंगे तो आपको मोमेंटम कहाँ से बिल्ड होगा, आपके पास ग्रेड्स कहाँ से डेवलप होंगे और आपकी टीम रिदम में कब आएगी. दिस इज अ वेरी मच थिंकिंग पॉइंट और पीसीबी एंड हूएवर आर रिस्पॉन्सिबल नीड टू पुट द थिंकिंग कैप ऑन.
0: बिल्कुल, कहीं ना कहीं टेस्ट मैच की जो अफादियत है, टेस्ट मैच की जो दिलचस्पी है, वो वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती जा रही है. उस तरह के टेस्ट क्रिकेटर प्रोड्यूस नहीं हो रहे जो 100 टेस्ट मैच खेलें, जो 500 खिलाड़ी आउट करें, 400 खिलाड़ी आउट करें. मुझे देखें अब याद नहीं आता कि वसीम अकरम की 416 टेस्ट विकेट्स हैं, बकाया यूनुस की 373 हैं, इमरान खान की 362 हैं. उसके बाद मुझे कोई हमारा बॉलर नजर नहीं आ रहा जिसने 300 टेस्ट विकेट्स भी ली हों. तो कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ कि हमारी टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल टाई डाउन कर रही है. बहरहाल प्रोग्राम में एक और ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक से जब लौटेंगे तो हमारे दोनों साथियों से मजीद गुफ्तगू करेंगे और फिर 6 बजे के आसपास हम 6 बजे की न्यूज़ के साथ ही आपसे इजाज़त ले लेंगे. और मैं अभी से माजरत पाऊँ कि प्रोग्राम को हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, आज लंबा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज क्योंकि हमें ऑन एयर आना पड़ेगा फॉर दी सेमीफाइनल एंड फाइनल ऑफ दी पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप. और अगला जो हमारा कमर्शियल ब्रेक के बाद सिलसिला होगा 10 मिनट का, उसमें हम इसी टेबल चैंपियनशिप और टेबल क्रिकेट के हवाले से हमारे दोनों कमेंटेटर्स और हमारे दोनों मेहमानों से बात करेंगे. लेट्स टेक अनदर ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, GAFM रेडियो नेटवर्क.
3: मोरो नौशहरो मीरपुर खास लाड़काना सखर गूंज रही है हर जगह पर.
4: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں، پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
5: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکلز، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
6: بینک کلبیب، رشتہ بھروسے کا.
7: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. सुनते रहो GFM 94.

0: कमेंट्री भी कोई रेडियो नहीं कर रहा, मगर रेडियो की कमेंट्री अपनी अफादियत है। इसी तरह आप क्या समझते हैं स्टेप बॉल मैचेस को, स्टेप बॉल के बड़े इवेंट्स को रेडियो पे भी आना चाहिए कमेंट्री के हवाले से टेलीविजन के साथ साथ?
1: हाँ बिल्कुल, एक और अच्छा सवाल किया है आपने राना। यहाँ पे जिस तरह आप बात कर रहे हैं टेप बॉल की, और टेप बॉल की जो वैल्यू आजकल बन चुकी हुई है, इट हैज बीन काइंड ऑफ अ ड्रीम, ख्वाब था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस लेवल तक टेप बॉल जो है वो आने वाले वक्त में चली जाएगी। और टेप बॉल को जिस किस्म का स्पॉन्सरशिप और जितनी फैन फॉलोइंग मिली हुई है, उसकी वजह सबसे ज्यादा तो ये है कि ये शॉर्ट स्पैन ऑफ गेम है, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में खत्म होने वाली गेम है और इंटरटेनिंग स्टफ है। और हमारी खासतौर पर जो हमें ये दीवानी है क्रिकेट की, और इनको इंटरटेनमेंट चाहिए, और टेप बॉल से बढ़ के इंटरटेनमेंट हो नहीं सकती क्योंकि शॉर्ट है, वक्त की इसमें ज्यादा ज्या नहीं है। और आपके पास टाइम हो तो लेके आते हैं ग्राउंड, इवन सातक से भी मैचेस क्यों नहीं जे सोच तो। और आईकॉन क्रिकेटर्स FMC है, छोटा विकेट, इनाम लेफ्टी, जिस किस्म और जितना इनका हो रहा है हसन, इनकी खुद की इतनी फैन फॉलोइंग है यकीनन, क्योंकि आपके जो लिसनर्स हैं खासतौर पे जो ट्रेवलर्स हैं जो सफर कर रहे होते हैं या जहाँ पे टीवी की या सोशल मीडिया की ज्यादा एक्सेस नहीं है, वहाँ पे आपको लिसनर्स मिलेंगे। और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि टेप बॉल के खिलाड़ियों के फैंस पाकिस्तान के हर कोने में आपको मिलेंगे, हर जगह पे मिलेंगे। तो यकीनन अगर ये स्टेप लिया जाए इन फ्यूचर, सो दैट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल।
0: बिल्कुल मैं समझता हूँ, और बावजूद इसके कि मैं ये भी ऐड करूंगा कि सोशल मीडिया या ये चैनल अवेलेबल होने के बावजूद भी एट टाइम जो रेडियो कमेंट्री का चार्म है वो अट्रैक्ट करता है, यही वजह है कि आज भी जब भी रेडियो से कमेंट्री नशर होती है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी रेडियो से हो और BBC की कमेंट्री आज तक लोग सुनते हैं, इवन इंटरनेट के जरिए एप्स के जरिए BBC को ट्यून इन करके और ABC को ट्यून इन करके और रेडियो न्यूजीलैंड को ट्यून इन करना है। हम आज के मैच देंगे वो फाइनल में क्वालिफाई कर सकते हैं, और कौन सी टीम जो है वो चैंपियन बन सकती है पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप की?
2: तमाम टीम्स अच्छी है, तमाम टीम्स है, लेकिन यहाँ पर न्यू स्पोर्ट्स अगर हम बात करें, अफरम चकवाल उनके साथ है, शाहजहां उनके साथ है, हैदराबाद का बहुत बड़ा नाम पाक उनको कहा जाता है, तो मैं थोड़ा सा उनको एज दूंगा, वो फाइनल में जा सकती है। और उनके साथ साथ शेरवानी स्पोर्ट फाइनल में जा सकती है क्योंकि साथ जैसे बॉलर है, उनके अलावा मौसम ब्रेकर है, बैटिंग की अगर बात करें सरमद हमीद उनके साथ जेनी रहती है, तो ये दो टीमें हैं जो फाइनल में जा सकती है। और लेकिन मुकाबले अच्छे देखने को मिलेंगे और टेप बॉल जैसा आपने बात की, टेप बॉल उसके बहुत ज्यादा उरूज पर है, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या इंडिया, जहाँ पे भी हो टेप बॉल क्रिकेट खेली जाती है। चैंपियनशिप ने जिस तरह नौजवानों को यहाँ पर मौका दिया है, और इसके बाद इन्होंने ये ऐलान भी यहाँ पर कर दिया है कि 20 सितंबर तक कश्मीर में भी पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप का अगला इवेंट जाएगा, और उसके बाद शायद अगला इवेंट भी खेला जाए, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल इवेंट भी अगर आ सकते हैं इन्होंने हमें करवाएंगे इंशाल्लाह। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि टेप बॉल क्रिकेट मजीद उरूज पर जाने वाली है, और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि ओलंपिक में भी टेप बॉल क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज में दे रहा हूँ, अब ओलंपिक में भी टेप बॉल क्रिकेट को ऐड किया जाएगा क्योंकि स्मार्ट क्रिकेट है और ओलंपिक में इन चीज़ों को ऐड किया जाता है जिसके रिजल्ट फौरन लेते हैं, तो एक घंटे दो घंटों में इनका रिजल्ट निकल आएगा, और इंशाल्लाह तो टेप बॉल क्रिकेट मजीद आगे

0: इस बात में कोई शुबा नहीं, और ये वाकई ब्रेकिंग और बड़ी न्यूज है कि ट्रिपल उसे ओलंपिक में भी शामिल किया जाए और इंशाल्लाह इंटरनेशनल इवेंट भी हो। अच्छा फर्क शेर, आखिर में क्योंकि आपका ताल्लुक कमेंट्री से और बकास का ताल्लुक भी कमेंट्री से है, तो कुछ मैं क्वेश्चन पूछूंगा। एक तो आप दो इंटरनेशनल और दो नेशनल, यानी दो पाकिस्तान के, दो इंटरनेशनल, आपके ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर्स बताइए पहले, देन मैं कमेंटेटर्स पे आऊँ।
1: ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर्स की बात करें तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट बैट्समैन ब्रायन चार्ल्स लारा हैं, और ऑल टाइम फेवरेट बॉलर जो हैं वो मेलकम ग्रेट वेस्टइंडीज, अगर मदासिफ पर थे जो कि बहुत

द शोरो प्रोज जिन्होंने हमारा साथ दिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने हमारे लिसनर्स से। नौशहरो

0: आदमी के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
1: खोन तो खे मुझे रो पाए तैयार थे जो
2: तू आज भी हसी
1: थोड़ो पाए तो देखार
3: ना माँ माँ थकी पई आया
1: न पुट ये थकना है रत जी कमी है दिसता केडू न फिको थी हुआ है तुझो चेहरो
3: छा कया माँ
1: 6 महीना थी वैन पुट तू उम्मीद सा आई ऐ हाने वनी तो शुरू कई है फौलाद जी गोरी कच्चू भाजू खाईंदी कर पुट खाई विंदा हुआ सी उनन साई तो खून ठंदो है इनसा न तो

0: जीअं मां वजह ॿुधाई त ऑटो इम्यूनिटी डिज़ीज़ आहे, उन खां अलावा ॿियूं बि होड़ सारियूं वजहूं आहिनि। हिकु त जेको आहे सो यानी पेट जी ख़राबी थी वेंदी आहे, घणे टाइम खां घणनि खे कब्ज़ रहंदो आहे उन जे करे हूंदो आहे, या फैमिली हिस्ट्री में कंहिंखे हेरिडिटी में हूंदो आहे त उन जे करे बि जेको आहे सो थी वेंदा आहिनि, या वरी जेको आहे सो कुझु अहिड़ियूं घणे टाइम ताईं कुझु मेडिसिन्स खाइबी आहिनि जिन जा साइड इफेक्ट्स हूंदा आहिनि, उन जे करे बि जेको आहे सो माउथ अल्सर थी वेंदी आहे, या वात जा जेके छाला आहिनि उहे थी वेंदा आहिनि, या जेको आहे सो गर्म खाधो माण्हू यकदमि खाईंदो आहे या ब्रुश कंदो आहे को उहो लॻी वेंदो आहे, या जेको आहे सो एनी प्रॉब्लम्स, ॿिया खोड़ सारा अहिड़ा प्रॉब्लम्स हूंदा आहिनि, गर्म ज़्यादा जेके शयूं हूंदियूं आहिनि ज़्यादा इस्तेमालु करण सां जेको आहे सो इहे वात जा जेको आहे सो छाला थी वेंदा आहिनि, ऐं पोइ जॾहिं थी वेंदा आहिनि त उनजो अहसासु कीअं थींदो आहे, यानी अव्हांखे ख़बर कीअं पवंदी आहे त अव्हांखे तकलीफ़ कहिड़ी थींदी आहे। उहा तकलीफ़ इहा ई हूंदी आहे त हिकु त जेको आहे सो अव्हां ॾिसंदो त घणनि जी यानी हिकु त मां पहिरियों ई ॿुधायमि त छालो थी वेंदो आहे, ऐं उन खां पोइ छाले हुजण सां गॾो गॾु घणनि जी ज़बान जेको आहे सो सुजी बि वेंदी आहे, घणनि जी ज़बान में छो जो खोड़ सारा क़िस्म हूंदा आहिनि छालनि जा वात जे पचण जा, घणनि जी ज़बान जेको आहे सो पची पने ॾारूं ॾारूं थी वेंदी आहे, घणनि जी ज़बान सुजी वेंदी आहे, घणनि जी ज़बान ते अछा चुटा थी वेंदा आहिनि, घणनि ते जेको आहे सो ईअं छाला निकिरी ईंदा आहिनि, ॻाढ़ी थी वेंदी आहे बिल्कुलु, पोइ उनजे करे माण्हू खाइण पीअण खां जेको आहे सो रहिजी वेंदो आहे, खाई पी सही तरीक़े सां न सघंदो आहे, यानी ॻाढ़ो मिर्च त बिल्कुलु ई बर्दाश्त न थींदा आहिनि, लेकिन ॿी आम जेकी शइ हूंदी आहे उहा बि जेको आहे सो यानी न हली सघंदी आहे, इवन पाणी बि जेको आहे सो अव्हांखे जेको आहे सो तकलीफ़ ॾींदो आहे, त इन तकलीफ़ जी सूरत में जेको आहे सो अव्हांखे हिकु त केयर करणु घुरिजे। केयर कहिड़ी हूंदी आहे जीअं मां पहिरियों ई ॿुधाई त जेको आहे सो हिकु त यानी स्ट्रेस नाहे वठिणो, स्ट्रेस जे करे बि इहे प्रॉब्लम्स थींदा आहिनि, हिकु त स्ट्रेस नाहे वठिणो, आराम जो ख़ासि ख़्यालु रखिणो आहे, थधियुनि शयुनि जो इस्तेमालु करिणो आहे, मिसलनि ॾही आहे, ॾही हिकिड़ो बहितरीन सोर्स हूंदो आहे, ॾही खे इस्तेमालु करे सघो था, उन खां अलावा जीअं ग्लिसरीन पेस्ट ऐं हेड आहे ऐं पाणीनि जी पेस्ट ठाहे उहा ज़बान ते लॻाइबी आहे, हिकिड़ा देसी टोटका बि असां हिन प्रोग्राम में गॾो गॾु ॿुधाईंदा आहियूं त जीअं असां पंहिंजे समयन खे फस्ट एड तौर ते असां ॿुधाए सघूं त हू यकदमि जेको आहे सो हुन ते हैवी थी सघनि, बीमारी ते हैवी थी सघनि, कंट्रोल करे सघनि, त इहे हिकिड़ा घरेलू टोटका हूंदा आहिनि जेके असां ॿुधाईंदा आहियूं। उनखां अलावा सौंफ तव्हां चूसे सघो था, फूदनो जेको आहे सो तव्हां जेको आहे सो इस्तेमालु करे सघो था, ऐं सभु खां बहितर ऐं सभु खां वधीक जेकी ॻाल्हि ईअं रखंदासीं उहा आहे होम्योपैथिक मेडिसिन्स, बजाए तव्हां का ॿी मेडिसिन्स इस्तेमालु कयो त होम्योपैथिक में असांजा खोड़ सारा अहिड़ा पेशंट्स आहिनि जिन खे इहे तकलीफ़ूं थींदियूं आहिनि, असां पंहिंजी जॾहिं दवाऊं हुननि खे ॾिनियूं आहिनि त अलाह ताला जी महिरबानी सां बग़ैर कंहिं साइड इफेक्ट्स जे उहे बिल्कुलु जेको आहे सो ठीकु थी वेंदा, इवन एतिरे क़दुरु जेके हू यानी ॻाल्हाए कोन सघंदा आहिनि इन वात पचण जे करे, छालनि जे करे, खाइण पीअण उन्हनि जो ख़तमु थी वेंदो आहे, ऐं उन्हनि पेशंट्स खे पछाड़ी में जॾहिं उनखे फ़र्क़ु पवंदो आहे, परे परे खां उहे पेशंट असां वटि ईंदा आहिनि, जॾहिं पहिरियां मुख़्तलिफ़ ॿियनि डॉक्टर साहिबान ॾे वञी ॿियो इलाज कराए थकिजी पवंदा आहिनि त पोइ असां वटि ईंदा आहिनि, ऐं पोइ जॾहिं हुनखे फ़र्क़ु न पवंदो आहे त असांजी दवाउनि मां हुननि खे अलाह ताला जी महिरबानी, छो जो शिफ़ा ॾियण जी ज़ात रब ताला जी आहे, लेकिन असां वटि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ख़ासि करे जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक असांजी मेहरापुर में मौजूदु आहे, जिते हफ़्ते जा 6 ॾींहं जेको आहे सो मौजूदु हूंदा आहियूं, जिते जुमो छंछरु आचरु स्पेशली चेकअप फीस असां फ्री जेको आहे सो रखी आहे, सूमर अरबा ख़मीस जेको आहे सो ॿिया ॾींहं मौजूदु आहियूं, अंगारे जो ॾींहुं असांजो क्लिनिक बंदि हूंदी आहे, ख़ासि करे ईअं बि थींदो आहे जो अंगारो असांजी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे, लेकिन खोड़ सारा असांजा जेके पेशंट आहिनि उहे अंगारे जे ॾींहुं बि अची करे असांखे कॉल कंदा आहिनि त असां तव्हांजो वेट पे कयोसीं, लेकिन हिकिड़ो ॾींहुं बि हफ़्ते में मोकल हर कंहिंजे लाइ रेस्ट ज़रूरी हूंदी आहे, याकिम
1: साहिब काफ़ी ईअं सम्झंदा आहिनि त जुमो मोकल हूंदो,
0: इन जे करे
1: ईअं बि थींदो आहे, पर तव्हां वरी जुमे जो हिकिड़ो भलारो ॾींहुं सम्झी करे, ऐं बाक़ी इहो हिकिड़ो सुठो अमल बि आहे त उन ई ॾींहुं तव्हां हिकिड़ो मिसाल पंहिंजी या तव्हांजी कंपनी आहे उहा सदको कॾहिं थी या खेर कॾहिं थी या उन्हनि जे हिकिड़े पंहिंजे सोच मुताबिक़ त जेकी चेकअप फीस आहे उन्हनि फ्री कई आहे सिर्फ़ु आवाम जी ख़िदमत जे लाइ, जेके ग़रीब माण्हू आहिनि नथा पहुची सघनि पिया उहे लाज़मी अची करे यानी हुतां दवा वठी सघनि या पंहिंजो चेकअप कराए सघनि, छो जो अॼुकल्ह इहो आहे त जेको सिर्फ़ु कंहिं बि डॉक्टर वटि आम वटि वञे थो त उनजी खाली चेकअप फीस है 400 रुपया 500 रुपया वा डॉक्टर तो इन मेल 2000 का भी क्रॉस कर 1500 भी जो सो खाली चेकअप की जी फीस होंगी है उसे था वन पा सो ट्रीटमेंट अं अलग होंगी है मेडिसिन अलग होंगी है जी दोस्त फेसबुक जरिए गडन उन्होंने के भी खुश आमदी चवंदा हलंदी उन्हें जो मोहब्बतू आन शाल उ भी आबाद होजन खुश होजन असाजे जे दोस्त हैं तमाम घनी महरबानी एक फेसबुक जो असो तमाम बेहतरीन एक सिंध जो वो सिंगर भी है माशाला असो तमाम बेहतरीन दोस्त भी है फ़कीर एजाज अली खास खिली साहब तमाम असाजे दिल मोकिल हार्ट्स मोकिल ये असो
0: प्यार
1: प्यार है मोहब्बत है मोहब्बतू आन यानी मोहब्बत न हजार साई तालब मौला वांगुर तो मुंह वट मोहब्बत जा आहन मणे सो एजाज साहब जी भी दिल में असा जे लाय मना मोहब्बत जा मणे आहन
0: मणे
1: सो यही असि ओ चई सकन दा गोठ वलीदाद खान लुंड खान मोहम्मद सिद्दीक लुंड भी फेसबुक जरिए अस सा गड आहे एजाज साहब असा के सलाम चे पे वालेकुम अस्सलाम मुजा भा शाल आबाद जो खुश जो असा जो भी दुआ असा गड आहन दोस्तों आके बुधाईदा हालो त असा स्टूडियो में मौजूद आहन सिंध जा मशहूर व मारूफ डॉक्टर प्रोफेसर मंजूर हुसैन मेमन साहब जी एक मुल्की सतह जहाँ डॉक्टर आन डॉक्टर साहब जो खास मेहरबानी मोहब्बत आन जो पैं कीमती वक्त कढ़ी कर असाजे स्टूडियो में अचन था असाजे अवाम के जी असा बुधंदड़ उन्होंने यानि नॉलेज दियण के लिए जान पहुँचाने के लिए सेहत हसास प्रोग्राम होंद है जो आउं दोस्तन यो ही चवंदो आहियां भाई तव्हां ॿियनि दोस्तनि खे मौको ॾियो जो लाज़मी यानी इन जे ॿुधण सां काफ़ी अहिड़ा दोस्त आहिनि जिन खे हिकु फ़र्क़ु बि पवंदो आहे काफ़ी डॉक्टर साहिब जे ॾस ते सिहतयाब थी वेंदा आहिनि काफ़ी वरी डॉक्टर साहिब वटि अची वञनि था या उन्हनि खे मौको मिलंदो आहे हिकिड़ो कंहिं सुवाल पुछण जो या सिहत बाबति मालूमात जो त असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहिबु डॉक्टर साहिब जो ख़ासि महिरबानी तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल बि शामिल थी सघो था 0301-2196-851 0301-2196-851 त डॉक्टर साहिब खे असीं भलीकार बि चवंदासीं डॉक्टर साहिब कॉल जी तरह वेंदासीं त ॾिसूं किथां जो कॉलर असां सां गॾु आहे अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम साईं
1: साईं मुंहिंजा केर सां पियो ॻाल्हाए ख़ुश आमदी चऊं था सोलंगी साहिब ठीकु आहियो तबियत ठीकु आहे
2: तकलीफ़
1: आहे को मसलो ई न आहे पोइ अव्हां जे लाइ इहो वेझो आहे मां बधेरो जतोई या मेहरापुर एॾो परे आहे ई कोन 15-20 किलोमीटर जे डिस्टेंस ते आहे तव्हां आसानी सां हलिया अचो सुभाणे ई डॉक्टर साहिब खे ॾेखारियोसि इलाज करायोसि अलाह सां जी ज़ात शिफ़ा ॾियण वारी आहे को मसलो ई न आहे इनशाला सिहतयाब थी वेंदो
0: बिल्कुल मादे जे हवाले सां दोस्त खे प्रॉब्लम आहे ऐं हिन वक़्तु जेकी पोज़ीशन आहे हर ॿियो शख़्स मादे जी बीमारियुनि में मुबतला आहे उन जूं खोड़ सारियूं वजूहात आहिनि हिकु त जेको आहे सो असांजो पाणी जेको आहे सो ख़राबु थी चुको आहे उन खां पोइ जेको आहे सो जेके ॿाहिरि गर्म अशिया जेको आहे सो या जेके हार्ड शयूं असां इस्तेमालु कयूं था बर्गर वग़ैरह या बारबिक्यूज़ वग़ैरह अहिड़ियूं शयूं गर्म शयूं चांहि जो इस्तेमालु घणो स्मोकिंग स्ट्रेस निंड जो सही न हुजणु इहे खोड़ सारियूं वजूहात आहिनि मादे जे बीमारियुनि जो सबबु बणिजी वियूं आहिनि इन जे करे पहिरियों त इन्हनि शयुनि ते कंट्रोल करणु घुरिजे उन खां पोइ पाणी जो इस्तेमालु अवां ज़्यादा कयो ऐं उन खां पोइ विटामिन सी जो इस्तेमालु ज़्यादा कयो खीर जो इस्तेमालु ज़्यादा कयो फ्रूट्स इस्तेमालु कयो ॾही इस्तेमालु कयो सौंफ़ हर खाधे खां बाद में जेको आहे सो तव्हां जेको आहे सो चुटकी इस्तेमालु कंदा कयो उन सां छो जो हीअ हिकिड़ी कुदरती शयूं आहिनि ऐं पहिरें तव्हां ॾिसो त को बि इलाजु मौजूदु न हूंदो इहे ई शयूं हूंदियूं ऐं असांजा वॾा बि असांखे इहे शयूं ॿुधाईंदा हुआ ऐं इहे शयूं इस्तेमालु करण सां ई अव्हांखे रिलीफ़ मिली सघंदो ॿिए नंबर ते मादे जी बीमारी जे लाइ होम्योपैथिक दवा इस्तेमालु कंदा कयो उहा अव्हांखे आदि न कंदी आहे या छोटकारो ॾींदी आहे
1: हिकु ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे कॉल जे तरफ़ ईंदासीं अस्सलाम वालेकुम साईं मुंहिंजा केर साहिबु पियो ॻाल्हाए ॾाते दस्ती खां ख़ुश आमदी चऊं था ॾातो दस्ती माना तालको ठरी मीर लॻे थो जी जी बिल्कुलु अलाह ताईं ख़ुशि रखंदो छा पुछंदा मुंहिंजा साईं डॉक्टर साहिब खां अच्छा चरियो वारा उन में ॾढ निकितो आहे जीअं रंग हूंदी आहे मुंडी वांगुरु गोली
2: आहे
1: सुभाणे तव्हां डॉक्टर साहिब खे ॾेखारे वञो इन जो इलाजु मौजूदु आहे थोड़ो लागी तो इलाज कराइंदो मासियां तो कुछ ही डीहन में खत्म थी वेंदो खास एडो मसलो ना है या की जो अड़े किस्म जा डॉक्टर साहब बुधाइंदो ता के पाण ही डॉक्टर साहब अक्सर करे प्रोग्रामन में जिक्र कंदो आए 2022 का बाद में खास तौर ते स्किन जा जके चमड़ी जो बीमारियों डड थियो खारिश थी में इजाफो थियो आए अलहमदुलिल्लाह डॉक्टर साहब जेको भी आयो अलहमदुलिल्लाह वो सेहतयाब थियो इन में छुटकारो पातो थई बुधो एफएम बुधो वधिक डॉक्टर साहब वहां के बुधाइंदो ठीक है मुझे साईं जी डॉक्टर साहब
0: जी सही बिल्कुल तुम दुरुस्त चे तो 2022 का पे तो जो सो स्किन जो बीमारियों हैं वो तमाम घणी वधी वयो हैं इन वक्त जो सो खोड़ सारा फंगल इन्फेक्शन्स जहाँ अदे हिंसर वार चिरे की गाल कई जैसे अस एलोपेशिया डिजीज चवंदा आयो या उनके फंगल भी चई सके तो उनकी ट्रीटमेंट भी कामयाब ट्रीटमेंट असट होम्योपैथिक में जो है सो मौजूद है हूँ इतने आम तौर पर थो ये इन अदे भी जरूर ये टोटका इस्तेमाल कराया हों हजमन वट वा उतने जो है सो ये कट डारी ब्लड कढ़ाई जो है सो वो वरंद एरिया इन्फेक्टेड थी वी है बल्कि जो है सो अंदर इन्फेक्शन घणो थींदो आहे वायरल इन्फेक्शन थी वेंदो आहे सो इन जे करे जेको आहे सो मां उन्हनि भाइरनि खे अदरनि खे या अजड़ियुनि खे झलींदासीं त महिरबानी करे अहिड़नि जेको आहे सो वटि तव्हां न वञो अहिड़ियूं शयूं इस्तेमालु न कयो जंहिंसां तव्हांखे बजाए फ़ाइदे जे नुक़सानु थी वञे छो जो ॿिया घरेलू टोटका खोड़ सारा हूंदा आहिनि इहे कट ॾियारणु दंभ ॾियारणु इहो तमामु जेको आहे सो नुक़सानदेह हूंदो आहे यानी बाक़ी तव्हां जेको आहे सो घरेलू ॾिस जे हवाले सां जीअं लसन आहे यानी सिंधी थूम आहे त थूम खे कुटे पेस्ट करे ऐं उहा उन जॻह ते लॻाए सघो था इनशाला ताला उन सां बि अलाह ताला उन में शिफ़ा ट्रीटमेंट त तमामु ज़रूरी आहे हुनजे लाइ ट्रीटमेंट त बिल्कुलु हुनखे खपे होम्योपैथिक जे हवाले सां कामयाबु ट्रीटमेंट असां ॾींदा आहियूं जेकी अलाह ताला जी महिरबानी सां बिल्कुलु जेको आहे ठीकु थियो महसूसु बि न थींदो आहे त कॾहिं हुनखे इहा तकलीफ़ थी हुई
1: प्रोग्राम में एक बियो कॉलर मौजूद है 0301-2196-851 प्रोग्राम सेहत की गाल जी मेहरापुर एफएम 94 जो आवाज़ अवज समात में पहुंचे पो असाज स्टूडियो में मौजूद प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब सिंध जहाँ मशहूर व मारूफ डॉक्टर डॉक्टर जो कम से कम में 30 साल तजुर्बो है 25-30 साल तजुर्बो है जो डॉक्टर साहब जैसे शुरुआत में 2021 में इतने असं मेहरापुर में आयो तो उन टाइम में डॉक्टर साहब जो 25 साल तजुर्बो हो तो 5-6 साल गुजरी आए यानी इन साल इन दफे चंदुस तो डॉक्टर साहब जो एक्सपीरियंस है वो 30 साल मथे है क्रॉस कर प्रोग्राम में कॉल की तरफ हलूँ भाई कॉलर लाइन से मौजूद अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम
1: साईं मुझा केर साहब पे गलाए
3: अब्दुर्रशीद खान रो खानवान का
1: खुश आमदी चौं था खानवान जे भा के छा पुछंदा मुझा साईं डॉक्टर साहब का
3: डॉक्टर साहब बा परो मर्ज कयल आ या सा जे मुखे आए फालज जे 13 साल हले दो
1: जी मुझा साईं
3: अर्ज कयो पहिरियों में जेको आहे अर्ज़ इहो आहे त हाणे इन जेको इलाज थी सघे त ब्लड प्रेशर बि सही आहे बाक़ी ॿियो को मसइलो को बि न आहे न शुगर आहे न वरी जेको आहे ब्लड प्रेशर आहे
1: अलहमदुल्ला इन जो इलाज भी थी सके तो तांखे त 13 साल आहे पर को अहिड़ो माण्हू 16-17 साल वारो भी अलहमदुल्ला डॉक्टर साहब घुमायो आहे बाक़ी अल्लाह ताला जी हिकिड़ी जेका मैन्युफैक्चर आहे उन जी केर बि नथो करे सघे हथ कम नथो करे इनशाला इन में तव्हांजो इहो सुन थियल हूंदो इनशाला तव्हां डॉक्टर साहब खां रेगुलर मुसलसिल इलाज करायोसि अलाह में उमेद आहे रिज़ल्ट मिलंदो तव्हांखे ईअं ई हिकिड़ो दोस्त डॉक्टर साहब वटि ईंदो गंभड़ जो उहो बि ईअं हुनजो बि हथ बि कम न कंदो हो बांह मथे बि न करे सघंदो अलहमदिल्ला डॉक्टर साहब वटि उहो माण्हू हाणे ईंदो आहे त चवंदो आहे साईं मुंहिंजो हथ बि कमु करे थो आङरियूं बि कमु कनि थियूं हाणे गंभट मां छह जेको छॾे करे हिते अचे थो डॉक्टर साहिब वटि इन मां अंदाज़ो लॻायो त अल्लाह ताला जी का देन आहे अल्लाह ताला जी तरफ़ां का शिफ़ा आहे तॾहिं माण्हू अचनि था डॉक्टर साहिब वटि एतिरी रश ॾिसो हूंदी आहे पर इहे डॉक्टर साहिब जो महिरबानी आहिनि असांजे करे FM ते अचे थो ऐं अव्हां जहिड़े दोस्तनि खे मालूमात ॾियण जे लाइ भई हिन बीमारी खां हीअं बची सघिबो हिन जो ई इलाज आहे हिन जो ई इलाज आहे ठीकु आहे साईं वधीक FM ॿुधो डॉक्टर साहिब तव्हांखे ॿुधाईंदो जी सर डॉक्टर साहिब
0: हाँ जी सर बिल्कुल जैसे अदे पहिरियां भी पुछो है तो असो पहिरियां भी अदे के यही जवाब होंद तो रूबरू अचो हाँ भी अदे के यही चंदी तो बिल्कुल रूबरू अचो छो जो फॉलेज पैरालाइस यानी पैरालाइज्ड एक जो बाह थी वे यानी उनमें खोड़ सारी वजूहत होंदियों ब्लड सर्कुलेशन खत्म थी रगू डैमेज थी वन तो जैसे एक शिफा अल्लाह ताला जे हथ में आहे, पर अहिड़े क़िस्म जा जॾहिं केसिस असां वटि आया आहिनि ईंदा आहिनि त हुननि खे जॾहिं दवाऊं ॾींदा आहियूं त अल्लाह ताला जी महिरबानी सां हू बिल्कुलु ठीकु थी वेंदा आहिनि। हाणे बि अंडर ऑब्ज़रवेशन असां वटि ॿ चारि अहिड़ा पेशंट आहिनि, पर अल्लाह ताला जी महिरबानी सां रिसेंटली अॼु बि हिकिड़ो पेशंट आयो जंहिंजो लेडीज़ पेशंट हो, जंहिंजो बिल्कुलु इहो हिकु बांह जेको आहे हुन जी सुन हुई, लेकिन हाणे हुन जी बांह उहा हल्की थी आहे ऐं हुन में इम्प्रूवमेंट अचणु शुरू थी वई आहे। इहो अल्लाह ताला जा लख अहसान आहिनि। सो अधे खे ॾिसी ॾींदासीं ज़रूरु, जेको आहे ज़रूरु भरू ॾेखारियो।
1: हीउ वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो, त हलूं था कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। गदगद जो ॿुधंदा रहो जीअं मेहरापुर FM 94।

0: ख़बर ना है, मैं हर वक्त तेरी थकेला थकेला शौं दी आया।
1: तू खाइंदी चाहे स्कूल में बाकी बारन जी मंझन जी मानी डिठिया है।

0: केन है त तव्हां हुन खे रोज अंडा खाराइजो, मंझंदि जी मानी में सूफ ॾिजो, त जीअं स्कूल में मुंहं घुर थकियल थकियल न हुजे।
1: ॿारनि में कमज़ोरी अक्सर ज़रूरी ग़िज़ाई जुज़नि जी घटिताई हूंदी आहे, जेका उन्हनि जे सिखण जी सलाहियत में रंडक बणिजे थी। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: सॼो ॾींहुं ॾिसां थी तोखे परेशान घुमंदी रही आ, पहिरियों भेरो मां थी रही आहीं न, मुंहिंजो बि इहो ई हाल हो।
3: ख़बर न आहे तव्हां ही सभु कुझु कीअं कयो नानी, मां त एतिरो थकी थी पवां, छा कयो।

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: मेरा नाम डॉक्टर सादुल, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ। एनएच पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चे।
5: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेरिन

0: लगानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाइपर, राप्ती जिलाए, आसिम ही, 07-35-92-102।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर, FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
5: कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफो बीहर वहां सबनी सजनन के खुश आमदीद चौं था। प्रोग्राम सेहत जी गाल जी मेरा पर FM 94 जो आवाज सवां जे समात नि पहुंचे पियो। असन जे स्टूडियो में मौजूद सिंध जो मशहूर मारूफ डॉक्टर प्रोफेसर मंजूर हुसैन मेमन साहब, जेके सिंध जा मशहूर मारूफ डॉक्टर आहिन। डॉक्टर साहब हर अरबा, खमीस, जुमो, छंछर, आचर आई सूमर ते सुबह जो 10 खां शाम 5 वगे तई जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन पोटरा पेट्रोल पंप कोतली कबीर रोड मेहरापुर में मरीजन जो इलाज कन्ना है। डॉक्टर साहब हर अरबा, खमीस, डॉक्टर साहब हर जुमे, छंछर आई आचर ते, यानी हफ्ते जा 3 दिन चेकअप फीस बिल्कुल मुफ्त होंदी आहे। डॉक्टर साहब यानी अवां के दवा स्टोर ते वठणी पवंदी, बाकी जेकी चेकअप फीस आहे उहा डॉक्टर साहब जी तरफा कंपनी तरफा बिल्कुल मुफ्त होंदी आहे। जीअं असां प्रोग्राम में ज़िक्र कयोसीं पहिरें हिसे में, त काफ़ी अहिड़ा मरीज़ आहिनि जेके परे परे खां डॉक्टर साहब वटि अचनि था, ॿी जॻह तां लाइलाज थी करे कराची मां, लाड़काणे मां, सकर मां, हैदराबाद मां लाइलाज थी करे डॉक्टर साहब वटि ईंदा आहिनि। जेके अहिड़ो ई पेशंट उन जा व्यूज़ अवां ताईं पहुचायूं था, जेको लाड़काणे खां, सखर खां, सिंध जे मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो इस्पताल मां थी करे जॾहिं डॉक्टर साहिबु वटि आयो ऐं उहो आयो पीर ॻोठ खां, त उन जा व्यूज़ अचो ॿुधऊं था। अलहमदिल्ला अलाह ताला जे हुकुम सां उहो शिफ़ायाब जेको थींदो आहे उहो ॾाढो सेटिस्फाई हूंदो आहे, मुतमैन हूंदो आहे, त पंहिंजा व्यूज़ ॾींदो आहे साईं या मुंहिंजे तरफ़ां ॿियनि ताईं बि पहुचायो। जीअं मूंखे अलाह ताला शिफ़ा ॾिनी आहे त ईअं ई कंहिं ॿिए जो बि भलो थियो अलाह थिए ऐं अलाह सां उन्हनि खे बि शिफ़ा अता फ़रमाए।
6: तकलीफ़ छा हुई? तव्हां मुंहिंजी क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक मेहरापुर आया हो
7: साईं? वात सफ़ा पकलो, मानी न खाई सघां, का शइ न,
6: वात में छाला हुया, ॿी ट्रीटमेंट कराई, फ़र्क़ु कोन पियो, खाई पी कोन पिया सघो, ॻाल्हाए सघो पिया, ॻाल्हाए बि कोन पिया सघो। हाणे जेकी दवा ॾिनीसीं अलहमदिल्ला, हुन मां अव्हांखे केतिरो फ़र्क़ु पियो?
7: फ़र्क़ु पियो साईं, बिल्कुलु।
6: केतिरो आहे हींअर खाई सघो था?
7: खाई सघंदा,
6: ॻाल्हाए बि सघो था अलहमदिल्ला, ॻाल्हाए न पिया सघो बिल्कुलु। पर मां सिर्फ़ु असांजो तव्हां खां पुछण जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त असांजो जेको क्लिनिक आहे त हिकिड़े क़िस्म जी असां पंहिंजी प्रोग्राम हूंदो आहे असांजो, उन उन हवाले सां असां पंहिंजे ॿुधंदड़नि ताईं हिकिड़ी इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस ॾींदा आहियूं त तव्हां जेको ॿियो इलाज आहे उन मां अव्हांखे एतिरो फ़र्क़ु कोन थो पए या हूंदा आहिनि, पर हिन इलाज में होम्योपैथिक माण्हुनि खे शायदि एतिरी अञा अवेयरनेस ॼाण न आहे। इन हवाले सां असां उन्हनि ताईं इहा सिर्फ़ु ॼाण पहुचाईंदा आहियूं त हिन इलाज करण सां अव्हांखे केतिरो फ़र्क़ु पए थो। तव्हांजे साम्हूं आहे जेको ॿुधाए थो पियो पंहिंजे वात में असांजी तकलीफ़ हुई, छो जो मुंहिंजो कोर्स अञा रहियल हो जेको हींअर अदो वठे थो पियो, त उन सां हुनखे फ़र्क़ु पइजी वियो आहे, जेको ॿी दवा मां हुनखे फ़र्क़ु न पियो। इन हवाले सां साईं इहा ई ॻाल्हि आहे?
7: हा साईं इहा ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु।
6: तव्हां दवा मां मुतमइन आहियो? बसि हाणे अवां ॿियनि ॿुधंदड़नि खे कहिड़ो असांजी क्लिनिक ते प्लेटफॉर्म
7: माशाल्लाह दवा भरी आहे, बिल्कुलु ॿियनि बि वठी फ़ाइदो टको बि न पियो,
6: जी
7: इन खां वधीक पैसा ख़र्चु कया आहिनि, माशाल्लाह दवा बि भली आहे, फ़ाइदो
6: ख़र्चु बि घटि थियो, फ़र्क़ु बि पइजी वियो, ॿियो बि नुक़सानु कोन पियो। असां वटि न थैली हुई, न सुई हुई, ऐं सिर्फ़ु दवा हुई ऐं होम्योपैथिक दवा। वॾी महिरबानी, थैंक्यू,
5: तमामु बहितरीन। डॉक्टर साहिबु ॾिसो, जेको माना अधो हिकिड़ो पाण व्यूज़ ॾिए थो, पाण ॻाल्हाए थो, पाण हिकिड़ो ॿुधाए थो, त मूंखे माना एतिरो आहे ऐं यकीननि ईअं

0: दोस्तनि खे चवंदुसि त महिरबानी करे अहिड़ी सोबत खां ऐं अहिड़ी जेको आहे सो कमनि खां पासो कनि ऐं जेको आहे सो यानी हिकिड़ियूं अलाह ताला जूं ॿियूं कुदरती खोड़ सारियूं शयूं आहिनि जेके जेको आहे सो इस्तेमालु करण सां तव्हां तंदुरुस्तु रही सघो था ऐं तंदुरुस्तु रहण सां गॾो गॾु तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी खे ख़ुशगवार जो ज़िंदगी तमामु ख़ूबसूरत आहे ऐं अलाह ताला जी हिकिड़ी अमानत आहे उनखे तव्हां ख़ूबसूरत तरीक़े सां जेको आहे सो गुज़ारे सघो था ऐं तव्हां हिकिड़ी कुदरती शयूं जेको आहे इस्तेमालु करे सघो था सौंफ़ हर खाधे खां बाद में चूसण तमामु हिकिड़ी बहितरीन जेको आहे आदत आहे इन सां मादो जो सही रहे थो जंहिंजे वात में स्मेल रहंदी आहे जेकॾहिं चाहे थो त जेको आहे सो स्मेल ख़तमु थिए त हिकु त फूदने जो इस्तेमालु करे सघे थो नंढिड़ो इलायची यानी नंढो फोटो जेको आहे सो इस्तेमालु करे सघे थो उन सां बि काफ़ी असरात पइजी वेंदा आहिनि या सोडा जेको आहे सो सोडा हूंदी आहे उहा उनजा गराड़ा करे सघनि था हेड जे पाणी में विझी उनजा गराड़ा करे सघनि था इहे काफ़ी अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि जेके अव्हांजे जेको आहे सो तबियत खे रखंदियूं आहिनि ऐं गॾु न गॾु कुदरती हिकिड़ो सो कुदरत जो हिकिड़ो पंहिंजो निज़ाम आहे कुदरत जेकी सुनत ते असां जेकॾहिं हलंदासीं त कॾहिं बि बीमार न थींदासीं असां रोज़ानो जेकॾहिं असां जेको आहे सो हिकिड़ी मसवाक कंदासीं त मसवाक करण सां त अलाए केतिरियूं बीमारियूं जेको आहे सो दूरि थींदियूं अवांजी अल्सर अवांजी कैंसर अवांजी जेके बि जेको आहे सो यानी पेट जूं बीमारियूं आहिनि उहे सभु दूरि थींदियूं ॾंदनि जूं जेके बि जेको आहे सो बीमारियूं आहिनि उहे दूरि थींदियूं अवां ॿी पेस्ट वग़ैरह इस्तेमालु कंदो आहियां कंदा आहियो त इन सां सिर्फ़ु अव्हांजी स्मेल ख़तमु थींदी हूंदी या को बैक्टीरियाज़ लेकिन मसवाक करण सां अव्हांजा जेको आहे सो न सिर्फ़ु स्मेल ख़तमु थिए थी या जेको आहे सो दाग़ ख़तमु थियनि बल्कि अव्हांजा ॾंद बि मज़बूत थियनि था उनमें भरपूर हिकिड़ो कैल्शियम हूंदो आहे जेको अव्हांखे जेको आहे सो ताक़त ॾिए थो ॾंद अव्हांजा मज़बूत थींदा आहिनि ॻाल्हाइण लाइ खोड़ कुझु आहे लेकिन टाइम बि जेको आहे सो ऐं कॉल्स वग़ैरह बि आहिनि इनजे करे जेको आहे सो वधीक कंहिं दोस्त खे इन बारे में कुझु बि पुछणो आहे या इलाज जे बारे में त असांजी क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक हफ़्ते जा छह ॾींहं मौजूदु ऐं एड्रेस वग़ैरह त उन ते तव्हां बिल्कुलु अचो
1: डॉक्टर साहिबु पहिरियां कॉल जी तरफ़ हलूं पिया अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जी बाबा केरु साहिबु ॻाल्हाए पियो
2: मोमिन बुर्दी पियो ॻाल्हायां शहर मेरापुर खां
1: जी मुंहिंजा साईं छा पुछंदा डॉक्टर साहिबु खां
2: साईं मुंहिंजो नंढड़ो भाणे जो आहे ॿिनि साल उमिरि अथसि
1: जी जी अदा
2: जेको खाधो खाए थो पेट फूकजी थो वञेसि ऐं उठी करे बदबू थी थिएसि
1: तव्हां ॾिसो मेहरापुर शहर में आहियो डॉक्टर साहिब बि मेहरापुर शहर में मौजूदु आहे आसानी सां तव्हां डॉक्टर साहिब वटि वञी सघो था निंडे खे वञी ॾेखारे अचोसि डॉक्टर साहिब खां इलाज करायोसि इनशाला अॼु तव्हां कॉल कई आहे वरी जॾहिं न 15 ॾींहं 8 ॾींहं कॉल कंदव त उनजो रिज़ल्ट तव्हां पाण ॿुधाईंदव त एतिरो निंडे खे फ़र्क़ु पइजी वियो
2: आहे
1: अॼु तव्हां ॾींहुं नोट करे छॾियो सुभाणे डॉक्टर साहिब खां दवा वठो वरी 8 ॾींहं कॉल करे मूंखे प्रोग्राम में तव्हां पाण ॿुधाईंदो हिन ई नंबर ते साईं डॉक्टर साहिबु असां नंढड़े जी दवा वरितीसीं डॉक्टर मंज़ूर साहिब खां असांखे एतिरो रिज़ल्ट मिलियो आहे एतिरी उमेद आहे अलाह ताला में वधीक एफ एम ॿुधो डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो रूबरू सुभाणे वञी ॾेखारियोसि बिल्कुलु महिरबानी जी डॉक्टर साहिबु
0: बिल्कुलु असां ॾिसो हिकु हर हिकु जे सर्जरी शुरूआत के प्रोग्राम में चयोसीं त हर ॿियो शख़्स मादे जी बीमारियुनि में मुबतला आहे ऐं इन बारे में तव्हांखे ॿुधायोसीं दवा त मां स्मेलिंग अचे थी पेट जा जेकी बि तकलीफ़ूं आहिनि इन जो इलाजु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु होम्योपैथिक में बहितरु आहे होम्योपैथिक ॾिसो जेकी बि ॿी इलाजु आहे उहो सिर्फ़ु आरज़ी हूंदो आहे तव्हांखे एसिडिटी थींदी तव्हां कैप्सूल खाईंदो वक़्ती तौर ते तव्हांजी एसिडिटी ख़तमु थींदी लेकिन उन जा साइड इफ़ेक्ट ॿिया खोड़ सारा आहिनि जिगर ते आहिनि अव्हांजे जेको आहे सो सेक्स ते आहिनि ऐं अव्हां जी नज़र ते आहिनि अव्हांजे दिमाग़ ते आहिनि अव्हांजे जिगर ते आहिनि इन जे करे अव्हां इन्हनि सभिनी शयुनि खां जेकॾहिं बचणु चाहियो था त सिर्फ़ु होम्योपैथिक तव्हां रुजू थियो होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमालु कयो उन जो को बि साइड इफ़ेक्ट कोन्हे को ऐं जंहिं शइ जो साइड इफ़ेक्ट न हुजे ऐं ॿिए इलाज खां सस्ती हुजे ऐं बहितरु हुजे त मुंहिंजे ख़्याल में त उहो जेको आहे सो रस्तो बहितरु हूंदो आहे इन जे करे होम्योपैथिक हिन वक़्तु सॼी दुनिया में जेको आहे सो मशहूरु आहे ऐं हिन वक़्तु उन होम्योपैथिक खे तमामु हिकिड़ा जेको आहे सो यानी मां हर उहो फ़र्दु जेको ॼाण रखे थो त उहो होम्योपैथिक ई इस्तेमालु करे थो
1: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि थी मेहरापुर एफ एम 94 जो चवंदो आहियां पर जंहिं वटि बलोचिस्तान जा पेशंट राजस्थान जो बि आहे इवन ॾिसो देरा बुक डॉक्टर साहिब बलोचिस्तान खां ईंदा आहिनि डॉक्टर साहिब वटि पेशदार इन मां हिकिड़ो कॉमन आहे त सिंध में पर इहो बलोचि ईअं ई आहे यकीन प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहिबु हर अरबा ख़मीस जुमो छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं पेट्रोल पंप

0: तकलीफ़ आहे, दम आहे, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जा सभु कामयाबु इलाज कंदा आहिनि। औरतुनि या मर्दनि जे पोशीदा बीमारियूं, मर्दनि जूं जेके पोशीदा बीमारियूं हूंदियूं आहिनि, असीं ख़ामोश लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं, उन या औरतुनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाज कंदा आहिनि। इन खां अलावा कंहिंखे हेपाटाइटिस बी आहे, सी आहे, केॾो बि पुराणो संधनि जो सूरु आहे, कुंदरग जो सूरु आहे, जोड़नि जो सूरु, इन खां अलावा ॿियूं जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियूं आहिनि, जेके नंढा ॿार आहिनि जिन जो कदु नथो वधे पियो, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाज कंदा आहिनि। डॉक्टर साहिबु, आख़िर में अव्हां कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा असांजे मौज़ ॿुधंदड़नि खे?
1: साईं, सभ खां पहिरां सभिनी जी वॾी महिरबानी, असांजे प्रोग्राम खे लाइक कंदा आहिनि ऐं ॾिसंदा आहिनि। प्रोग्राम में जेके अच्छा पैगाम इहो ई आहे त हर कंहिंखे भाउ खे जेको आहे सो दोस्तनि खे इहो ई जेको आहे सो अर्ज़ु आहे त पंहिंजे पीउ माउ जी ख़िदमत कंदा करियो ऐं उन्हनि जो वध में वध ख़्यालु रखो। वॾी महिरबानी,
0: तमामु बहितरीन। दोस्तो, प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जो बि वक़्तु पहुचे थो, जॾहिं बि दुआउनि जे लाइ हथु खणो त असांखे पंहिंजे दुआउनि में ज़रूरु यादि रखिजो। ॿिए प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान, अलाह वाही, साथ सलामत, सिंध सलामत।

0: KTN News.
1: ज़ुल्हज जो चंड ॾिसण लाइ मर्कज़ी चंड ॾिसणी कमेटीअ जो इजलास कराचीअ में शुरू। मेट ऑफिस में चंड ॾिसणी कमेटीअ जे चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद जी सदारत में इजलास हिन वक़्तु जारी आहे। इजलास में कमेटीअ जा मेंबर, मौसमियात खाते ऐं स्पार्को जा माहिर बि मौजूदु। पाकिस्तान ॾखिण एशिया जी तारीख़ ऐं नक्शे तां न ख़तम थियण वारो हिसो आहे। भारतीय आर्मी चीफ़ जो चिड़ ॾियारींदड़ बयान ज़ाहिर करे थो त भारतीय क़यादत पाकिस्तान जी वजूद वारे तसवर खे क़बूल नथी करे सघे। ISPR जो भारतीय आर्मी चीफ जी हाणोके इंटरव्यू में बयान ते रद अमल। ISPR मूजिब भारत खे पाकिस्तान जी अहमियत तस्लीम कंदे पुरमन ॻाल्हियुनि गॾियल बका जो रस्तो अख़्तियार करणो पवंदो। हक़ जी जंग दौरान भारत जी मायूसी समूरी दुनिया में वाखी थी आहे। पाकिस्तान पहिरियां ई आलमी सतह ते अहम मुल्क ऐं हिकु तस्लीम थियल एटमी ताक़त आहे। ज़िमेवार एटमी रियासतूं साहिब ऐं स्ट्रेटजिक संजीदगीअ जो मुज़ाहिरो कनि थियूं। भारतीय क़यादत ॾखिण एशिया खे हिकु ॿिए बुहरान या जंग तर्फ़ धिकण खां पासो करे।

सेंट्रल कमांड जे सरबराह एडमिरल ब्रेड कोपर चयो आहे त पाकिस्तान दहशतगर्दी जी खात्मे लाइ एतमाद जोगो हिसेदार आहे। अमेरिका जे सेनेट कमेटीअ खे ब्रीफिंग ॾींदे सेंटकॉम सरबराह चयो त पाकिस्तान सां मज़बूत फ़ौजी हिसेदारी सबबि दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ वॾी कामयाबी मिली। गॾियल कामयाबियूं पाकिस्तान ऐं अमेरिका जी पुराणी दोस्ती ऐं गॾियल अज़म जी सिधीअ री तकासी कनि थियूं। दहशतगर्दी वारनि सरगर्मियुनि ऐं इलाक़ाई सिक्योरिटी ख़तरनि सबबि अफ़गानिस्तान वॉशिंगटन जे ध्यान जो महवर आहे।

सिंध के अठ जिले में मकानी इदार की नंढी चूंड लाए पोलिंग जो अमल मुकम्मल थियण बाद गैर सरकारी ए गैर नतीजा अचण शुरू। हैदराबाद में यूसी 49 के वार्ड 2 पीपुल्स पार्टी उम्मीदवार आलम खान 325 वोट खणी अगते। यूसी 43 के चेयरमैन वाली सीट से वोटन की गणप जो अमल जारी। सखर के यूसी नसीराबाद में वाइस चेयरमैन की सीट ला पीपुल्स पार्टी उम्मीदवार लियाकत अली 275 वोट खणी अगते। जेयूआई के कारी खादिम हुसैन 170 वोट खया। निंदापुर वार्ड 3 में जेयूआई जो इसरार कलवड़ 624 वोट खणी अगते। आजाद उम्मीदवार अब्दुल गफार कलवड़ 144 वोट हासिल कया। ठारू शाह के यूसी मोलण के जिले काउंसिल की सीट पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार रोशन विस्तड़ो 453 वोट खणी अगते। आजाद उम्मीदवार अब्दुल कदीर विस्तड़ो 217 वोट खया। नौशेरो फिरोज के पोलिंग स्टेशन अजमत देरो से पीपुल्स पार्टी उम्मीदी ए आजाद उम्मीदवार 78 वोट हासिल कया। केन शाह के यूसी बुरला के चैन पोलिंग स्टेशन के नतीजन मूजिब जद बुरलो 942 वोट खणी अगते। जीडीए के जुल्फकार फहारो 243 वोट खया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार बीहर खबरदार कंदे चयो आहे त ईरान जल्द खां जल्द जंग बंदी करे वठे त उन जे हक में बेहतर थींदो। जेकॾहिं जल्द अमन वाइदो तय न थियो त ईरान खे तमाम खे मोहरिड़ो मुसावा कई आहे त अमरीका ऐं इसराइल जे ईंदड़ हफ़्ते ईरान ते हमले जी तयारी मुकमल करे वरिती आहे। हमला ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर शुरू थी सघनि था। अमरीकी अख़बार मूजिबि विच ओभर जे ॿिनि आला उहिदेदारनि चयो आहे त इसराइल ऐं अमरीका मुख़्तलिफ़ अस्करी ऑप्शन्स ते गौर वीचार करे रहिया आहिनि, जिन में ईरान जे फ़ौजी ऐं बुनियादी ढांचे ते वॾी बम्बारी, नार फार्स में वाक़े ईरान जे अहम तेल बरामदी मर्कज़ ख़ारिज आइलैंड ते कब्ज़े ऐं ईरानी सरज़मीन ते कमांडोज़ लाहे मलबे हेठां दॿियल एटमी मवाद खे कब्ज़े में वठणु शामिल आहे। लॻे थो त अमरीका ऐं इसराइल ग़लतियुनि मां न सिखियो आहे। रूस पारां ईरान ते ॿीहर हमलनि वारी ख़बर ते रदेअमल। गॾियल क़ौमनि जे मुआशी ऐं समाजी काउंसिल जे इजलास दौरान रूसी नुमाइंदे चयो त लॻे थो त अमरीका ऐं इसराइल माज़ी जे ग़लतियुनि मां सबक़ न सिखियो आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन
1: रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्द हजरत मौलाना सैयद हौसल मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे, मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 3 85 569 03 00 33 8 55 69।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301
1: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम महराब वारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम महराब नईं मॉडल जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग

मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे

सब्सिडी वठण बावजूद कणक न मिलण ते हुकूमत आपे खां ॿाहिरि। आबादगारनि खां सब्सिडी जा पैसा उगाइण जो हुकुम। डिफॉल्टर आबादगारनि खे 5 सालनि जे लाइ ब्लैकलिस्ट करण जी तजवीज़। मौलाना फज़ल रहमान ऐं पीर पागारे में पीपी मुखालिफ़ इतिहाद खे मज़बूत करण ते इतफ़ाक़। कराचीअ में अहम मुलाक़ात। एंटी करप्शन सिंध पारां मीरपुर ख़ासि जे रेवन्यू रिकॉर्ड में हेरा फेरी कंदड़ वधीक 3 ॼणा गिरफ़्तार। जांच दौरान अहम इंकशाफ़। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे CCE 2024 इम्तिहान जा तकरारी नतीजा मुअतल। रिकॉर्ड सील सेक्रेटरी तलब। लाड़काणे अस्पताल में वियम लाइ आयल औरत ॿार समेत फोत। डॉक्टरनि ते गिफ़लत जो इल्ज़ाम। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा, सिंध में कारोकारीअ जो कारोबार कॾहिं ख़तमु थींदो।

सिंधु हुकूमत पारां सूबे जे 3,36,000 नंढनि आबादगारनि खे कणक पोखीअ लाइ यूरिया ऐं डीएपी जे मद में सब्सिडी ॾियण बावजूद कणक सरकारी ख़रीदारी सेंटरनि ताईं न पहुती। सिंधु हुकूमत पारां कणक ख़रीदारीअ जो 10 लख टन वारो हदफ पूरो न थियण जो इम्कान। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि सिंधु हुकूमत समूरनि डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़तु लिखी हिदायत कई आहे त जिन आबादगारनि डीएपी ऐं यूरिया जे मद में 22,000 रुपया सब्सिडी वठण बावजूद कणक जी पोखाई न कई आहे, उन्हनि खां सब्सिडीअ वारी रक़म वापसि वरिती वञे। उन हवाले सां सिंध जे ज़राअत खाते जे अख़्तियारनि पारां समूरनि डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़तु लिखी उहा हिदायत कई वई आहे त सिंध काबीना जे फ़ैसिले हेठि डीएपी ऐं यूरिया जे मद में रक़म वठण बावजूद कणक न पोखींदड़ आबादगारनि खां सब्सिडीअ वारी रक़म वापसि वरिती वञे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि सिंध हुकूमत पारां सिंध काबीना जे फ़ैसिले तहत 25 एकड़ खां घटि ज़मीन रखंदड़ आबादगारनि खे कणक पोखाईअ लाइ फ़ी एकड़ जे हिसाब सां डीएपी ऐं यूरिया ख़रीदारी जे लाइ 22,000 रुपियनि ताईं सब्सिडी ॾिनी वई हुई। ज़रियनि मूजिबि त कणक पोखी न थियणु ऐं सरकारी ख़रीदारी सेंटरनि ते नंढनि आबादगारनि पारां कणक न पहुचाइण बाद सिंधु हुकूमत पारां सख़्तु फ़ैसिलो कंदे आबादगारनि खां सब्सिडी वापसि कराइण जे लाइ डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़तु लिखियो वियो आहे। उन हवाले सां सिंध सरकार जो चवणु आहे त अहिड़नि आबादगारनि खां न रुगो रक़म वापसि वरिती वेंदी पर ईंदड़ 5 सालनि ताईं खेनि कंहिं बि क़िस्म जी सब्सिडी न ॾिनी वेंदी। JUI सरबराह मौलाना फज़ल रहमान जी राजा हाउस आमंद सिंध में पीपी मुखालिफ़ इतिहाद खे मज़बूत करण जो फ़ैसिलो। हुन ॾसमी काल्ह मौलाना फज़ल रहमान राजा हाउस पहुची GDA जे सरबराह पीर पागारे सां मुलाक़ात कई। मुलाक़ात जे आमद वक़्तु सैद राशिद शाह राशिदी ऐं मौज़ूम आबासी संदसि इस्तक़बाल कयो। जॾहिं त मुलाक़ात दौरान JUI अॻवान मौलाना राशिद महमूद सुमरो ऐं ॿिया अॻवान पिणु मौजूदु हुआ। ज़रियनि मूजिबि मुलाक़ात दौरान सिंध समेत मुल्की सूरत हाल ते गुफ़्तगु थी। मुलाक़ात में सिंध जे GDA ऐं JUI पारां गॾियल हिकमत अमलीअ तहत सिंध सरकार खे टफ़ टाइम ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो। होॾां GDA तर्जुमान मूजिबि मुलाक़ात में JUI क़्यादत पारां सखर में कोठायल अमन कॉन्फ्रेंस में GDA क़्यादत खे शरीक थियण जी दावत ॾिनी वई। मुलाक़ात में सिंध समेत सॼे मुल्क जे तालीमी इदारनि में मंशियात फरोशीअ ते पिण ॻणितीअ जो इज़हार कयो वियो। मीरपुर खास में रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेरा फेरी ऐं जाली खाता ठाहिण जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार थियल मीरपुर खास तालके जे अॻूणे मुख़्तियारकार राशिद जी मुबैना इनकशाफ़नि खां पोइ एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट कार्रवाई कंदे हिकु ॼणे इम्तियाज़ बरफ़त संदसि सोरे ग़ुलाम मुस्तफ़ा खासकेली ऐं पाड़ेसरी मोहम्मद हाशिम खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। ज़रियनि मूजिबि इम्तियाज़ बरफ़त ते इल्ज़ाम आहे त हू हेरा फेरी कंदड़ रेवेन्यू आफ़िसरनि लाइ फ्रंटमैन तौरु किरदारु अदा कंदो हो। एंटी करप्शन खाते जे ज़रियनि मूजिबि इम्तियाज़ बरफ़त 80 रुपियनि जी मिल्कियत पंहिंजे सोरे ग़ुलाम मुस्तफ़ा खासकेली ऐं पाड़ेसरी मोहम्मद हाशिम जे नाले रजिस्टर्ड कराए छॾी हुई। ज़रियनि मूजिबि गिरफ़्तार थियल जवाबदार ते उहो पिणु इल्ज़ाम आहे त हुननि रेवेन्यू अमलदारनि जे मिली भगत सां क़ीमती एराज़े जा जाली खाता ठाहिया ऐं गॾोगॾु सरकारी ऐं निजी ज़मीनुनि जूं फर्ज़ी दाख़िलाऊं तयारु कयूं हुयूं ऐं गॾोगॾु हुननि सरकारी रिकॉर्ड में रदो बदल करे ज़मीन जी मिल्कियतुनि खे पिणु तब्दील कयो हो। ज़रियनि मूजिबि गिरफ़्तार थियल इम्तियाज़ बरफ़त अहम इनकशाफ़ कया आहिनि, जंहिं बाद ॿियनि जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ जे लाइ छापा पिणु हया वञनि पिया। सिंध हाई कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन CCE 2024 इम्तिहान जे तकरारी नतीजनि खे मुअतल करे छॾियो। काल्ह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे गॾियल मुक़ाबले वारे इम्तिहान 2024 जे नतीजनि ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ॿुधणी थी। दरख़्वास्त

तयारु कयो त उहे स्क्रीनिंग ते वारे इम्तिहान में सुठी कारकर्दगी बावजूद इंटरव्यू में नाकाम करार ॾिना विया। जॾहिं त मेरिट जे उबतड़ मनपसंद उमेदवारनि खे कामयाब करार ॾिनो वियो, उन ई इम्तिहान में वेठल 10,000 मां सिर्फ़ 70 उमेदवारनि खे पास कयो वियो आहे। अहिड़े अमल सां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पंहिंजी साख विञाए चुकी आहे। अदालत इब्तदाई ॿुधणीअ बाद मामले खे गौर तलब करार ॾींदे कमीशन जे सेक्रेटरी कंट्रोलर एडवोकेट जनरल सिंध ऐं लाॻापियल ज़रियनि खे 21 मई लाइ नोटिस जारी करे छॾिया। अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खे हुकुम ॾिनो त गॾियल मुक़ाबले वारे इम्तिहान 2024 जो समूरो रिकॉर्ड सील करे ईंदड़ ॿुधणीअ ते पेश कयो वञे। अदालत वधीक हुकुम ॾिनो त 6 मई 2026 ते जारी कयल नतीजनि बाबति प्रेस रिलीज़ ते ईंदड़ ॿुधणीअ ताईं अमल दरामद मुअतल रहंदो। उन ई बुनियाद ते वधीक का बि कार्रवाई न कई वेंदी। लाड़काणे जे शेख ज़ैद औरताणी अस्पताल में वियम जे लाइ दाख़िल शहदाद कोट भरिसां ॻोठु गोलूवाह जी रहवासण 8 ॿारनि जी माउ 40 वरनि जी नाज़िया ज़ाल राज़ी ख़ान खोसो ऐं संदसि पेट में पलजंदड़ ॿार फ़ौत थी विया। वारसन अस्पताल जे डॉक्टरनि ऐं अमले मथां गिफ़लत जो इल्ज़ाम लॻाईंदे एहतजाज कयो। उन मौक़े ते फ़ौती औरत जे भाउ हिदायतुल्ला खोसो इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो आहे त मंझंदि 12 वॻे धारे मां पंहिंजी भेण नाज़िया खोसो खे वियम जे लाइ लाड़काणे जे शेख ज़ैद औरताणी अस्पताल दाख़िल करायो, जिथे डॉक्टरनि जे मशोरे ते मां 1,000 रुपियनि जूं क़ीमती दवाऊं ख़रीद करियूं। रत जूं 8 थेलियूं खे ॾिनियूं। उन जे बावजूद डॉक्टरनि भेण जो इलाज न कयो, जिन खे मां इलाज मिंथू बि कयूं पर हुननि मुंहिंजी हिकु बि न ॿुधी। जिन जी गिफ़लत ऐं लापरवाही सबबि मुंहिंजी भेण 8 ॿारनि जी अमर नाज़िया खोसो इस्पताल जे वार्ड में तड़पी तड़पी फ़ौत थी वई, जॾहिं संदसि पेट में पलजंदड़ ॿार बि फ़ौत थी वियो आहे। हिननि मुतालबो कयो आहे त मामले जो नोटिस वठणी भेण जे इलाज में गिफ़लत जो मुज़ाहिरो कंदड़ डॉक्टरनि अमले ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे।

0: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 03201800003।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0383-5769।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़ बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-46-0100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
4: न अदा।
2: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
5: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: मेरा व्हाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

सिद्ध राउंडअप में अज अवां बुझी सकंदा। कणक खरीदारी लटकियल, आबादगारन पारां सब्सिडी वठण बावजूद कणक न मिलण ते हुकूमत आपे खां बाहिर। आबादगारन खां सब्सिडी जा पैसा उगाइण जो हुकुम। डिफॉल्टर आबादगारन के 5 सालन जे लाइ ब्लैकलिस्ट करण जी तजवीज़। मौलाना फजल रहमान ऐं पीर पागारे में पीपी मुखालिफ इतिहाद के मजबूत करण ते इतफाक। कराची में अहम मुलाकात। एंटी करप्शन सिंध पारां मीरपुर खास के रेवन्यू रिकॉर्ड में हेरा फेरी कंदड़ वधीक 3 जणा गिरफ्तार। जांच दौरान अहम इंकशाफ। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सीसीई 2024 इम्तिहान जा तकरारी नतीजा मौतल। रिकॉर्ड सील सेक्रेटरी तलब। लाड़काणे अस्पताल में व्यम लाए आयल औरत बार समेत फोतु।

आबादगारनि खे कणक पोखीअ लाइ यूरिया ऐं डीएपी जे मद में सब्सिडी ॾियण बावजूद कणक सरकारी ख़रीदारी सेंटरनि ताईं न पहुती। सिंधु हुकूमत पारां कणक ख़रीदारीअ जो 10 लख टन वारो हदफ़ पूरो न थियण जो इम्कान। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि सिंधु हुकूमत समूरनि डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़तु लिखी हिदायत कई आहे त जिन आबादगारनि डीएपी ऐं यूरिया जे मद में 22,000 रुपया सब्सिडी वठण बावजूद कणक जी पोखाई न कई आहे उन्हनि खां सब्सिडीअ वारी रक़म वापसि वरिती वञे। उन हवाले सां सिंध जे ज़राअत खाते जे अख़्तियारनि पारां समूरनि डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़तु लिखी उहा हिदायत कई वई आहे त सिंध काबीना जे फ़ैसिले हेठि डीएपी ऐं यूरिया जे मद में रक़म वठण बावजूद कणक न पोखींदड़ आबादगारनि खां सब्सिडीअ वारी रक़म वापसि वरिती वञे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि सिंधु हुकूमत पारां सिंध काबीना जे फ़ैसिले तहत 25 एकड़ खां घटि ज़मीन रखंदड़ आबादगारनि खे कणक पोखाईअ लाइ फ़ी एकड़ जे हिसाब सां डीएपी ऐं यूरिया ख़रीदारी जे लाइ 22,000 रुपयनि ताईं सब्सिडी ॾिनी वई हुई। ज़रियनि मूजिबि त कणक पोखी न थियण ऐं सरकारी ख़रीदारी सेंटरनि ते नंढनि आबादगारनि पारां कणक न पहुचाइण बाद सिंधु हुकूमत पारां सख़्तु फ़ैसिलो कंदे आबादगारनि खां सब्सिडी वापसि कराइण जे लाइ डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़तु लिखियो वियो आहे। उन हवाले सां सिंध सरकार जो चवणु आहे त अहिड़नि आबादगारनि खां न रुगो रक़म वापसि वरिती वेंदी पर ईंदड़ 5 सालनि ताईं खेनि कंहिं बि क़िस्म जी सब्सिडी न ॾिनी वेंदी। JUI सरबराह मौलाना फज़ल रहमान जी राजा हाउस आमंद सिंध में पीपी मुखालिफ़ इतिहाद खे मज़बूत करण जो फ़ैसिलो। हुन ॾस में काल्ह मौलाना फज़ल रहमान राजा हाउस पहुची GDA जे सरबराह पीर पागारे सां मुलाक़ात कई। मुलाक़ात जे आमद वक़्तु सैद राशिद शाह राशिदी ऐं मौज़ूम आबासी संदसि इस्तक़बाल कयो। जॾहिं मुलाक़ात दौरान JUI अॻवान मौलाना राशिद महमूद सुमरो ऐं ॿिया अॻवान पिणु मौजूदु हुआ। ज़रियनि मूजिबि मुलाक़ात दौरान सिंध समेत मुल्की सूरत हाल ते गुफ़्तगु थी। मुलाक़ात में सिंध जे GDA ऐं JUI पारां गॾियल हिकमत अमलियत तहत सिंध सरकार खे टफ टाइम ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो। होॾां GDA तर्जुमान मूजिबि मुलाक़ात में JUI क़ियादत पारां सखर में कोठायल अमन कॉन्फ्रेंस में GDA क़ियादत खे शरीक थियण जी दावत ॾिनी वई। मुलाक़ात में सिंध समेत सॼे मुल्क जे तालीमी इदारनि में मंशियात फरोशीअ ते पिण गणतीअ जो इज़हार कयो वियो। मीरपुर खास में रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेरा फेरी ऐं जाली खाता ठाहिण जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार थियल मीरपुर खास तालके जे अॻूणे मुख़्तियारकार राशिद जे मुबैना इनकशाफ़नि खां पोइ एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट कार्रवाई कंदे हिकु ॼणे इम्तियाज़ बरफत संदसि सोरे ग़ुलाम मुस्तफ़ा खासकेली ऐं पाड़ेसरी मोहम्मद हाशिम खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। ज़रियनि मूजिबि इम्तियाज़ बरफत ते इल्ज़ाम आहे त हू हेरा फेरी कंदड़ रेवेन्यू आफ़िसरनि लाइ फ्रंटमैन तौरु किरदारु अदा कंदो हो। एंटी करप्शन खाते जे ज़रियनि मूजिबि इम्तियाज़ बरफत 80 रुपयनि जी मिल्कियत पंहिंजे सोरे ग़ुलाम मुस्तफ़ा खासकेली ऐं पाड़ेसरी मोहम्मद हाशिम जे नाले रजिस्टर्ड कराए छॾी हुई। ज़रियनि मूजिबि गिरफ़्तार थियल जवाबदार ते उहो पिणु इल्ज़ाम आहे त हुननि रेवेन्यू अमलदारनि जे मिली भगत सां क़ीमती एराज़ीअ जा जाली खाता ठाहिया ऐं गॾोगॾु सरकारी ऐं निजी ज़मीनुनि जूं फर्ज़ी दाख़िलाऊं तयारु कयूं हुयूं ऐं गॾोगॾु हुननि सरकारी रिकॉर्ड में रदो बदल करे ज़मीन जी मिल्कियतुनि खे पिणु तब्दील कयो हो। ज़रियनि मूजिबि गिरफ़्तार थियल इम्तियाज़ बरफत अहम इनकशाफ़ कया आहिनि जंहिं बाद ॿियनि जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जे लाइ छापा पिणु हया वञनि पिया। सिंध हाई कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन CCE 2024 इम्तिहान जे तकरारी नतीजनि खे मुअतल करे छॾियो। काल्ह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे गॾियल मुक़ाबले वारे इम्तिहान 2024 जे नतीजनि ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ॿुधणी थी। दरख़्वास्त गुज़ार मौक़ुफ़ इख़्तियार कयो त उहे स्क्रीनिंग टेस्ट ऐं लिखत वारे इम्तिहान में सुठी कारकर्दगी बावजूद इंटरव्यू में नाकाम करार ॾिना विया। जॾहिं त मेरिट जे उबतड़ मनपसंद उमेदवारनि खे कामयाब करार ॾिनो वियो। उन ई इम्तिहान में वेठल 10,000 मां सिर्फ़ 70 उमेदवारनि खे पास कयो वियो आहे। अहिड़े अमल सां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पंहिंजी साख विञाए चुकी आहे। अदालत इब्तदाई ॿुधणीअ बाद मामले खे गौर तलब करार ॾींदे कमीशन जे सेक्रेटरी कंट्रोलर एडवोकेट जनरल सिंध ऐं लाॻापियल ज़रियनि खे 21 मई लाइ नोटिस जारी करे छॾिया। अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खे हुकुम ॾिनो त गॾियल मुक़ाबले वारे इम्तिहान 2024 जो समूरो रिकॉर्ड सील करे ईंदड़ ॿुधणीअ ते पेश कयो वञे। अदालत वधीक हुकुम ॾिनो त 6 मई 2026 ते जारी कयल नतीजनि बाबति प्रेस रिलीज़ ते ईंदड़ ॿुधणीअ ताईं अमल दरामद मुअतल रहंदो। उन ई बुनियाद ते वधीक का बि कार्रवाई न कई वेंदी। लाड़काणे जे शेख ज़ैद औरताणी अस्पताल में वियम जे लाइ दाख़िल शहदाद कोट भरिसां ॻोठु गोलू वाह जी रहवासण 8 ॿारनि जी माउ 40 वरनि जी नाज़िया ज़ाल राज़ी ख़ान खोसो ऐं संदसि पेट में पलजंदड़ ॿार फ़ौत थी विया। वारसन इस्पताल जे डॉक्टरनि ऐं अमले मथां गिफ़लत जो इल्ज़ाम लॻाईंदे एहतजाज कयो। उन मौक़े ते फ़ौती औरत जे भाउ हिदायतुल्ला खोसो चयो त मंझंदि 12 वॻे धारे मां पंहिंजी भेण नाज़िया

छोके वियम जे लाइ लाड़काणे जे शेख ज़ैद औरताणी अस्पताल दाख़िल करायो, जिथे डॉक्टरनि जे मशवरे ते मां हज़ारे रुपियनि जूं क़ीमती दवाऊं ख़रीद करियूं, रत जूं अठ थेलियूं खेनि ॾिनियूं। उन जे बावजूद डॉक्टरनि भेण जो इलाज न कयो, जिन खे मां इलाज मिंथूं बि कयूं पर हुननि मुंहिंजी हिकु बि न ॿुधी। जिन जी गफ़लत ऐं लापरवाहीअ सबबि मुंहिंजी भेण अठनि ॿारनि जी अमर नाज़िया खोसो अस्पताल जे वार्ड में तड़पी तड़पी फोती वई, जॾहिं संदसि पेट में पलजंदड़ ॿार बि फोत थी वियो आहे। हिननि मुतालबो कयो आहे त मामले जो नोटिस वठणी, भेण जे इलाज में गफ़लत जो मुज़ाहिरो कंदड़ डॉक्टरनि ऐं अमले ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ फराम कयो वञे।

0: इहो हुयो हिन वक़्त जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: सामीन व नाज़रीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद, मा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई, 0307359210।
0: खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3583-569, 0300-3583-569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बहरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-46-0100।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
5: It's 9:15 PM. This time check is brought to you by
6: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर ए सूम।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-003-8556-9।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहराबपुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
2: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थन वती का आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर दी, बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड। इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
1: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तव्हां ॿुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंड अप सां गॾु, मां आहियां गुलाब खान भेण।

सिद्ध राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा। कणक खरीदारी लटकियल, आबादगारन पारां सब्सिडी वठण बावजूद कणक न मिलण ते हुकूमत आपे खां बाहिर। आबादगारन खां सब्सिडी जा पैसा उगाइण जो हुकुम। डिफॉल्टर आबादगारन के 5 सालन जे लाइ ब्लैकलिस्ट करण जी तजवीज़। मौलाना फजल रहमान ऐं पीर पागारे में पीपी मुखालिफ़ इतिहाद के मजबूत करण ते इतफ़ाक़। कराची में अहम मुलाकात। एंटी करप्शन सिंध पारां मीरपुर खास के रेवन्यू रिकॉर्ड में हेरा फेरी कंदड़ वधीक 3 जणा गिरफ्तार। जांच दौरान अहम इंकशाफ़। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सीसीई 2024 इम्तिहान जा तकरारी नतीजा मौतल। रिकॉर्ड सील, सेक्रेटरी तलब। लाड़काने अस्पताल में व्यम लाए आयल औरत बार समेत फोत। डॉक्टरन ते गफलत जो इल्ज़ाम। आई स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुझी सकंदा। सिंध में कारोकारी जो कारोबार कदें खत्म थींदो।

सिंधु हुकूमत पारां सूबे जे 3,36,000 नंढनि आबादगारनि खे कणक पोखीअ लाइ यूरिया ऐं डीएपी जे मद में सब्सिडी ॾियण बावजूदि कणक सरकारी ख़रीदारी सेंटरनि ताईं न पहुती। सिंधु हुकूमत पारां कणक ख़रीदारीअ जो 10,00,000 टन वारो हदफ़ पूरो न थियण जो इम्कान। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि सिंधु हुकूमत समूरनि डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़तु लिखी हिदायत कई आहे त जिन आबादगारनि डीएपी ऐं यूरिया जे मद में 22,000 रुपया सब्सिडी वठण बावजूद कणक जी पोखाई न कई आहे उन्हनि खां सब्सिडीअ वारी रक़म वापसि वरिती वञे। उन हवाले सां सिंध जे ज़राअत खाते जे अख़्तियारनि पारां समूरनि डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़तु लिखी उहा हिदायत अख़्तियारनि पारां समूरनि डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़तु लिखी उहा हिदायत कई वई आहे त

आबाद कर खा न रुगो रकम वापस वरती वेंदी पर ईंदड़ पंजनि सालनि ताईं खेनि कंहिं बि क़िस्म जी सब्सिडी न ॾिनी वेंदी। जे यू आई सरबराह मौलाना फज़ल रहमान जी राजा हाउस आमंद सिंध में पीपी मुखालिफ़ इतिहाद खे मज़बूत करण जो फ़ैसिलो। हुन ॾसमी काल्ह मौलाना फज़ल रहमान राजा हाउस पहुची जी डी ए जे सरबराह पीर पागारे सां मुलाक़ात कई। मुलाक़ात जे आमद वक़्तु सैद राशिद शाह राशिदी ऐं मौज़ूम आबासी संदसि इस्तक़बाल कयो। जॾहिं त मुलाक़ात दौरान जे यू आई अॻवान मौलाना राशिद महमूद सुमरो ऐं ॿिया अॻवान पिणु मौजूदु हुआ। ज़रियनि मूजिबि मुलाक़ात दौरान सिंध समेत मुल्क ई सूरत हाल ते गुफ़्तगू थी। मुलाक़ात में सिंध जे जी डी ए ऐं जे यू आई पारां गॾियल हिकमत अमलीअ तहत सिंध सरकार खे टफ़ टाइम ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो। होॾां जी डी ए तर्जुमान मूजिबि मुलाक़ात में जे यू आई क़ियादत पारां सखर में कोठायल अमन कॉन्फ्रेंस में जी डी ए क़ियादत खे शरीक थियण जी दावत ॾिनी वई। मुलाक़ात में सिंध समेत सॼे मुल्क जे तालीमी इदारनि में मंशियात फरोशीअ ते पिण ॻणितीअ जो इज़हार कयो वियो। मीरपुर खास में रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेरा फेरी ऐं जाली खाता ठाहिण जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार थियल मीरपुर खास तालुके जे अॻूणे मुख़्तियारकार राशिद जी मुबैना इनकशाफ़नि खां पोइ एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट कार्रवाई कंदे हिकु ॼणे इम्तियाज़ बरफ़त संदसि सोरे ग़ुलाम मुस्तफ़ा खासकेली ऐं पाड़ेसरी मोहम्मद हाशिम खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। ज़रियनि मूजिबि इम्तियाज़ बरफ़त ते इल्ज़ाम आहे त हू हेरा फेरी कंदड़ रेवेन्यू आफ़िसरनि लाइ फ्रंटमैन तौरु किरदारु अदा कंदो हो। एंटी करप्शन खाते जे ज़रियनि मूजिबि इम्तियाज़ बरफ़त अरबे रुपियनि जी मिल्कियत पंहिंजे सोरे ग़ुलाम मुस्तफ़ा खासकेली ऐं पाड़ेसरी मोहम्मद हाशिम जे नाले रजिस्टर्ड कराए छॾी हुई। ज़रियनि मूजिबि गिरफ़्तार थियल जवाबदार ते उहो पिणु इल्ज़ाम आहे त हुननि रेवेन्यू अमलदारनि जे मिली भगत सां क़ीमती एराज़ीअ जा जाली खाता ठाहिया ऐं गॾोगॾु सरकारी ऐं निजी ज़मीनुनि जूं फर्ज़ी दाख़िलाऊं तयारु कयूं हुयूं ऐं गॾोगॾु हुननि सरकारी रिकॉर्ड में रदो बदल करे ज़मीन जी मिल्कियतुनि खे पिणु तब्दील कयो हो। ज़रियनि मूजिबि गिरफ़्तार थियल इम्तियाज़ बरफ़त अहम इनकशाफ़ कया आहिनि, जंहिं बाद ॿियनि जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ जे लाइ छापा पिणु हया वञनि पिया। सिंध हाई कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन CCE 2024 इम्तिहान जे तकरारी नतीजनि खे मुअतल करे छॾियो। काल्ह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे गॾियल मुक़ाबले वारे इम्तिहान 2024 जे नतीजनि ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ॿुधणी थी। दरख़्वास्त गुज़ार मौक़ुफ़ इख़्तियार कयो त उहे स्क्रीनिंग टेस्ट ऐं लिखत वारे इम्तिहान में सुठी कारकर्दगीअ बावजूदु इंटरव्यू में नाकाम करार ॾिना विया। जॾहिं त मेरिट जे उबतड़ मनपसंद उमेदवारनि खे कामयाब करार ॾिनो वियो, उन ई इम्तिहान में वेठल 10,000 मां सिर्फ़ 70 उमेदवारनि खे पास कयो वियो आहे। अहिड़े अमल सां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पंहिंजी साख विञाए चुकी आहे। अदालत इब्तदाई ॿुधणीअ बाद मामले खे गौर तलब करार ॾींदे कमीशन जे सेक्रेटरी कंट्रोलर एडवोकेट जनरल सिंध ऐं अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खे हुकुम ॾिनो त गॾियल मुक़ाबले वारे इम्तिहान 2024 जो समूरो रिकॉर्ड सील करे ईंदड़ ॿुधणीअ ते पेश कयो वञे। अदालत वधीक हुकुम ॾिनो त 6 मई 2026 ते जारी कयल नतीजनि बाबति प्रेस रिलीज़ ते ईंदड़ ॿुधणीअ ताईं अमल दरामद मुअतल रहंदो। उन ई बुनियाद ते वधीक का बि कार्रवाई न कई वेंदी।

ॿार फोत थी विया। वारसन इस्पताल जे डॉक्टरनि ऐं अमले मथां गिफ़लत जो इल्ज़ाम लॻाईंदे एहतजाज कयो। उन मौके ते फोती औरत जे भाउ हिदायतुल्लाह खोसो इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो आहे त मंझंदि 12 वॻे धारे मां पंहिंजी भेण नाज़िया खोसो खे वियम जे लाइ लाड़काणे जे शेख ज़ैद औरताणी इस्पताल दाख़िल करायो, जिथे डॉक्टरनि जे मशोरे ते मां 1000 रुपियनि जूं क़ीमती दवाऊं ख़रीद करियूं, रत जूं 8 थेलियूं खेनि ॾिनियूं। उन जे बावजूद डॉक्टरनि भेण जो इलाज न कयो, जिन खे मां इलाज मिंथू बि कयूं पर हुननि मुंहिंजी हिकु बि न ॿुधी। जिन जी गिफ़लत ऐं लापरवाही सबब मुंहिंजी भेण 8 ॿारनि जी अमर नाज़िया खोसो इस्पताल जे वार्ड में तड़पी तड़पी फोत थी वई, जॾहिं संदसि पेट में पलजंदड़ ॿार बि फोत थी वियो आहे। हिननि मुतालबो कयो आहे त मामले जो नोटिस वठणी भेण जे इलाज में गिफ़लत जो मुज़ाहिरो कंदड़ डॉक्टरनि ऐं अमले ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे।

पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध जी धरती मोहब्बत, अमन, रवादारी ऐं सूफ़ी अज़म जी सुञाणप रखे थी, पर अफ़सोस जो अॼु बि कुझु इलाइक़नि में कारोकारी जहिड़ी ज़ालमाणी रस्म इंसानियत जे चहिरे ते कारो दाग बणियल आहे। कारोकारी सिर्फ़ु हिकु रस्म न, पर केतिरनि ई हंधनि ते उहो हिकु कारोबार बणिजी वियो आहे, जिथे इज़त जे नाले ते इंसानी जानिन सां रांदि कई वञे थी। कारोकारीअ में घणो करे औरतुनि खे निशानो बणायो वेंदो आहे, जॾहिं त केतिरनि ई वाक्यनि में ज़ाती दुश्मनी, ज़मीन जा तकरार, कर्ज़ या क़बाइली अना बि असुलु सबबु हूंदा आहिनि। कुझु माण्हू पंहिंजे मुफ़ादनि जे लाइ कंहिं औरत या मर्द ते इल्ज़ाम हणी, जुर्गनि ज़रिए ॾंडु वठी या क़तल खे जाइज़ क़रार ॾेई हिन ज़ुल्म खे रवायत जो नालो ॾियनि था। अहिड़ी तरह बेगुनाह माण्हू पंहिंजी ज़िंदगी विञाए वेहनि था ऐं समाज ख़ामोश तमाशाई बणिजी बीठो रहे थो। अफ़सोस जी उहा ॻाल्हि आहे त केतिरनि ई इलाइक़नि में कारोकारीअ जा फ़ैसिला कानून बदिरां जुर्गनि में कया वञनि था। उहे जुर्गा अक्सर ताक़तवर माण्हुनि जे मर्ज़ीअ मूजिबि हलाया वञनि था, जिथे इंसाफ़ बदिरां असर रसूख ऐं पैसे जी अहमियत हूंदी आहे। नतीजे में ग़रीब ऐं कमज़ोर माण्हू वधीक मुतासिर थियनि था। औरतुनि खे पंहिंजी सफ़ाई पेश करण जो बि हक़ नथो ॾिनो वञे ऐं खेनि समाज जे ख़ौफ़ सबबि ख़ामोश रहणो पवे थो। इस्लाम बि बिना सबूत कंहिं ते इल्ज़ाम हणण या क़तलु करण जी सख़्तु मुखालफ़त करे थो। क़ुरान पाक ऐं शरीयत इंसान जी जान खे मुक़दस करार ॾियनि था, तंहिं करे कारोकारीअ खे मज़हब सां जोड़णु सरासरी ग़लति ऐं ज़ुल्म आहे। हीअ रस्म न सिर्फ़ क़ानून जे ख़िलाफ़ु आहे, पर इंसानी इख़लाक़ियात ऐं समाजी क़दरुनि जी बि तोहीन आहे। ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त समाज में शऊर पैदा कयो वञे, तालीम खे हथी ॾिनी वञे, औरतुनि खे तहफ़ुज़ फराहम कयो वञे ऐं क़ानून ते सख़्तीअ सां अमल करायो वञे। मीडिया, उस्तादनि, अदीबनि ऐं मज़हबी आलमनि खे बि पंहिंजो मुस्बत किरदारु अदा करणो पवंदो, जीअं माण्हुनि जी सोच बदिलजी सघिजे। जेकॾहिं अॼु बि असां ख़ामोश रहियासीं त सुभाणे वधीक बेगुनाह ज़िंदगियूं हिन बेरहम रस्म जे वर चढ़ी वेंदियूं। कारोकारी कंहिं बि सूरत में इज़त न, पर इंसानियत जो क़तलु आहे। सिंध खे अहिड़ियुनि ज़ालिमनि रस्मुनि खां आज़ादु कराइण वक़्त जी अहम ज़रूरत आहे, जीअं हीअ धरती ॿीहर अमन, मोहबत ऐं इंसाफ़ जी सुञाणप बणिजी सघे।

0: इहो हिन वक़्त जो सिंध राउंड अप ॿिए आचर जे सिंध राउंड अप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।